मीडियम वेव 262.47 मीटर यानी 1143 किलो हर्ट्स और एफएम बैंड 103.5 मेगाहर्ट्स पर आकाशवाणी का ये रोहतक केंद्र है। आज बुधवार है। शक संवत 1948 के ज्येष्ठ मास की 27वीं तिथि, तदनुसार 17 जून 2026। स्टूडियो की घड़ी के अनुसार प्रातः के 5:58 और 24 सेकंड हुए हैं। अब हमारे आज के प्रसारण आरंभ होते हैं।

0: 107.47 मीटर यानी 1143 किलोहर्ट्ज़ और FM बैंड 103.5 मेगाहर्ट्ज़ पर। प्रातः के 6 बजने वाले हैं, अब समय है समाचारों का। समाचार हम रिले करेंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। समाचारों के तुरंत बाद आप सुनेंगे FM बैंड 103.5 मेगाहर्ट्ज़ पर विविध भारती मुंबई के कार्यक्रमों का रिले।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सरफिरोजी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फ्रांस में कल G7 शिखर सम्मेलन में एक सत्र को संबोधित किया। इसका विषय था नई साझेदारी और अंतर्राष्ट्रीय एकजुटता का निर्माण। विदेश मंत्रालय ने बताया कि सत्र में प्रधानमंत्री ने अंतर्राष्ट्रीय साझेदारी में विश्वास के महत्व पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि भारत ने हमेशा मानवता को प्राथमिकता दी है, जो भारत के नेतृत्व वाली पहलों में दिखाई देती है। इनमें अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन, डिजास्टर रिजिलियंट इंफ्रास्ट्रक्चर गठबंधन, वैश्विक बायोफ्यूल गठबंधन, मिशन लाइफ और एक पेड़ माँ के नाम अभियान शामिल है। शिखर सम्मेलन के दौरान प्रधानमंत्री ने कई देशों के नेताओं के साथ द्विपक्षीय बैठकें की। प्रधानमंत्री मोदी ने कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टार्मर और संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान के साथ द्विपक्षीय बैठकें की। प्रधानमंत्री ने केन्या के राष्ट्रपति विलियम रूटो से मुलाकात कर कहा कि भारत और केन्या की साझेदारी ग्लोबल साउथ की आकांक्षाओं पर आधारित है। उन्होंने मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फतेह अलसीसी से भी मुलाकात की। प्रधानमंत्री मोदी ने जापान की प्रधानमंत्री सनाए ताकाइची के साथ व्यापार और निवेश सहित विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर चर्चा की। G7 देश भारत समेत कई देशों के साथ मिलकर दुनिया भर में स्वास्थ्य और विकास सहयोग को मजबूत करने की पहल करेंगे। G7 के नेताओं ने अफ्रीकी देश कांगो और युगांडा में फिर से फैले इबोला के प्रकोप से निपटने के लिए मिलकर कदम उठाने की अपील की है। भारत, मिस्र, केन्या और दक्षिण कोरिया ने भी इसका समर्थन किया है। सभी सदस्यों ने इबोला के लिए वैक्सीन, जांच और इलाज के विकास में सहयोग का भी वादा किया। G7 ने कैंसर का इलाज ढूंढने की प्रतिबद्धता भी दोहराई। गृहमंत्री अमित शाह ने नई दिल्ली में झुग्गी बस्तियों के पुनर्वास की समीक्षा बैठक की। उन्होंने कहा कि दिल्ली झुग्गी और जेजे क्लस्टर पुनर्वास एवं पुनर्स्थापन नीति 2026 को अंतिम रूप दे दिया गया है और इसे जल्द अधिसूचित किया जाएगा। श्री शाह ने अधिकारियों को 5 जेजे क्लस्टर के पुनर्वास के लिए 45 दिनों के भीतर निविदाएं जारी करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि पुनर्वास कॉलोनियों में आंगनवाड़ी केंद्र, स्कूल, स्वास्थ्य केंद्र और खेल मैदान जैसी सुविधाएं उपलब्ध कराई जानी चाहिए। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने घोषणा की है कि ऐतिहासिक ईस्टर्न फ्रंटियर राइफल्स का शीघ्र ही पुनरुद्धार किया जाएगा और 1000 से अधिक गोरखा युवाओं को राज्य पुलिस बल में भर्ती किया जाएगा। दार्जिलिंग जिले के कुर्सियोंग में एक जनसभा को संबोधित करते हुए श्री अधिकारी ने घोषणा की कि भर्ती शीघ्र ही खोली जाएगी और इनमें कम से कम 30% सीट महिलाओं के लिए आरक्षित होंगी। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने आगामी नीट परीक्षा को देखते हुए विद्यार्थियों और अभिभावकों को घोटालेबाजों से सावधान रहने का अनुरोध किया है। एजेंसी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि घोटालेबाज लोग टेलीग्राम पर ऐसे चैनल चला रहे हैं जिनमें 21 तारीख को प्रस्तावित परीक्षा के प्रश्न पत्र साझा करने के लिए 14,000 से 25,000 रुपये तक की मांग की जा रही है। एजेंसी ने स्पष्ट किया है कि पुनर्परीक्षा का कोई प्रश्न पत्र लीक नहीं हुआ है। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री डॉ. वीरेंद्र कुमार आज नशा मुक्त भारत अभियान NMBA के अंतर्गत नशा मुक्त भारत सप्ताह का वर्चुअल माध्यम से उद्घाटन करेंगे। कार्यक्रम के दौरान डॉ. वीरेंद्र कुमार नशा मुक्ति मित्र के लिए पर्सनल डैशबोर्ड और NMBA पर आधारित एक लघु फिल्म सहित कई प्रमुख पहल का भी अनावरण करेंगे। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया आज मुंबई के वर्ली साइकिल ट्रैक पर विशेष फिट इंडिया साइक्लोथॉन का नेतृत्व करेंगे। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय ने बताया कि ये आयोजन व्यापक फिट इंडिया अभियान

0: हिस्सा है। फीफा विश्व कप में कल फ्रांस ने सेनेगल को 3-1 से हरा दिया। प्रतियोगिता के एक अन्य मुकाबले में ईरान और न्यूजीलैंड के बीच मुकाबला 2-2 की बराबरी पर रहा। उरुग्वे और सऊदी अरब तथा बेल्जियम और मिस्र के मैच भी 1-1 से ड्रॉ रहे। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: मीडियम वेव 262.47 मीटर यानी 1143 किलोहर्ट्ज पर आप जुड़ चुके हैं आकाशवाणी के रोहतक केंद्र से। प्रस्तुत है आज का चिंतन। सफलता पाने के लिए सपने जरूरी हैं, लेकिन उन सपनों को पूरा करने का साहस और मेहनत उससे भी ज्यादा जरूरी है। ये था आज का चिंतन। आकाशवाणी के रोहतक केंद्र से अब श्रोता सुनेंगे भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना।

भगवान को पाने या उनके दर्शन करने के लिए किसी दिखावे, आडंबर या भव्य मंदिर की आवश्यकता नहीं है। सच्चे मन की श्रद्धा, प्रेम और पुकार, ये ही वे खिड़की हैं, वे झरोखा है जिसके जरिए आप अपने मन के भीतर ही प्रभु के वास्तविक स्वरूप के दर्शन कर सकते हैं।

माँ अम्बे इस संसार का पालन पोषण करने वाली हैं। जिस भी भक्त पर उनकी दया दृष्टि बरसती है वे इस संसार रूपी सागर को पार कर जाते हैं, अर्थात उनका कल्याण हो जाता है।

कबीर जी कहते हैं कि मनुष्य का जीवन बीतता जा रहा है, जीवन भर विषय विकारों जैसे कि लोभ मोह अहंकार और वासना में लिप्त होने के कारण इस शरीर रूपी चादर पर पाप रूपी मैल और दाग लग गए हैं।

यदि जीवन में अमृत रस घोलना है, अर्थात जीवन में अच्छाइयों को लाना है, तो मुख से ईश्वर के नाम का जाप करना होगा। उनका जाप करने से मन से और जीवा से बुरे विकारों का समापन होता है।

अभी आप सुन रहे थे भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना आकाशवाणी के रोहतक केंद्र से। अब सुनिए हमारा दैनिक आयोजन श्री रामचरित मानस गान।

पुत्र वियोग में राजा दशरथ का देहांत हो चुका है। शोक संतप्त अयोध्यावासी और महलों में रानियां विलाप कर रही हैं। सभी लोग कैकेयी की भर्त्सना कर रहे हैं, जिसने जैसे संसार भर की दृष्टि ही छीन ली है। किंतु जगत अपनी गति से चलता रहता है। कुलगुरु वशिष्ठ ने समयानुकूल वचनों द्वारा ज्ञान विज्ञान के प्रकाश से सबके शोक का अंधकार दूर कर तेल भरी नौका में राजा के पार्थिव शरीर को रखवाया। फिर ननिहाल से भरत तथा शत्रुघ्न को तत्काल बुलाने के लिए दूत भेजे, किंतु उन्हें आदेश दिया कि वहां महाराज की मृत्यु का समाचार उन्हें न सुनाएं। दोनों भाइयों से मात्र इतना कहना है कि कुलगुरु ने बुला भेजा है। इधर अयोध्या में जब से अनर्थ प्रारंभ हुए, तभी से भरत को अपशकुन होने लगे थे। उन्हें भयंकर स्वप्न आते और नींद उचट जाने पर अशुभ कल्पनाएं मन में जगने लगती थीं। वो अनिष्ट शांति के लिए तरह तरह के उपाय करते। दान पुण्य तथा भगवान शंकर से माता पिता और भाइयों के कुशल क्षेम की प्रार्थना करते। दूतों से संदेश सुनकर दोनों भाई वायु वेग से अयोध्या लौट चले। नगर में प्रवेश करते ही चारों ओर उन्हें अपशकुन दिखने लगी।

0: आकाशवाणी के रोहतक केंद्र से अगला कार्यक्रम कृषि की बातें।
1: किसान बहनों और भाइयों, राम राम। भाइयों, कृषि की बात हम आज जिक्र करेंगे तिल की काश्त के बारे में। और ये देखे हैं कि भाई अपना जो फ़िलहाल का टाइम चल रहा है तो भाई मौसम में काफ़ी परिवर्तनशील है और बहुत सी जगह पे भाई तेज़ अंधड़ आंधी और गरज चमक के साथ बूंदाबांदी। तो भाई अपनी जो भी चाहे वो खड़ी फसला की बात आओ है चाहे वो आगे की हमारी तैयारी है, सबका ध्यान बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अपनी जो कितने भाई बरिया इलाका है, भाइयों ने प्योद बना रखी हैं और कहीं कहीं पर भैया गए चाल की तैयारी भी चल रही है। और जड़े जड़े सब्जी फसलें हैं भाई आंधी तो काफ़ी नुकसान देखने में आओ है। और जड़े भी बागवानी की बात करी जा तो भाई अपने जो पेड़ हैं, फलदार वृक्ष हैं भाई, उनके तेज आंधी के कारण जो भी निपटान है, छोटा छोटा भाई अपने जो फल हैं वह जड़ जाए हैं, काफ़ी नुकसान देखने में आओ है। तो भाई यो ये है कि भाई जड़े भी हमारा दिनचर्या का काम है भाई, अपना जो भी फसल बाड़ी बोनी है ये तो हमारे प्राकृतिक की जो देन है वो हमारे बस की बात नहीं है। लेकिन भाई किसान भाई आज के दिन थोड़ा सूझबूझ के साथ, एक तौर तरीके के साथ, लक्षण देख के अगर हम ये देखें, चाहे कोई उपचार करना है या फिर कोई आगे चाल की दवाई हमने डालनी है, किसी बागा में हमने काम करना है, जो भी हम फसल बाड़ी लगा रहे हैं उसकी पूरी जानकारी, पूरी प्रॉपर तरीके से हमने नॉलेज और कोई सहायक धंधा हमने अपनाना ज़रूरी है। और इस टाइम के ऊपर बात भाई चाहे वो तिल की हो कि मक्का, बहुत सी जगह पर अपने सोयाबीन, ज्वार, बाजरे भाई अपने टाइम अनुसार बहुत से इलाके में भाई बरानी इलाके में बाजरा भी लगाऊंगे कि तक कपास की फसल भी फिलहाल खड़ी है। तो इसमें चाहे निराई गुड़ाई का काम है, चाहे आगे बिजाई का काम है, इस तरीके से तो अपने दिनचर्या के काम हो चाल दे रहे हैं। और तिल की अगर बात करी जाए तो भाई तिल की कास्ट में कोई ख़ास इतनी बातें नहीं हैं, क्योंकि तिल की जो बिजाई है अगले महीने या फिर अपनी जो बरसात की, मानसून की पहली बरसात हुआ है, इस पर हमने करी जा सके हैं, इस पर कर सके हैं। इसके लिए भाई उन्नत किस्म की अगर बात करी जाए तो हरियाणा तिल नंबर एक है और HT2 के नाम से किस्म है अपनी, इनकी सिफारिश करी जा है। हल्की ज़मीन में एक एकड़ के लिए लगभग 2 किलोग्राम बीज जो है इसमें काफ़ी रव है, इसका इस्तेमाल हम कर सके हैं। और पंक्तियां में 1 फुट के फासले पर बिजाई इसकी हमने करनी है। पौधे का जो फासला रहेगा वो 15 सेंटीमीटर हमने रख के चलना है। हल्की ज़मीन में बिजाई के समय हमने 33 किलोग्राम यूरिया प्रति एकड़ हमने पोरनी है, जिसने हम छीटा बोल दिया करें भाई, उस हिसाब से हमने देनी है। और खुडा का फासला की अगर बात करी जाए तो 31 सेंटीमीटर रख के चलना है। जड़ गलन और तना गलन से बचाव के लिए भाई बीज का जो उपचार है वो बहुत ज़रूरी है। बीज का उपचार में भाई हम थाइरम है वह 3 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज के हिसाब से इसमें हम उपचार कर सके हैं, क्योंकि उपचार जो है बहुत ज़रूरी हो है, चाहे वो हम किसी भी फसल का कर रहे हैं, कोई भी फसल हम बिजाई कर रहे हैं, उपचार सबसे बहुत ज़रूरी है। आगत ही जो कुछ कीट पतंगे हैं, बीमारियां आ जाए हैं, वो भाई उपचार तो हमने काफ़ी हद तक उसका जो है बचाव हो सके है। तो अपने खेत की भाई अच्छी बढ़िया तैयारी रखें, थोड़ी हल्की मिट्टी में जो तिल है वो ठीक प्रकार से लिया जा सके है। भाईती किस्म जो है उन्नत किस्म हरियाणा तिल नंबर एक और HT2 के नाम से ये सिफारिश शुदा किस्में हैं अपनी, इनका इस्तेमाल करें। खेत ने अच्छी तरीके से बढ़िया अगर देसी खाद मिल जाए तो सबसे बढ़िया है भाई, आजकल पूरी देसी खादें नहीं रह रही हैं, तो चाहे खाली खेतों भाई की तैयारी खाद का प्रयोग हो जाए या फिर अपने जो सिफारिश शुदा मिट्टी पानी की जाँच हो जाए तो सबसे बढ़िया रहो, क्योंकि अपनी ज़मीन में जो अपने 16-17 प्रकार के पोषक तत्व हैं इनका हमने मालूम हो जाए कि कौन से की कमी है। एक भाई इसमें फिर अपना अनदेखा जो हो खर्चा नहीं कर बैठता, देख हमने रीस नहीं करनी है, उसके लक्षण हम पहचान, खेत की तासीर हमने जाननी होगी, फिर हम चाहे कोई सी भी किस्म ले रहे हैं वहाँ ठीक प्रकार से, चाहे वो बिजाई कर रही हैं या फिर आगे चाल की जिन भाइयों ने बिजाई करनी है, तैयारी कर रही हैं, चाहे वह तिल की है, कोई अन्य फसलों की है, तो सूझबूझ के साथ हम खेती करेंगे जब मुनाफा इस टाइम पर हम ले पाएंगे। तो आज भाइयों कृषि की बातों में इतना ही, आपका दिन शुभ हो।
0: कृषि की बातें, अभी आप सुन रहे थे ये कार्यक्रम आकाशवाणी के रोहतक केंद्र से, मीडियम वेव 262.47 मीटर यानी 1143 किलोहर्ट्ज़ पर। स्टूडियो की घड़ी के अनुसार प्रातः के 6:55 होने वाले हैं। अब समय है समाचारों का। समाचार पहले संस्कृत में 7 बजे।

0: प्रदेश भारत समेत कई देशों के साथ मिलकर दुनिया भर में स्वास्थ्य और विकास सहयोग को मजबूत करने की पहल करेंगे। G7 के नेताओं ने अफ्रीकी देश कांगो और युगांडा में फिर से फैले इबोला के प्रकोप से निपटने के लिए मिलकर कदम उठाने की अपील की है। भारत, मिस्र, केन्या और दक्षिण कोरिया ने भी इसका समर्थन किया है। सभी सदस्यों ने इबोला के लिए वैक्सीन, जांच और इलाज के विकास में सहयोग का भी वायदा किया है। G7 शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ बैठक करेंगे। आज की मुलाकात में दोनों पक्षों के बीच कई क्षेत्रों में आपसी सहयोग को मजबूत करने और आपसी हित के क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर भी व्यापक चर्चा की संभावना है।
1: यह बैठक इसलिए भी काफी महत्वपूर्ण है क्योंकि भारत एक बड़ी वैश्विक महाशक्ति के रूप में उभरा है। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय जटिल वैश्विक चुनौतियों के समाधान के लिए लगातार नई दिल्ली की ओर देख रहा है। वैश्विक मुद्दों पर चर्चाओं को नया आकार देने में भारत की बढ़ती भूमिका, उसके विस्तार लेते राजनयिक प्रभाव और विभिन्न मंचों पर विश्व नेताओं के साथ सक्रिय जुड़ाव को दर्शाती है। कल शिखर सम्मेलन के एक आउटरीच सत्र के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बात पर विशेष जोर दिया कि आज की आपस में जुड़ी हुई दुनिया में अंतर्राष्ट्रीय साझेदारी बनाने के लिए आपसी विश्वास कितना जरूरी है। उन्होंने इस बात भी रेखांकित किया कि भारत ने हमेशा मानवता को सर्वोपरि रखने के दृष्टिकोण का पालन किया है। अंकित कुमार, आकाशवाणी समाचार, एवियों, फ्रांस।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, यूरोपीय संघ परिषद के अध्यक्ष एंटोनियो कोस्टा और यूरोपियन कमीशन के अध्यक्ष फॉन डेर लेन के साथ त्रिपक्षीय बैठक भी करेंगे। वे जर्मन चांसलर फ्रेडरिक मर्ट्स के साथ भी बैठक करेंगे। कल सम्मेलन के दौरान प्रधानमंत्री ने कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टार्मर और संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान के साथ बैठकें की थी। यमुना नदी के जीर्णोद्धार के लिए किशाऊ बांध परियोजना पर 6 राज्यों में सहमति बन गई है। इनमें हिमाचल प्रदेश, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हरियाणा और राजस्थान शामिल हैं। ये सहमति कल गृहमंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में नई दिल्ली में आयोजित एक बैठक में बनी। सहमति के अनुसार परियोजना की 90% राशि केंद्र सरकार देगी, शेष 10% राशि 6 राज्य मिलकर वहन करेंगे। गृह मंत्रालय के अनुसार यह फैसला यमुना को स्वच्छ करने में एक महत्वपूर्ण कदम होगा। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने आगामी नीट परीक्षा को देखते हुए विद्यार्थियों और अभिभावकों को घोटालेबाजों से सावधान रहने का अनुरोध किया है। एजेंसी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा है कि घोटालेबाज लोग टेलीग्राम पर कुछ ऐसे चैनल चला रहे हैं जिनमें 21 तारीख को प्रस्तावित परीक्षा के प्रश्न पत्र साझा करने के लिए 14,000 से 25,000 रुपए तक की मांग की जा रही है। एजेंसी ने स्पष्ट किया कि पुनर्परीक्षा का कोई प्रश्न पत्र लीक नहीं हुआ है। NTA के महानिदेशक अभिषेक सिंह का वीडियो भी जारी किया गया है जिसमें यह स्पष्ट कर दिया गया है कि देश में टेलीग्राम ऐप को क्यों फिलहाल बंद किया गया है। फीफा विश्व कप में कल फ्रांस ने सेनेगल को 3-1 से हरा दिया। फ्रांस की ओर से किलियन मबापे ने 2 गोल किए और वे अब 58 गोल के साथ अपने देश के लिए सबसे ज्यादा गोल करने वाले खिलाड़ी हैं। एक अन्य गोल ब्रैडली बारकोला ने दागा। सेनेगल के लिए एकमात्र गोल मबाय ने किया। प्रतियोगिता के अन्य मुकाबले में ईरान और न्यूजीलैंड के बीच मुकाबला 2-2 की बराबरी पर रहा। उरुग्वे और सऊदी अरब तथा बेल्जियम और मिस्र के मैच भी 1-1 से ड्रॉ रहे। क्रिकेट में भारत और अफगानिस्तान के बीच 3 मैचों की एक दिवसीय श्रृंखला का दूसरा मुकाबला आज लखनऊ में दोपहर 1:30 बजे से होगा। मौसम विभाग ने आज हिमालयी पश्चिम बंगाल और सिक्किम में तेज वर्षा के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया है। अगले 4 से 5 दिनों में दक्षिण पश्चिमी मानसून के तेलंगाना, उड़ीसा, झारखंड, बिहार और छत्तीसगढ़ के कुछ हिस्सों में आगे बढ़ने का अनुमान है। विभाग ने आज दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, हिमाचल और उत्तर प्रदेश में भी तेज हवाओं और गरज के साथ बारिश का पूर्वानुमान लगाया है। और इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय सरबजीत कौर। द फ्रेंच सिटी ऑफ एवियन

आज रात 11:10 पर सरकार के 12 वर्ष विषय पर समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रसारित एक विशेष श्रृंखला में नक्सलवाद विषय पर वार्ता सुनवाई जाएगी। वार्ताकार होंगे अंतरिक्ष सुरक्षा विशेषज्ञ सीआरपीएफ के पूर्व अधिकारी। शाम 6:30 पर श्रोता सुनेंगे इंग्लैंड में भारत और नीदरलैंड के मध्य खेले जाने वाले आईसीसी महिला T20 क्रिकेट मैच का आंखों देखा हाल। ये दोनों ही कार्यक्रम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले किए जाएंगे।

युवा संसार कार्यक्रम का समय रहेगा शाम 5:30। दिन में 2:45 पर सुनवाया जाएगा प्रायोजित कार्यक्रम हमारी बेड़ियां और NCERT द्वारा तैयार प्रायोजित कार्यक्रम सुनना न भूलें दिन में 12:30 पर।

प्रातः 7:25 पर सुनना न भूले कार्यक्रम सुबह सवेरे। हमारी सेहत कार्यक्रम में प्रातः 7:15 पर हम आपको सुनवाएंगे हृदय रोग कारण व उपचार। इस विषय पर डॉक्टर दीपा मलिक से की गई भेंटवार्ता।

कृषि जगत कार्यक्रम शाम 6:20 पर और खेत खलिहान कार्यक्रम में दोपहर 2:30 पर नए बागों की रूपरेखा तैयार करना इस विषय पर जानकारी दी जाएगी।

फिल्मी गीतों का कार्यक्रम मन भावन प्रातः 9 बजे और दिन में 1:10 पर प्रसारित किया जाएगा। पत्रों पर आधारित फरमाइशी फिल्म संगीत का कार्यक्रम आपके अनुरोध पर।

अभी आप सुन रहे थे हमारे केंद्र से आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की रूपरेखा। हम बोल रहे हैं आकाशवाणी के रोहतक केंद्र से।

0: अब सुनिए कार्यक्रम हमारी सेहत। इस कार्यक्रम के अंतर्गत आज हम आपको सुनवाएंगे हृदय रोग कारण व उपचार। इस विषय पर डॉक्टर दीपा मलिक से की गई भेंटवार्ता।
1: श्रोताओं, आज बात करेंगे हृदय रोग से संबंधित जितने भी बीमारियां होती है उनके क्या क्या कारण हैं, उनके लक्षण, उपचार और हम इनसे कैसे बच सकते हैं, क्या जीवन शैली अपना सकते हैं, इस बारे में बात करेंगे। और विषय को आधार देने के लिए, इस पर बातचीत करने के लिए आज हमारे पास स्टूडियो में हैं डॉक्टर दीपा मलिक जी। आप हृदय रोग विशेषज्ञ हैं, हार्ट डिजीज से संबंधित जितने भी मामले हैं उनको देखने में आपका बहुत अच्छा अनुभव है और फिलहाल आप नोबल हार्ट जो रोहतक में हॉस्पिटल है वहाँ पे आप अपनी सेवाएं दे रही हैं, तो बहुत होनहार डॉक्टर हैं और अनुभवी डॉक्टर हैं। बहुत बहुत स्वागत करते हैं डॉक्टर साहब आपका।
2: थैंक यू सर, और थैंक यू मुझे ये अपॉर्चुनिटी देने के लिए ताकि मैं लोगों के बीच जागरूकता बढ़ा सकूं कि कारण क्या है हार्ट डिजीज़, जो मतलब बेसिकली बीमारियां होती हैं हार्ट से संबंधित, उनको कैसे, उनके लक्षणों को हम जल्दी पहचानें जल्दी, ताकि वो डायग्नोज हो, जल्दी उसका उपचार हो और कुछ चीज़ें जो हम अपना कंट्रोल कर सकते हैं उसको
1: जी कंट्रोल कर सकते हैं उनको
2: कंट्रोल करें या प्रिवेंट करें, मतलब बेसिकली हार्ट डिजीज ना हो कुछ लोगों में, मतलब आगे ना बढ़े, उसको कैसे हमने बेसिकली एड्रेस करना है, वो चीज़ मैं साझा करने की कोशिश करूंगी।
1: जी बिल्कुल, तो सबसे पहले यही जानना चाहेंगे हृदय रोग यानी कि हार्ट से संबंधित जो बीमारी है उसको किस तरह से समझे।
2: सर, हार्ट की जो बीमारी है वो उसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं। सबसे कॉमनली जो हम देखते हैं वो हार्ट अटैक देखते हैं।
1: हार्ट अटैक तो देखते हैं, मैं थोड़ा सा सवाल की तह में जा रहा हूँ। हार्ट से संबंधित बीमारी वो शरीर में कहाँ पे होगी वो बताइए जरा, क्योंकि लोगों को पता नहीं होता इस बारे में।
2: नहीं सर, हार्ट से संबंधित बीमारी होगी तो मतलब बेसिकली हार्ट में ही, हार्ट का हम स्ट्रक्चर देखें, एनाटॉमी देखें कि किस चीज से वो बना हुआ है। हाँ। उसमें मांसपेशियां होती हैं। हाँ। हार्ट मसल जिसको बोलते हैं। हाँ। एक चीज तो वो है, उसकी बीमारी हो सकती है, उसकी में बेसिकली करंट जाता है तो उसमें कुछ चैनल्स होते हैं, उसमें कुछ मॉडिफिकेशन हो जाए तो उससे रिलेटेड बीमारी हो सकती है जिसके कारण हार्ट की पंपिंग कम होगी बेसिकली, और मरीज को जो सिम्टम्स आएंगे वो चीजें होंगी, जैसे अगर हार्ट का अच्छे से पंप नहीं करेगा तो उसको थकान जल्दी होगी,
1: थकान जल्दी
2: सांस फूलेगा।
1: मैं आपको रोक रहा हूँ बीच में
2: जी जी।
1: भाई मुझे दिल की बीमारी से संबंधित कोई समस्या है।
2: हाँ जी।
1: तो प्राथमिक तौर पर मैं क्या महसूस करूँ, क्या मेरे कंधे के आसपास दर्द होगा, क्या मेरी पफली में नीचे दर्द होगा या मेरी कमर में दर्द होगा?
2: सर हार्ट
1: आम तौर पे जो लक्षण है जो प्राथमिक तौर पर कोई भी मरीज पहचान सकता है उसके बारे में बताएं पहले।
2: सबसे कॉमन तो दिल में मतलब बेसिकली दर्द होगा, छाती में दर्द, वो हार्ट अटैक के ही मरीज में होता है।
1: जी।
2: ठीक है, उसका कारण यूजली यही होता है,
1: दाएं या बाएं छाती में,
2: बाएं तरफ छाती में दर्द होता है, वो हाथ की तरफ भी जा सकता है या पीछे कमर की तरफ भी जा सकता है, कई बार हमारी गर्दन में भी जाता है।
1: अच्छा।
2: और हमारी जो पेट में भी कई बार उसका दर्द जाता है
1: जी।
2: तो उसको हमें बेसिकली दूसरी चीजों से कैसे डिफरेंशिएट करें या कैसे उसको देखें, तो हाँ। ये हमें ज़्यादा पता होना चाहिए। हाँ। हार्ट का जो दर्द होता है बेसिकली उसमें बहुत तेज़ दर्द होगा वो।
1: हाँ।
2: और ऐसा नहीं है कि वो लगातार रहेगा।
1: हाँ।
2: अगर हार्ट अटैक होता है तो वो उसका कम से कम वो 20 मिनट आधा घंटा होता है
1: जी।
2: साथ में घबराहट होगी इंसान को, पसीना आता है, उल्टियाँ आ सकती हैं साथ
1: में। क्या वो एकदम से शुरू होता है?
2: हाँ जी हाँ जी, वो बिल्कुल एकदम शुरू होगा।
1: हाँ।
2: कई बारी वो पहले भी अपनी बीमारी लक्षण दिखाती है, ऐसा हाँ। नहीं कि वो हमेशा ही एकदम शुरू होगा।
1: जैसे क्या लक्षण दिखा?
2: जैसे चलने फिरने पे अपनी रूटीन दिनचर्या में इंसान महसूस कर सकता है कि जैसे ही वो थोड़ा तेज काम करता है या चलता है, सीढ़ियां चढ़ता है, तो सांस फूलना या फिर छाती में भारीपन आना, और जैसे ही वो रुकेगा, वो काम को रोकेगा तो वो चीज ठीक हो जाती है। एक लक्षण ये है।
1: ठीक है।
2: कई बार जैसे शुगर के मरीज हैं या कई बार ओल्ड एज में है, जैसे ओल्ड एज के जो पेशेंट्स होते हैं 60 साल से ऊपर, तो उसमें दर्द नहीं होता। जैसे यंग पेशेंट में टिपिकल दर्द होगा छाती में, उनको दर्द नहीं होता, उनका एकदम सांस फूलता है, घबराहट होती है, पसीना आता है। ये भी एक हमारा, उसको हम इंग्लिश में बोले तो एंजाइना बोलते हैं उसको। हार्ट से रिलेटेड दर्द जो होता है उसको हम एंजाइना बोलते हैं। वो तीन तरीके से हम,
1: एक और लक्षण बताइए इसमें।

0: बीच में रोक रहा हूँ आपको,
1: हाँ जी
0: कि जैसे एकदम सांस फूल रही है,
1: हाँ
0: हम
1: जी
0: चल रहे हैं, सीढ़ियाँ चढ़ रहे, एकदम सांस फूल रही है, क्या सांस फूलने के साथ साथ में खांसी भी आती है?
1: हाँ जी आ सकती है खांसी, क्योंकि बेसिकली सांस इसलिए फूलता है जब हमारा हार्ट का पे इफेक्ट आता है, जोर पड़ता है, तो वो अच्छे से पंप नहीं कर पाता और लंग्स में पानी भर जाता है, उससे हमें सांस भी फूलता है और साथ में खांसी भी आती है।
0: जी
1: इसको हम फेफड़े की बीमारी से भी कॉमनली हम कन्फ्यूज़ करते हैं
0: अच्छा
1: कि भाई फेफड़े की बीमारी है या हार्ट की, उसको कैसे हम अलग करें कि भाई फेफड़े के सिम्टम ज़्यादा हैं या हार्ट से रिलेटेड संबंधित बीमारी है ये। जो
0: जी
1: फेफड़े का मरीज़ होता है उसमें ज़्यादातर पहले लंबे समय से खांसी रहेगी उसको,
0: जी
1: पहले खांसी आती है फेफड़े की बीमारी में
0: हाँ
1: और वो लंबी समय से रहेगी, उसके बाद उसका बहुत टाइम बाद सांस फूलना शुरू होता है। और
0: अच्छा
1: हार्ट का उल्टा होता है, हार्ट में
0: हाँ
1: बेसिकली पहले मरीज का सांस फूलता है,
0: हाँ
1: उसके बाद उसको ज़्यादातर पहले खांसी आती है रात को सीधा लेटने पे, क्योंकि हार्ट अच्छे से ब्लड फ्लो जो है वो आगे पंप नहीं कर पाता तो वो लंग्स में पानी जाता है और उसके कारण रात को सांस फूलता है पहले,
0: जी
1: और बाद में फिर वो दिनचर्या में आता है कि भाई जब वो अब ज़्यादा हैवी काम करेगा, शरीर को ब्लड फ्लो ज़्यादा चाहिए होगा, हार्ट उतना काम कर नहीं पाएगा,
0: तब
1: तो लंग्स
0: परेशानी होगी
1: में तब
0: उसको।
1: परेशानी होगी
0: जी
1: उसको।
0: तो डॉक्टर दीपा,
1: जी
0: आसान भाषा में समझाएं हमको, बताएं क्यों हार्ट में ब्लॉकेज होते हैं, क्यों हार्ट पंपिंग में दिक्कतें करता है?
1: देखिए हार्ट में ब्लॉकेज बेसिकली तो हम एक सिर्फ उस चीज़ की बात कर रहे हैं कि हार्ट का जैसे स्ट्रक्चर मैंने आपको बताया कि मांसपेशियां होती हैं, नाड़ियां होती हैं हार्ट को जो ब्लड सप्लाई करेंगी,
0: अच्छा
1: खुद हार्ट को भी तो ब्लड की ज़रूरत होती है, जैसे वो शरीर को पूरे को पंप करता है
0: जी
1: तो उसकी जो नाड़ियाँ होती हैं उनमें अगर ब्लॉकेज आ जाती है, तो अगर वो ब्लॉकेज धीरे धीरे धीरे धीरे बढ़ती है तो उसमें वो धीरे धीरे हार्ट की पंपिंग पे असर डालना शुरू करती है। बेसिकली एक यही है, खेत में अगर हम धीरे धीरे पानी कम देंगे तो फसल सूखना शुरू हो जाती है,
0: हाँ
1: ऐसा ही इसके साथ है कि जैसे जैसे ब्लड का संचार हार्ट की मसल को कम जाएगा तो वो मसल कम काम करना शुरू कर देगी।
0: आपने एक बात का जिक्र किया, ब्लॉकेज।
1: जी
0: ब्लॉकेज का मतलब कोई रुकावट, क्या
1: जी
0: रुकावट होती है वो?
1: रुकावट बेसिकली वहाँ पे जो हमारी नाड़ियाँ होती है उसमें कोलेस्ट्रॉल, बैड कोलेस्ट्रॉल एक वो होता है, वो जमना शुरू हो
0: इस
1: जाता है।
0: कोलेस्ट्रॉल को आसान भाषा में समझाए, क्या होता है कोलेस्ट्रॉल?
1: कोलेस्ट्रॉल बेसिकली जो हम अपने खान पान से, अगर हम घी ज़्यादा लेते हैं या चिकनाई तली हुई चीज़ें ज़्यादा लेते हैं,
0: अच्छा
1: वो अपनी शरीर में उसकी मात्रा बढ़ने लगती है, वो लिवर में भी जमना शुरू हो जाती है और हार्ट की नसों में भी जमना शुरू हो जाती है। उसके रिस्पॉन्स में हमारा जो शरीर है वो उससे फाइट करने की कोशिश भी करता है कुछ हद तक शुरुआत में,
0: हाँ
1: तो वहाँ पे हमारे प्रोटेक्टिव सेल्स आते हैं, वो आते हैं उसकी रोकथाम के लिए,
0: तो
1: पर
0: आप
1: जब वो
0: कहना,
1: कोलेस्ट्रॉल बढ़ता जाता है तो
0: हाँ
1: उसको हमारी बॉडी नहीं बचाव कर पाती और उसके बाद वो धीरे धीरे ब्लॉकेज बढ़ती जाती है और वो संचार, ब्लड के संचार को हार्ट की मसल तक पहुंचने नहीं देती, जिसके
0: अच्छा
1: कारण दिक्कत आती है।
0: तो आप ये कहना चाह रही हैं कि जो हार्ट के आसपास जो नलियाँ होती
1: हाँ
0: हैं
1: जी
0: वो संकरी हो जाती हैं,
1: जी जी
0: जिस वजह से फिर उसमें रुकावट आती है। संकरी होने की वजह से या तो वो बंद हो जाएंगी या
1: नहीं नहीं
0: फिर,
1: सर, रुकावट के कारण बेसिकली मैं कह रही हूँ, उसके
0: हाँ
1: जो अंदर है, जो उसके बेसिकली जितना भी उसमें स्पेस बोल लें या वो है, तो उसमें अगर कुछ जमना शुरू हो जाएगा तो धीरे धीरे धीरे वो आप पतली होना शुरू हो
0: जी
1: जाएंगी।
0: पतली हो जाएंगी और
1: हाँ
0: संकरी हो
1: हाँ
0: जाएंगी।
1: जी हाँ जी
0: ठीक
1: हाँ जी
0: है,
1: हाँ जी
0: हाँ तो ये कारण है। तो क्या इसके अलावा और भी कारण होता है? एक तो आपने ये बताया कि भाई आप कुछ बैड कोलेस्ट्रॉल ले रहे हैं,
1: हाँ
0: इसके
1: जी
0: अलावा और कुछ
1: और
0: बातें हो
1: रिस्क
0: सकती हैं
1: फैक्टर होते हैं कुछ को
0: जैसे?
1: हम जो हमारे कंट्रोल में होते हैं
0: हाँ
1: जिसको हम बदल सकते हैं।
0: हाँ
1: एक तो है उसमें स्मोकिंग,
0: हाँ
1: स्मोकिंग जब हम करते हैं तो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस बोलते हैं उसको, बेसिकली
0: हाँ
1: हमारे शरीर पे जोर पड़ता है
0: हाँ
1: तो उसमें वो वहाँ पे जाके ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस होगा तो वो कोलेस्ट्रॉल का जमना बढ़ जाएगा
0: हाँ
1: और जो सेल्स होते हैं हमारी से जो नाड़ियाँ होती हैं, नाड़ियों में जो सेल्स होते हैं
0: हाँ
1: उस पे ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस बढ़ेगा तो वहाँ पे और सेल्स आके डिपॉजिट होना शुरू हो जाएगी, वो भी
0: अच्छा
1: रुकावट करेगी।
0: अच्छा
1: और स्मोकिंग में एक नाइट्रिक ऑक्साइड होता है, सब्सटेंस बोलते हैं उसको,
0: हाँ
1: वो जो होता है वो रुकावट के फटने का बेसिकली जो है वो जो नस के अंदर जमा हो गया है उसके ऊपर एक परत होती है, उस परत के फटने की वजह से वहाँ पे ब्लड जो है इकट्ठा हो जाता है और पूरी तरह से नाड़ी को बंद कर देता है। वो
0: अच्छा
1: फटने में जो है बेसिकली वो स्मोकिंग का में से जो जाते हैं नाइट्रिक ऑक्साइड वो रोल प्ले करता है, जिसके कारण एकदम सडन अटैक हो सकता है मरीज को।
0: अच्छा ठीक है। इसके अलावा जीवन शैली में और कौन कौन सी ऐसी आदतें हैं? उदाहरण के तौर पर कई बार लोग शराब की लत भी डाल लेते हैं, क्या उससे भी फर्क पड़ता है?
1: शराब बहुत हाई डोज में हैवी मात्रा में अगर लेते हैं तो वो नाड़ियों की बजाय नाड़ियों में

0: तो असर करता ही है, पर ज़्यादा असर वो हार्ट की मसल को करता है अगर लंबे समय तक। यूजुअली जो देखा जाता है 80 ग्राम से ज़्यादा अगर एक आदमी लेता है कम से कम 5 से 10 साल तक, उसके बाद जो हार्ट की मसल है वो उसको इफ़ेक्ट करता है और उसकी पंपिंग मसल को कमज़ोर बना देता है, हार्ट की पंपिंग कम होती है, फिर मरीज़ को वही थकान रहना शुरू और सांस फूलना शुरू हो जाता है।
1: अच्छा डॉक्टर दीपा, एक बात को और विस्तार दें। कई बार ऐसा बताया जाता है और आजकल ये बहुत चल रहा है, जितने भी नौजवान लोग होते हैं ना, कई बार तो ऐसा है कि भाई ऐसे ऐसे केस सुनने में आते हैं कि जिम करने गया था, वहीं पे एक्सरसाइज करते करते गिर गया। क्या स्टेरॉइड का जो इंटेक होता है उसकी वजह से भी हार्ट अटैक आता है?
0: हाँ जी, हाँ जी, स्टेरॉयड भी एक फैक्टर है उसमें। स्टेरॉयड से बेसिकली हमारा कोलेस्ट्रॉल पे भी वो इफेक्ट डालता है और बॉडी में इन्फ्लामेशन क्रिएट कर देता है। इन्फ्लामेशन का मतलब एक बोले तो नॉर्मल भाषा में कि
1: इन्फ्लेमेशन का मतलब हो गया सूजन। जी
0: सूजन, एक तरीके से सूजन हमारे सेल्स में हो जाती है और उस वो भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। सूजन अगर होगी तो वही जो जमावट है उसको, वो जो प्लाक बना हुआ है एक तरीके से,
1: हाँ
0: उसको हम, मैं समझाने उसमें एक वर्ड दूं तो एक प्लाक बोलते हैं बेसिकली उसको,
1: हाँ
0: उसको फटने में ही उसका रोल होता है।
1: जी
0: स्टीरॉयड
1: बिल्कुल
0: भी उसको, वो अगर वो फट जाएगा नाड़ी के अंदर तो बहता हुआ जो ब्लड है उसके ऊपर जमना शुरू हो जाएगा और वो
1: हाँ
0: नाड़ी को बंद कर देगा।
1: जी। अब हमने जान लिया कि क्या क्या कारण होते हैं इसके, कौन कौन से फैक्टर इसके लिए जिम्मेदार हैं
0: हाँ
1: और
0: जी,
1: मरीज में क्या क्या लक्षण आ रहे हैं। लेकिन इसमें सबसे बड़ी बात होती है आपातकालीन परिस्थिति। किसी को कार्डियक अरेस्ट आया है, किसी की छाती में दर्द हो रहा है,
0: हाँ जी
1: बस साफ ही नहीं ले पा रहा है कि लगता है कि अब जान गई,
0: जी
1: ऐसी
0: जी
1: परिस्थिति में क्या करें?
0: ऐसी परिस्थिति में बेसिकली आप जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी मेडिकल हेल्प लीजिए। दूसरा ये है कि भाई हम टैबलेट होता है बेसिकली हार्ट अटैक के लिए, इकोस्प्रिन और सॉर्बिट्रेट भी एक टैबलेट आती है जो हम जीभ के नीचे रख सकते हैं जिससे हमें रिलीफ मिलता है। पर सब मैं यही कहूँगी कि सबसे पहले आप जितना जल्दी हो सके हॉस्पिटल में जाएं, ईसीजी और उपचार लें, वहाँ पे फर्स्ट एड लें।
1: जी फर्स्ट एड वहाँ पे लें,
0: जी
1: लेकिन अक्सर ऐसा सुनने में आता है कि हार्ट अटैक आया, कार्डियक अरेस्ट हुआ किसी को,
0: हाँ जी
1: हॉस्पिटल तक गया तब तक नहीं बच पाया। तो
0: जी
1: ये जो हॉस्पिटल तक जाने का जो समय होता है बड़ा कीमती होता है,
0: हाँ जी
1: इसके दौरान आप कुछ ऐसी एहतियात की बातें बता पाएं जिसके कोई भी जो मरीज है वो फॉलो कर सकता हो।
0: इसमें ज़्यादातर तो सर उनको यही है कि जितनी जल्दी हो सके वो अस्पताल पहुँचे, नहीं तो मेडिकल इमरजेंसी में इतना कॉमनली कुछ तो लोग अवेयर नहीं है कि अगर ऐसा होगा तो क्या है। कई बार ये हार्ट का मरीज़ जैसे किसी के घर में होता है तो उनके
1: हाँ
0: पास दवाइयाँ होती हैं
1: जी
0: तो वो ले सकते हैं।
1: हाँ
0: दूसरा यही है कि भाई जल्दी वो उसमें पहुंचे, और उस अगर जो ज़्यादातर मौतें मतलब एकदम सडन अरेस्ट होता है
1: हाँ
0: वो उसी के कारण होता है कि हार्ट का पंपिंग रुक जाता है,
1: ठीक है।
0: तो उसमें हम बेसिकली जो साथ वाला बंदा है वही कुछ उसको हेल्प दे सकता है,
1: क्या क्या
0: सीपीआर
1: हेल्प
0: कर
1: कर
0: सकता
1: सकता
0: है।
1: है? कई बार
0: सीपीआर
1: ऐसा होता है कि जो साथ वाले जो लोग होते हैं, परिवार के लोग होते हैं और लोग होते हैं, किसी को हृदय संबंधी कोई समस्या आई है तो उसकी छाती को थोड़ा सा रगड़ेंगे, मसलेंगे,
0: हाँ
1: तलवों की मालिश करेंगे, हाथों की मालिश करेंगे, बॉडी मसाज करेंगे, या फिर और कोई भी ऐसा उपाय है कि जिनको साथ के साथ करने से कम उसका असर थोड़ा बहुत कम हो जाए,
0: ऐसा नहीं,
1: राहत
0: मतलब
1: मिले।
0: असर तो सर दर्द तो को हम कम नहीं कर पाते क्योंकि वो जो नाड़ी ब्लॉक है उसके कारण बेसिकली धड़कन ऊपर नीचे होती है, धड़कन बहुत तेज हो जाती है जिसकी वजह से हम बोलते हैं फिब्रिलेशन या टेकीकार्डिया, वेंट्रिकुलर टेकीकार्डिया। तो
1: हाँ
0: उसमें हम एक चेस्ट थंप की बात आती है, एकदम मुक्का मार सकते हैं हम, तो उससे जो बेसिकली हार्ट में रिदम डिस्टरबेंस होती है या इलेक्ट्रिक करंट जो होता है हार्ट का, हम बाहर से कुछ उस पर फोर्स लगाएंगे तो वो एकदम रुक के फिर नया दोबारा रीसेट हो सकता
1: छाती
0: है।
1: में मुक्का मार
0: हाँ
1: सकते
0: जी,
1: हैं,
0: हाँ
1: ठीक
0: जी,
1: है।
0: ये
1: हाँ
0: चेस्ट थंप हम उसको बोलते हैं। तो आम आदमी तो बेटर है कि वो यही करे, कई बार उससे रिवर्ट हो जाता है बहुत
1: अच्छा
0: मैक्सिमम केसेस में।
1: क्या ना करें?
0: ना करने का तो ऐसा मतलब कुछ है नहीं स्पेसिफिक। उस समय ये है कि खाने पीने को मरीज़ को कुछ ना दिया जाए ताकि बेहोश मरीज़ हो गया तो वो कहीं फेफड़े में उसके ना चला जाए, तो खाने पीने के लिए उस समय अवॉइड करना चाहिए कि कुछ उसको दे या मुंह में कुछ डाल दिया या ये सब चीज़ें।
1: कई बार ये होता है कि उल्टा लेटा दें,
0: उसका
1: करवट लेके लेटा
0: तो
1: दें, क्या ऐसा भी करना चाहिए, इसको बचना
0: ऐसा
1: चाहिए?
0: तो करने का मतलब कोई वो नहीं है कि पोजीशन से कुछ फर्क पड़ेगा या नहीं, ऐसा कुछ
1: जी
0: नहीं है।
1: बिल्कुल। तो ये एहतियात की बात हुई, और जब हॉस्पिटल में जाते हैं उसके बाद फिर वहाँ पे ट्रीटमेंट मिलना शुरू होता है, और ट्रीटमेंट के भी कई चरण होते हैं इसमें। लेकिन जब हम ट्रीटमेंट की बात करते हैं, इसमें प्राथमिक तौर पे क्या होता है, या तो सीधा सर्जरी के लिए जाते हैं, इससे पहले उपचार भी करते हैं कुछ?
0: नहीं नहीं सर, पहले तो हमें जो कंडीशन है मरीज की वो डायग्नोज करनी पड़ती है, देखना पड़ता है कि किस कारण से ऐसा हो रहा है।
1: हाँ।
0: दर्द तो उस सबसे पहले फर्स्ट लाइन में आता है हमारा ECG,
1: जी
0: ठीक है, वो उसको हम देखते हैं। ECG में क्या होता है, कुछ चेंजेस आते हैं जिससे हमें पता चल जाता है कि भाई मरीज को हार्ट अटैक आया है, ठीक है। और सबसे पहले हम अगर ECG कराते हैं, ECG में चेंजेस हैं तो हम मरीज को सबसे पहले मेडिसिन देते हैं। मेडिसिन में हम एंटीप्लेटलेट बोलते हैं उसको, बेसिकली जो हमारे खून को जमने से रोकता है,
1: हाँ।
0: तो वो मेडिसिन देते हैं। दूसरा, और खून पतला करने की कुछ दवाइयाँ दी जाती हैं। एक स्टेटिन होता है जिसमें वो प्लाक मतलब बेसिकली लिपिड को कंट्रोल करे और आगे डिजीज़ ना बढ़े सडनली, तो उसको वो चीज़ दी जाती है। प्राइमरी 3-4 मेडिसिन आपको दी जाती हैं शुरू
1: हाँ।
0: में, जिससे नाड़ी के खुलने के चांसेस भी होते हैं।
1: जी
0: दूसरा, डेफिनेटिव ट्रीटमेंट तो इसका यही है कि उसको एंजियोग्राफी की जाए। एंजियोग्राफी में बेसिकली हम हार्ट की नसों की जाँच करते हैं, वो हाथ या पैर से रास्ता बना के हम हार्ट की नसों का एक्सरे लेते हैं, कॉमन भाषा में मैं बोलूँ तो। उसमें अगर ब्लॉकेज आती है तो उसको हमें ठीक करना पड़ता है।
1: जी बिल्कुल। और इसके बाद क्या सर्जरी का जो ऑप्शन होता है, वो लास्ट होता है? बिल्कुल
0: सर, लास्ट नहीं होता, कुछ केसेस में जो है वो सर्जरी ज़्यादा बेटर होती है
1: हाँ
0: ऐसे स्टेंटिंग से।
1: जी
0: उसमें बेसिकली वो मरीज आते हैं जिसमें बहुत ज़्यादा रुकावट है हार्ट की। बेसिकली होती हैं 3 नसें, 2 लेफ्ट साइड की
1: हाँ
0: और एक जिस जो लेफ्ट साइड की जो छोटी नसें हैं वो बड़ी एक नस से निकलती हैं,
1: हाँ
0: और राइट साइड में एक नस होती है।
1: हाँ
0: अगर जो लेफ्ट साइड की मेजर नस है उसमें ब्लॉकेज है और तीनों नसों में ब्लॉकेज है
1: हाँ
0: और लंबी बीमारी है जिसको हम छल्ले से नहीं द्वारा नहीं ठीक किया जा सकता,
1: जी
0: या मरीज डायबिटिक है, या
1: हाँ
0: मेजर नस जो लेफ्ट साइड की है उसमें ही बीमारी है,
1: हाँ
0: तो ऐसे मरीज बाईपास के लिए सीधा जाते हैं।
1: ठीक है।
0: अगर एक नस में रुकावट है या फिर जैसे सडन अटैक हो गया किसी मरीज को, एकदम जैसे हम बात कर ही रहे थे कि सडनली हुआ है, तो उसमें तो हमें उसको तार डाल के छल्ले से उसको सफाई करके और छल्ले से ही रोकथाम करनी पड़ती है।
1: जी डॉक्टर दीपा, जीवन शैली के बारे में बताएं, क्या ऐसा करें कि बीमारियां ही ना हो?
0: कुछ तो सर चीज़ें हम कंट्रोल में कर सकते हैं, जैसे फिजिकल एक्टिविटी। आजकल हमारी दिनचर्या में हम फिजिकल एक्टिविटी, यूथ हो गया या अपने पेरेंट्स हो गए, वो करते नहीं हैं। फिजिकल एक्टिविटी सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है। हार्ट
1: जी
0: की एक बहुत चर्चित स्टडी है जो हम पढ़ते आए हैं सालों से, जिसमें ये बताया गया है कि फिजिकल एक्टिविटी बहुत ज़रूरी है। दूसरा, डाइट, डाइट हमारी, उसमें हम सिर्फ फैटी डाइट खाते हैं,
1: जी डाइट के
0: प्रोसेस्ड डाइट
1: बारे में,
0: खाते हैं।
1: डाइट के बारे में जानेंगे। फिजिकल एक्टिविटी में ऐसी कौन सी एक्सरसाइज होगी जो आप सुझा सकते हैं जो हार्ट के लिए सबसे अच्छी है?
0: सर ऐसा स्पेसिफिक तो हम ये नहीं बोल सकते, बस उसमें ये है ब्रॉड टर्म में कि आपको फिजिकल एक्टिविटी करनी है, चाहे उसको मान लीजिए नॉर्मल में आपके 10,000 स्टेप्स डेली कर रहे हैं, मिनिमम बेयर मिनिमम तो ये है कि ये
1: हाँ,
0: आप करें।
1: हाँ,
0: कार्डियो कर सकते हैं, एरोबिक्स कर सकते हैं,
1: हाँ,
0: उसमें कि कार्डियो ज़्यादा बेटर है, या आजकल जो ये जिम जाते हैं रेजिस्टेंस ट्रेनिंग करते हैं
1: हाँ,
0: वो बेटर है, ये कह तो किसी स्टडी में प्रूव नहीं हुआ है कि भाई हमें ये बेहतर है। बस बेसिकली ये है कि आपको फिजिकल एक्टिविटी करनी है, चाहे वो आप 10,000 स्टेप चले, चाहे आप एरोबिक करें, चाहे आप योगा करें, या फिर आप इस चीज को रेजिस्टेंस स्ट्रेंथ ट्रेनिंग जो करते हैं आजकल वो करें।
1: जी आप खान पान के बारे में बता रही थी।
0: जी
1: हाँ।
0: सर, खाने पीने में बेसिकली ये है कि आजकल हम पैकेज वाले फूड ज़्यादा खाते हैं, पैकेट वाले जो बेसिकली प्रोसेस्ड फूड्स होते
1: हाँ।
0: हैं जिसमें सॉल्ट ज़्यादा होता है, सैचुरेटेड फैट्स बहुत ज़्यादा होते हैं,
1: हाँ।
0: तली हुई चीज़ें खाते हैं, बाहर का खाते हैं,
1: हाँ।
0: जो ऑयल बार बार रीहीट होके यूज़ होता है उसमें जो है सैचुरेटेड फैट बहुत बढ़ जाते हैं काफ़ी मात्रा में, तो वो खाया जाता है, उसका सेवन ना किया जाए।
1: हाँ।
0: और ज़्यादा प्रोटीन इंटेक, और हम देखें तो हमारे जो भी स्टडीज़ हुई हैं, हम USA के कंपैरिजन में अगर भारत में कंपेयर करें तो भारत के मरीज़ों में अगर वहाँ पे 50 साल के आदमी को हार्ट अटैक हो रहा है, तो भारत में 40 या 30 साल की उम्र में लोगों को हार्ट अटैक हो रहा है। ऐसा क्यों? वो हमारा मेजर जो कारण बताया जा रहा है या स्टडीज़ में देखा गया है, वो पाया गया है कि जो हमारी डाइट है, डाइट कार्बोहाइड्रेट रिच है।
1: जी
0: कार्बोहाइड्रेट हम ज़्यादा खाते हैं, मीठा,
1: जी
0: जिससे हमारा बेसिकली जो है एब्डोमिनल फैट, एब्डोमिनल ओबेसिटी जो है, जो हमारी चर्बी है वो पेट के आसपास एकत्रित होती है,
1: तो पेट पे मोटापा रहता है
0: जी जी
1: हाँ।
0: जी वो कार्बोहाइड्रेट रिच डाइट का कारण है, के कारण ऐसा होता है
1: हाँ।
0: और वही एक रिस्क फैक्टर है, काफी सिग्निफिकेंट रिस्क फैक्टर एब्डोमिनल ओबेसिटी
1: जी
0: जो हार्ट अटैक का रिस्क काफी बढ़ा देता है।
1: जी
0: इंसुलिन रेजिस्टेंस होती है मरीज को, शुगर का रिस्क भी वो बढ़ाता है और हार्ट के अटैक का रिस्क भी बढ़ाता है। तो उस चीज को हमें टारगेट करना चाहिए, बैलेंस्ड डाइट एक बेसिकली हमें लेनी चाहिए।
1: कार्बोहाइड्रेट के जो फूड हैं उनको कम करना चाहिए।
0: जी जी जी

0: प्रोटीन इंटेक बढ़ाना चाहिए, और फैट में भी सैचुरेटेड फैट्स बेसिकली है वो हम लें, अनसैचुरेटेड फैट्स अवॉइड करें, पैकेट प्रोसेस्ड फूड्स जो है वो अवॉइड किया जाए। और दूसरा डाइट में हम ये करना चाहिए कि फ्रूट इंटेक एटलीस्ट 4 to 5 सर्विंग्स जो है हमें फ्रूट की डेली लेनी चाहिए, पर वीक बेसिकली, कि रोज हम फ्रूट में खाएं और सैलेड, उसका जो है फाइबर ताकि इंटेक हमारा हो, और इंसुलिन रेजिस्टेंस और आगे की जो चीज़ें होती हैं बेसिकली वो भी हार्ट अटैक का रिस्क काफ़ी प्रिवेंट करती हैं। तो फ्रूट इंटेक होना चाहिए और फाइबर इंटेक होना चाहिए, जिसमें सैलेड्स आ जाते हैं हमारे, तो वो इंटेक होना चाहिए डाइट के हिसाब से।
1: जी बिल्कुल, इन सब के अलावा और कोई बात आप हमारे श्रोताओं का ध्यान दिलाना चाह रही हूँ चलते चलते?
0: डाइट में तो बेसिकली यही है, और दूसरा कोलेस्ट्रॉल का हमारा कुछ बीमारी होती है हार्ट अटैक जो फैमिलीज में चला आता है, फैमिली दर फैमिली, किसी के मदर को हो गया तो उसमें फादर को हो गया तो और चाचा ताई में हो गया, तो हमें भी रिस्क ज़्यादा रहता है। तो उस केस में हमें क्या करना है, उसमें हमें जाके बेसिकली हॉस्पिटल में ही एक टेस्ट होता है लिपिड प्रोफाइल, वो कराएं। आजकल काफ़ी एडवांस दवाइयाँ आ गई हैं, उसको टारगेट करें तो रिस्क वो आगे के लिए फ्यूचर में बहुत कम कर सकता है हार्ट अटैक का। क्योंकि जब हमें भगवान ने पहले अवेयर कर दिया हमारी फैमिली में वो रिस्क फैक्टर है, हमारी फैमिली में हार्ट अटैक होता आया है, तो ऐसे में हमें हॉस्पिटल जाके लिपिड प्रोफाइल, वो बहुत एक मामूली सा टेस्ट है, बिल्कुल बेसिक इन्वेस्टिगेशन है, वो तो हर कोई करा सकता है, उस हिसाब से हमें फिर दवाई शुरू कर देनी चाहिए ताकि वो आगे बढ़े ना,
1: आगे बढ़े ना, और समय समय पर डॉक्टर साहब से उसका फॉलोअप लेते रहना चाहिए।
0: हाँ जी
1: जी। तो डॉक्टर दीपा मलिक जी, आप आकाशवाणी के स्टूडियो आए और आपने जितने भी हार्ट डिजीज है, खासकर जो आजकल के समय में फैली हुई है और लोग इसके बारे में चिंतित है, उनके बारे में हमारे श्रोताओं का जागरूक किया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: जी जी, थैंक यू, थैंक यू।
2: हमारी सेहत कार्यक्रम के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे हृदय रोग कार्ड में उपचार, इस विषय पर डॉक्टर दीपा मलिक से की गई भेंट वार्ता। इनसे भेंट कर रहे थे विनय कुमार। ये कार्यक्रम सुनवाया गया आकाशवाणी के रोहतक केंद्र से, और अब प्रस्तुत है कार्यक्रम सुबह सवेरे।

सुबह सवेरे कार्यक्रम सुन रहे सभी श्रोताओं का बहुत बहुत स्वागत है आज के इस कार्यक्रम में। और श्रोताओं, आज के इस कार्यक्रम में मैं हूं आपके साथ, आपकी रेडियो दोस्त गीता। और सबसे पहले जानकारी आपको देते हैं दिन विशेष के बारे में। श्रोताओं, आज 17 जून को हम मना रहे हैं मरुस्थलीकरण एवं सूखा रोकथाम दिवस। यह महत्वपूर्ण आयोजन भूमि क्षरण, जल संकट और भीषण सूखे जैसी गंभीर पर्यावरणीय चुनौतियों के बारे में जागरूकता बढ़ाता है। दुनिया भर के लोग प्राकृतिक संसाधनों की रक्षा के लिए स्थायी समुदायों संसाधनों पर ध्यान केंद्रित करने के लिए एकजुट होते हैं। इस दिन को मनाने का उद्देश्य भूमि प्रबंधन को बढ़ावा देना है। यह दिन सूखे और पर्यावरण क्षरण के खतरों के प्रति जन जागरूकता को बढ़ाता है। साथ ही यह वैश्विक सहयोग को प्रोत्साहित करता है और सरकारों, व्यवसायों तथा आम लोगों से भूमि पुनर्स्थापन प्रयासों में योगदान देने और भाग लेने का आग्रह करता है। श्रोताओं, भूमि क्षरण को लेकर बढ़ती चिंताओं के समाधान हेतु संयुक्त राष्ट्र ने इस दिन को मनाने की स्थापना की। इसका निर्माण मरुस्थलीकरण रोकथाम हेतु संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन में के प्रत्यक्ष संदर्भ में किया गया था। इसका उद्देश्य देशों को भीषण सूखे से निपटने के लिए एकजुट करना और भूमि के सतत उपयोग के लिए व्यवहारिक दिशा निर्देश स्थापित करना है।

जब व्यापार के प्रचार की हो बात तो अपनाएं आकाशवाणी का साथ। हर दिल, हर घर और हर जन, हर वर्ग को जोड़ने का है साधन। विश्वसनीय, असरदार और हम सब का हम सफर आकाशवाणी रोहतक है सदा तत्पर। हमारी आवाज आपका प्रचार, हो जाए समृद्ध होने को तैयार। अपने ब्रांड को विज्ञापन के जरिए जन जन पहुंचाने के लिए आज ही संपर्क करें आकाशवाणी रोहतक

कार्यक्रम सुबह सवेरे श्रोता सुन रहे हैं आकाशवाणी के रोहतक केंद्र से। श्रोताओं कहते हैं कि परिवर्तन जो है वो प्रकृति का नियम है। अभी देखिए, कुछ ही दिन पहले तक हम सभी चिलचिलाती हुई गर्मी का सामना कर रहे थे। गर्मी ने सभी का जीना बेहाल कर रखा था, किंतु अब जो बारिश हुई है उसने सभी को गर्मी से निजात दिलाई है। तापमान में गिरावट आने से मौसम खुशनुमा हो गया है। हम देखते हैं कि कई बार बारिश के मौसम में बहुत तेज़ आंधी तूफान और बिजली चमकने जैसी समस्याओं का सामना भी हम लोग करते हैं। तो अगर स्थिति इस तरह की हो तो हमें क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए, क्योंकि देखिए सावधानी जैसे ही हटती है दुर्घटना घट जाती है और स्थिति और भी ज़्यादा मुश्किल हो जाती है जब हम ऐसे समय पर अपने घर से बाहर होते हैं। तो सावधानी जो है बहुत ज़्यादा इसकी ज़रूरत पड़ती है। तो मान लीजिए अगर आप घर से बाहर हों और आंधी तूफान या बिजली चमकने जैसी समस्या आ जाए तो क्या करें? तो सबसे पहले कभी भी पेड़ों और बिजली के खंभों के पास या कमज़ोर दीवार के नीचे ना खड़े हों, क्योंकि ये हवा के दबाव में आकर गिर सकते हैं। यदि आप कार में हैं तो गाड़ी को सुरक्षित जगह पर किनारे लगाकर अंदर ही बैठे रहें और जो है आपातकालीन लाइट चालू कर दें और खिड़कियों को बंद कर लें। अगर आप किसी खुले मैदान में हैं तो ज़मीन पर लेटे नहीं बल्कि घुटनों को मोड़कर सिर को नीचे करके बैठ जाएं, ताकि बिजली गिरने का जो ख़तरा है वो कम हो सके। और अगर आप समुद्र तट, नदी के किनारे या जल भराव वाले इलाकों के पास हैं तो वहाँ से तुरंत ही दूर हो जाएं। तो श्रोताओं, और जब आप घर के अंदर होते हैं और तब ऐसी स्थितियां आती हैं जैसे आंधी तूफान या बिजली चमकने जैसी, तो आपको घर के खिड़की दरवाजे जो हैं वो बंद करके उनसे दूर रहना चाहिए। और बिजली के उपकरण जैसे कि टीवी, कंप्यूटर या एसी वगैरह है, कूलर है, उनको बंद कर देना चाहिए। और पानी, यानी कि पानी से बचना चाहिए। नहाने, बर्तन धोने, कपड़े धोने से बचें, क्योंकि पानी और धातु के पाइप्स बिजली के अच्छे सुचालक होते हैं। और अगर बिजली चमकने जैसी समस्या होती है, ऐसी स्थिति बनती है, तो आप अपने लैंडलाइन फ़ोन का इस्तेमाल बिल्कुल भी ना करें और धातु की वस्तुओं से दूर रहें, जैसे कि छाता या लोहे की छड़ी है, साइकिल है, मोटरसाइकिल है, ऐसी कोई भी चीज़ जो धातु से बनी होती है उनसे आप दूर रहें।

श्रोताओं, आज के समय में तनाव हर किसी के जीवन का एक हिस्सा बन गया है और ये तनाव हम पर कई बार इतना हावी हो जाता है, कई बार हम इतने डिप्रेशन में चले जाते हैं कि हमें दवाइयों का सहारा लेना पड़ता है। लेकिन बड़े ही अच्छी खबर ये है कि तनाव कम करने में एक्सरसाइज यानी कि जो व्यायाम है वो दवाइयों से अधिक या उनके बराबर फ़ायदेमंद साबित हो सकते हैं। हालिया अध्ययनों के अनुसार शारीरिक गतिविधियां डिप्रेशन और चिंता के लक्षणों को कम करने में पारंपरिक दवाओं या काउंसलिंग की तुलना में 1.5 गुना अधिक प्रभावी हो सकती हैं, ऐसा अध्ययनों ने बताया है। व्यायाम तनाव को प्राकृतिक तरीके से ख़त्म करने में बहुत सारे कारणों से बेहद कारगर होता

करना, साइकिल चलाना या तैरने जैसी एक्सरसाइज आप कर सकते हैं। योग से भी मानसिक शांति और जागरूकता के लिए जो हम योग सबसे उत्तम है, रोज़ाना केवल 10 से 15 मिनट की हल्की फुल्की कसरत और तेज़ कदमों से चलना भी मानसिक तनाव में तुरंत राहत दे सकता है।

और श्रोताओं, आज के सुबह सवेरे कार्यक्रम में बस इतना ही। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, अपना और अपनों का ख्याल रखिए और दीजिए इजाज़त कार्यक्रम को यहीं समेटने की। नमस्कार।

सुबह सवेरे कार्यक्रम आप सुन रहे थे आकाशवाणी के रोहतक केंद्र से। अब से थोड़ी ही देर के बाद ठीक 8 बजे आप सुनेंगे समाचार, पहले हिंदी में और उसके बाद 8:15 पर अंग्रेजी में, जिन्हें हम रिले करेंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से।

0: जमाने में हुकुम सिंह को घर वाले कुड़कुड़दास बुलाते थे, क्योंकि लाइट पंखे चालू देखते ही वो सब पर चिल्लाने लगते थे,
1: अरे रमुआ ये पंखा क्यों खुला छोड़ा, बिजली का बिल क्या तेरा बापू भरेगा।
0: पर आज उन्हें सब प्यारे लाल बुलाते हैं, क्योंकि जब से उन्होंने सोलर पैनल लगवाया है तब से मीटर की सुई भी चैन से सोती है। और हुकुम सिंह भी। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, आज ही रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
2: हर घर सूर्य घर।
3: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुनीश शर्मा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी देशों से वैश्विक समुद्री मार्गों की सुरक्षा सुनिश्चित करने की अपील की। संघर्ष वाले इलाकों में नाविकों

0: की सुरक्षा पर भी जोर दिया। प्रधानमंत्री मोदी आज फ्रांस में G7 शिखर सम्मेलन के क्रम में अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात करेंगे। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, हरियाणा और राजस्थान ने यमुना नदी को स्वच्छ बनाने के लिए किशाऊ बांध परियोजना के अमल पर सहमति व्यक्त की। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने उम्मीदवारों को नीट पुनर्परीक्षा के प्रश्न पत्र लीक होने के फर्जी दावों पर भरोसा न करने की अपील की। पश्चिम बंगाल के हिमालय से सटे इलाकों और सिक्किम में आज भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट। और पुरुष क्रिकेट में भारत आज दोपहर लखनऊ में 3 मैचों की श्रृंखला के दूसरे वनडे में अफगानिस्तान के साथ खेलेगा। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी देशों से अंतर्राष्ट्रीय समुद्री मार्गों की सुरक्षा सुनिश्चित करने और नाविकों को संघर्ष से जुड़े खतरों से सुरक्षा देने की अपील की है। फ्रांस में G7 शिखर सम्मेलन के आउटरीच सत्र में समुद्री व्यापार के बढ़ते खतरों और पश्चिम एशिया में अस्थिरता से मानवीय नुकसान के बारे में प्रधानमंत्री ने कहा कि उन नाविकों की सुरक्षा को सुनिश्चित करना हमारी जिम्मेदारी है जो वैश्विक समुद्री व्यापार के माध्यम से सभी देशों को जोड़ते हैं। बैठक के दौरान प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत ने हमेशा मानवता को प्राथमिकता दी है, जो भारत के नेतृत्व वाली पहलों में दिखाई देती है। उन्होंने ये भी कहा कि भारत की सोच सदियों से वसुधैव कुटुंबकम की रही है और इसीलिए भारत दुनिया में प्राकृतिक आपदाओं के समय सबसे पहले मदद पहुंचाने वाला देश बना है। श्री मोदी ने श्रीलंका में चक्रवात, अफगानिस्तान में भूकंप, मोजाम्बिक में बाढ़ और जमैका में तूफान के समय भारत के सहयोग की चर्चा भी की। श्री मोदी ने कहा कि वित्तीय समावेशन, स्वास्थ्य सुरक्षा, डिजिटल पहचान और तकनीक के जरिए लोगों के सशक्तिकरण तथा महिलाओं के नेतृत्व वाले विकास को बढ़ावा देने में सर्वजन हिताय, सर्वजन सुखाय का मंत्र बहुत कारगर रहा है। श्री मोदी ने स्पष्ट कहा कि अंतर्राष्ट्रीय साझेदारी शांति और स्थिरता से आएगी, जिसके लिए बातचीत और कूटनीतिक प्रयास जरूरी हैं। G7 के सदस्य देश भारत समेत कई देशों के साथ मिलकर दुनिया भर में स्वास्थ्य और विकास सहयोग को भी मजबूत करने की पहल करेंगे। G7 के नेताओं ने अफ्रीकी देश कांगो और युगांडा में फिर से फैले इबोला के प्रकोप से निपटने के लिए मिलकर कदम उठाने की अपील की है। G7 शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ बैठक करेंगे। आज की इस मुलाकात में दोनों पक्षों के बीच कई क्षेत्रों में आपसी सहयोग को मजबूत करने तथा आपसी हित के क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर भी व्यापक चर्चा की संभावना है। और ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: यह बैठक इसलिए भी काफी महत्वपूर्ण है क्योंकि भारत एक बड़ी वैश्विक महाशक्ति के रूप में उभरा है। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय जटिल वैश्विक चुनौतियों के समाधान के लिए लगातार नई दिल्ली की ओर देख रहा है। वैश्विक मुद्दों पर चर्चाओं को नया आकार देने में भारत की बढ़ती भूमिका, उसके विस्तार लेते राजनयिक प्रभाव और विभिन्न मंचों पर विश्व नेताओं के साथ सक्रिय जुड़ाव को दर्शाती है। कल शिखर सम्मेलन के एक आउटरीच सत्र के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बात पर विशेष जोर दिया कि आज की आपस में जुड़ी हुई दुनिया में अंतर्राष्ट्रीय साझेदारी बनाने के लिए आपसी विश्वास कितना जरूरी है। उन्होंने इस बात को भी रेखांकित किया कि भारत ने हमेशा मानवता को सर्वोपरि रखने के दृष्टिकोण का पालन किया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय साझेदारी का भारत का दृष्टिकोण वसुधैव कुटुंबकम यानी पूरी दुनिया एक परिवार है के दर्शन पर आधारित है। अंकित कुमार, आकाशवाणी समाचार, एवियों, फ्रांस।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल फ्रांस में G7 शिखर सम्मेलन के दौरान कनाडा, ब्रिटेन और संयुक्त अरब अमीरात के नेताओं के साथ द्विपक्षीय बैठकें की। श्री मोदी और कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी ने भारत कनाडा संबंधों में आई सकारात्मक तेजी का स्वागत किया है और रणनीतिक साझेदारी के लिए प्रतिबद्धता दोहराई है। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर के साथ बैठक में प्रधानमंत्री मोदी ने विजन 2035 के तहत आपसी संबंधों में हुई प्रगति की समीक्षा की। प्रधानमंत्री मोदी ने संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान से भी मुलाकात की। श्री मोदी ने राष्ट्रपति अल नाहयान को इस वर्ष भारत में होने वाले ब्रिक्स सम्मेलन में शामिल होने का न्योता भी दिया है। प्रधानमंत्री मोदी ने केन्या और मिस्र के राष्ट्रपति से भी मुलाकात की। श्री मोदी ने जापान की प्रधानमंत्री सानाए ताकाइची के साथ बैठक में कहा कि दोनों देशों के संबंधों में व्यापार और निवेश को प्राथमिकता दी जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में पिछले 12 वर्ष में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के सिद्धांत पर भारत में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। इस मौके पर आकाशवाणी समाचार 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के, इस विषय पर एक विशेष श्रृंखला प्रस्तुत कर रहा है। आज इस कड़ी में चर्चा देश की विरासत के संरक्षण और संवर्धन के लिए सरकार के प्रयासों पर।
2: पिछले 12 वर्षों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत ने अपनी सभ्यतागत धरोहर के संरक्षण और संवर्धन के लिए कई ऐतिहासिक पहल की है, जिसने करोड़ों नागरिकों में गौरव की भावना को मजबूत किया है। इनमें सबसे महत्वपूर्ण क्षण जनवरी 2024 में आया, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अयोध्या में भव्य श्री राम जन्मभूमि मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की। पारंपरिक नागर शैली में निर्मित यह मंदिर आस्था, श्रद्धा और भारत की स्थापत्य कला की उत्कृष्टता का प्रतीक है। आकाशवाणी समाचार बातचीत में एक श्रद्धालु पंकज जड़िया ने अपनी हाल ही में की अयोध्या यात्रा के अनुभव साझा किए।
3: अभी थोड़े दिनों पहले मैं अयोध्या गया था, वहाँ हमने प्रभु राम के दर्शन किए। वहाँ व्यवस्था बहुत ही बढ़िया है, भीड़ को मैनेज के लिए सरकार ने बढ़िया प्रबंध कर रखा है। मंदिर का प्रांगण बहुत ही भव्य है, सभी लोग लाइन में लगकर प्रभु का दर्शन करते हैं।
2: मध्य प्रदेश के उज्जैन में महाकाल लोक परियोजना के प्रथम चरण को अक्टूबर 2022 में राष्ट्र को समर्पित किया गया। इस परियोजना की कुल लागत लगभग 850 करोड़ रुपए है। भव्य कॉरिडोर में भगवान शिव से जुड़ी कथाओं को दर्शाने वाली आकर्षक मूर्तियां, भित्ति चित्र और स्थापत्य कला के अद्भुत उदाहरण देखने को मिलते हैं। आधुनिक तकनीक और AI आधारित निगरानी प्रणाली से सुसज्जित महाकाल लोक विरासत और नवाचार का अद्भुत संगम प्रस्तुत करता है। वहीं वाराणसी में दिसंबर 2021 में समर्पित काशी विश्वनाथ कॉरिडोर ने तीर्थ यात्रियों के अनुभव को पूरी तरह बदल दिया है। यह परियोजना काशी विश्वनाथ मंदिर को सीधे गंगा नदी से जोड़ती है। 5.5 एकड़ में फैली इस परियोजना ने पहुंच को सुगम बनाया है और भारत के सबसे पूजनीय आध्यात्मिक केंद्रों में से एक को नया स्वरूप दिया है। वर्ष 2014 से मार्च 2025 तक काशी में 48,000 करोड़ रुपए से अधिक लागत वाली 580 विकास परियोजनाओं पर काम शुरू किया गया। आकाशवाणी समाचार से बातचीत में वाराणसी के निवासी प्रियांशु सिंह ने कहा कि काशी विश्वनाथ कॉरिडोर मंदिर आने वाले श्रद्धालुओं को आसान और सुविधाजनक पहुंच प्रदान कर रहा है।
4: काशी में मोदी जी ने बहुत काम किया है। पहले मंदिर तक जाने वाला रास्ता काफी संकरा हुआ करता था, जिससे बहुत ही ज्यादा दिक्कत होती थी, पर अब कॉरिडोर बनने से भीड़ भी व्यवस्थित रहती है और लोगों को भी दर्शन करने में काफी आसानी होती है।
2: ये परिवर्तनकारी पहले भारत की उस प्रतिबद्धता को दर्शाती हैं, जिसके तहत देश अपनी सांस्कृतिक जड़ों को सहेजते हुए आत्मविश्वास के साथ भविष्य की ओर अग्रसर है। सकलेन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। यमुना नदी को स्वच्छ बनाने के लिए किशाऊ बांध परियोजना पर 6 राज्यों में सहमति बन गई है। इनमें हिमाचल प्रदेश, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हरियाणा और राजस्थान शामिल हैं। ये सहमति कल गृहमंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में नई दिल्ली में आयोजित एक बैठक में बनी। सहमति के अनुसार परियोजना की 90% राशि केंद्र सरकार देगी, शेष 10% राशि 6 राज्य मिलकर वहन करेंगे। गृह मंत्रालय के अनुसार ये फैसला यमुना को स्वच्छ करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने आगामी नीट परीक्षा को देखते हुए विद्यार्थियों और अभिभावकों को घोटालेबाजों से सावधान रहने का अनुरोध किया है। एजेंसी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा है कि घोटालेबाज लोग टेलीग्राम पर ऐसे चैनल चला रहे हैं जिनमें 21 तारीख को प्रस्तावित परीक्षा के प्रश्न पत्र साझा करने के लिए 14,000 से 25,000 रुपए तक की मांग की जा रही है। NTA के महानिदेशक अभिषेक सिंह ने कहा कि हम ये सुनिश्चित करेंगे कि ये परीक्षा बिना किसी गड़बड़ी के संपन्न हो।
5: CNTA is committed.
6: NTA यह पक्का करने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है कि कोई भी गड़बड़ी ना हो। हर प्रश्न पत्र और उसमें शामिल हर सवाल को पूरी तरह सुरक्षित तरीके से तैयार किया गया है। हमने सामान्य सुरक्षा उपायों के अलावा अतिरिक्त सुरक्षा इंतजाम भी किए हैं। NTA ने कई एजेंसियों की मदद ली है और हम यह सुनिश्चित करेंगे कि परीक्षा बिना किसी गड़बड़ी के सम्पन्न हो।
5: And we will ensure that the examination is conducted in a flawless manner.
0: उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राज्य के 59 जिलों में 21 जून को होने वाली नीट परीक्षा के उम्मीदवारों के लिए विशेष व्यवस्था करने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा है कि उम्मीदवारों को प्रवेश पत्र दिखाने पर राज्य सड़क परिवहन निगम की बसों के किराए में 50% की छूट दी जाएगी। मुख्यमंत्री ने परीक्षा से जुड़ी अफवाहों, भ्रामक जानकारी या झूठे दावों को फैलने से रोकने के लिए सोशल मीडिया और अन्य प्लेटफॉर्म्स की कड़ी निगरानी करने का भी आदेश दिया है। मौसम विभाग ने आज पश्चिम बंगाल में हिमालय से लगे क्षेत्रों और सिक्किम के कुछ हिस्सों में तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। असम, मेघालय, बिहार, केरलम, माहे और कराईकल के कुछ हिस्सों में दिन में तेज बारिश की संभावना है। वहीं राजस्थान के कुछ हिस्सों में आज गरज के साथ आंधी की संभावना बन रही है। दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, बिहार, छत्तीसगढ़ और उत्तर पूर्वी भारत के कुछ हिस्सों में गरज के साथ बारिश हो सकती है। क्रिकेट में भारत और अफगानिस्तान के बीच 3 मैचों की एक दिवसीय श्रृंखला का दूसरा मुकाबला आज लखनऊ में दोपहर 1:30 बजे से होगा। शुभमन गिल की अगुवाई वाली भारतीय टीम फिलहाल 1-0 से आगे है। धर्मशाला में खेला गया पहला मैच भारत ने जीता था। और आवाज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं सरफिरोजी।
7: धन्यवाद मुनीश। देश की राजधानी से प्रकाशित सभी हिंदी अखबारों ने G7 शिखर सम्मेलन और नीट UG पुनर्परीक्षा के आयोजन से जुड़ी खबरों को सुर्खियों में जगह दी है। कुछ अखबारों ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के विकास के लिए तैयार की गई बड़ी योजना को भी मुख्य पृष्ठ पर सबसे ऊपर प्रकाशित किया है। लोकसत्य की पहली खबर का शीर्षक है G7 का आगाज, PM मोदी और डोनाल्ड ट्रंप की हुई मुलाकात। अखबार ने स्लोवाकिया के राष्ट्रपति पीटर पेलेग्रिनी से उनके देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान स्वीकार करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर को भी प्रमुखता से छापा है। दैनिक ट्रिब्यून की सुर्खी है मोदी ट्रंप की 16 माह बाद मुलाकात, वार्ता आज। पंजाब केसरी ने प्रधानमंत्री मोदी और अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की भेंट का चित्र प्रकाशित करते हुए शीर्षक दिया है G7 में मोदी ने उठाया भारतीय नागरिकों का मुद्दा। पत्र ने नीट UG की पुनः परीक्षा से पहले टेलीग्राम ऐप पर स्थायी प्रतिबंध की खबर को भी अपना शीर्ष समाचार बनाया है। दैनिक भास्कर सहित सभी अखबारों ने इस खबर को विस्तार से पहले पन्ने पर जगह दी है। दैनिक भास्कर की सुर्खी है पेपर लीक ना हो इसलिए 22 तक टेलीग्राम बंद। पत्र ने इस वजह से आम उपयोगकर्ताओं को होने वाली परेशानी का भी विस्तार से विश्लेषण प्रकाशित किया है। अमर उजाला ने अपने संपादकीय पृष्ठ पर द न्यूयॉर्क टाइम्स की पत्रकार आजादे मुआवेनी के लेख को प्रकाशित किया है। शीर्षक है क्या ये तेहरान की जीत है। इस लेख में कहा गया है कि दूसरे विश्व युद्ध के बाद से ज्यादातर अमरीकी सैन्य दखल जटिल संघर्ष में बदलती गई जिसे शायद ही कोई जीत कहे।
0: और अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी देशों से वैश्विक समुद्री मार्गों की सुरक्षा सुनिश्चित करने की अपील की। प्रधानमंत्री मोदी आज फ्रांस में G7 शिखर सम्मेलन के क्रम में अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से करेंगे मुलाकात। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, हरियाणा और राजस्थान ने यमुना नदी को स्वच्छ बनाने के लिए किछाऊ बांध परियोजना के अमल पर सहमति व्यक्त की। और पुरुष क्रिकेट में भारत आज दोपहर लखनऊ में 3 मैचों की श्रृंखला में दूसरे वनडे में अफगानिस्तान के साथ खेलेगा। और इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
8: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। Good morning, I'm Sarabjit Kaur. The headlines. Prime Minister Narendra Modi calls on all nations to ensure security of global maritime routes and protect seafarers from conflict-related threats. Prime Minister Modi to meet US President Donald Trump on the sidelines of G7 summit in Avion, France today. Himachal Pradesh, Uttarakhand, Delhi, Uttar Pradesh, Haryana and Rajasthan reach consensus on implementation of long-pending Keshau Dam project to revive Yamuna River. National Testing Agency warns candidates against fake NEET re-exam paper leak claims. IMD issues orange alert for heavy rainfall over sub-Himalayan West Bengal and Sikkim today. And in men's cricket, India to take on Afghanistan in second ODI of three-match series in Lucknow this afternoon. And now the news in detail. Prime Minister Narendra Modi has called on all nations to ensure security of global maritime routes and protect seafarers from conflict-related threats. Addressing an outreach session of G7 summit in Avignon, France, Mr. Modi said that conflicts in West Asia have disrupted global trade and caused loss of life, highlighting the growing risks to maritime trade and the human cost of instability in West Asia. Prime Minister said, it is our responsibility to ensure the safety of the seafarers who connect all nations through global maritime trade. Ministry of External Affairs informed that during the session, the Prime Minister underscored the importance of trust in building international partnerships, especially in an increasingly interconnected world. The Prime Minister also noted that international partnerships should move beyond the donor-recipient paradigm to one of solidarity and equal ownership. He also stated that lack of respect for international law was the biggest hurdle to building international solidarity and needed to be addressed as a priority. The French city of Avignon remains the epicenter of global diplomacy today as the G7 summit enters its crucial phase. With India participating as a partner country, all eyes are firmly set on a highly anticipated bilateral meeting between Prime Minister Narendra Modi and US President Donald Trump, scheduled for later today on the sidelines of the summit. This marks the first face-to-face meeting between the two leaders since they last met in Washington, D.C. in February 2025. During today's engagement, they are expected to hold wide-ranging discussions to deepen bilateral cooperation across multiple sectors while also deliberating on pressing regional and global issues of mutual interest. A report.
1: This meeting also holds significance as India has emerged as a major global power, with the international community increasingly looking towards New Delhi for solutions to complex global challenges. India's growing role in shaping discussions on global issues reflects its expanding diplomatic outreach and active engagement with world leaders across forums. During an outreach session at the summit yesterday, Prime Minister Narendra Modi underscored the importance of trust in building international partnerships, especially in an increasingly interconnected world. He also highlighted that India has always followed a humanity-first approach. He said this is reflected in India-led initiatives such as the International Solar Alliance, the Coalition for Disaster Resilient Infrastructure, the Global Biofuel Alliance, Mission Life and Ek Ped Maa Ke Naam campaign. He further said that India's vision of international partnership is rooted in the timeless philosophy of Vasudhaiva Kutumbakam. The world is one family. Ankit Kumar, Akashwani News, Avignon, France.
8: Besides his meeting with the US President, Prime Minister Modi is also scheduled today to participate in the G7 working session on reviving balanced, inclusive and sustainable economic growth for the benefit of all, and the working lunch on ensuring the safe, rapid and effective deployment of artificial intelligence. The Prime Minister will also hold a trilateral meeting with EU Council President Antonio Costa, European Commission President von der Leyen, and a bilateral engagement with German Chancellor Friedrich Merz. Earlier yesterday, the Prime Minister held bilateral meetings with Canadian Prime Minister Mark Carney, United Kingdom Prime Minister Keir Starmer, and the President of the United Arab Emirates, Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan, on the sidelines of the summit. The G7 nations have announced a series of initiatives to strengthen global health and development cooperation with several partner countries, including India. The G7 leaders called for a coordinated international response to the re-emerging Ebola outbreak in the Democratic Republic of Congo and Uganda. India, Egypt, Kenya and South Korea joined the appeal for enhanced measures, including contact tracing, border surveillance and community engagement. The leaders also pledged support for the development of vaccines, diagnostics and treatments for the rare Ebola strain. Home Minister Amit Shah chaired a crucial meeting in New Delhi yesterday on the long-pending Kishau Multipurpose Dam project aimed at the rejuvenation of the Yamuna River. In a statement, Home Ministry said that Himachal Pradesh, Uttarakhand, Delhi, Uttar Pradesh, Haryana and Rajasthan have agreed to sign a memorandum of understanding for the implementation of the project. Following the signing of the MOU, the Kishau project will be placed before the Union Cabinet for

অরাজকে অরাজকে ওয়ালা গাথে পাওয়ানে কে সাথে অরাজক।

0: जब व्यापार के प्रचार की हो बात तो अपनाएं आकाशवाणी का साथ। हर दिल, हर घर और हर जन, हर वर्ग को जोड़ने का है साधन। विश्वसनीय, असरदार और हम सब का हम सफर आकाशवाणी रोहतक है सदा तत्पर। हमारी आवाज आपका प्रचार, हो जाएं समृद्ध होने को तैयार। अपने ब्रांड को विज्ञापन के जरिए जन जन पहुंचाने के लिए आज ही संपर्क करें आकाशवाणी रोहतक।
1: लाइफ फास्ट मोड पे चल रही है, घर बैठे बैंकिंग सुविधा के लिए स्विच टू SBI प्रीमियर बैंकिंग, जहां आपको मिलता है एक डेडिकेटेड वर्चुअल रिलेशनशिप एसोसिएट जो समझे आपकी हर जरूरत, दे स्मार्ट एडवाइजर्स और करे हर काम इन लाइटनिंग स्पीड, यानी सिर्फ सीमलेस बैंकिंग एंड मेनी अदर एक्साइटिंग बेनिफिट्स। आज ही विजिट करें अपनी नियरेस्ट SBI ब्रांच और प्रीमियर बैंकिंग एक्टिवेट करें। टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई।
0: जब व्यापार के प्रचार की हो बात तो अपनाएं आकाशवाणी का साथ। हर दिल, हर घर और हर जन, हर वर्ग को जोड़ने का है साधन। विश्वसनीय, असरदार और हम सब का हम सफर आकाशवाणी रोहतक है सदा तत्पर। हमारी आवाज आपका प्रचार, हो जाएं समृद्ध होने को तैयार। अपने ब्रांड को विज्ञापन के जरिए जन जन पहुंचाने के लिए आज ही संपर्क करें आकाशवाणी रोहतक।
2: और अब सुनिए कार्यक्रम की अगली प्रस्तुति, आवाज एक बार फिर से दिलबाग सिंह किराड़ की।

लोक संगीत कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे दिलबाग सिंह किराड़ को। आकाशवाणी का ये रोहतक केंद्र है। अब श्रोता सुनेंगे फिल्मी गीतों का कार्यक्रम मन भावन। कार्यक्रम का आगाज कर रहे हैं कुमार सानू के स्वरबद्ध किए हुए गीत के साथ। समीर के बोल हैं, संगीत नदीम श्रवण का है। फिल्म का नाम है साजन की बाहों में।

0: जब व्यापार के प्रचार की हो बात तो अपनाएं आकाशवाणी का साथ। हर दिल, हर घर और हर जन, हर वर्ग को जोड़ने का है साधन। विश्वसनीय, असरदार और हम सब का हम सफर आकाशवाणी रोहतक है सदा तत्पर। हमारी आवाज आपका प्रचार, हो जाए समृद्ध होने को तैयार। अपने ब्रांड को विज्ञापन के जरिए जन जन पहुंचाने के लिए आज ही संपर्क करें आकाशवाणी रोहतक।
1: लाइफ फास्ट मोड पे चल रही है, घर बैठे बैंकिंग सुविधा के लिए स्विच टू SBI प्रीमियर बैंकिंग, जहां आपको मिलता है एक डेडिकेटेड वर्चुअल रिलेशनशिप एसोसिएट जो समझे आपकी हर जरूरत, दे स्मार्ट एडवाइजर्स और करे हर काम इन लाइटनिंग स्पीड, यानी सिर्फ सीमलेस बैंकिंग एंड मेनी अदर एक्साइटिंग बेनिफिट्स। आज ही विजिट करें अपनी नियरेस्ट

कार्यक्रम का अगला गीत राहत फतेह अली खां और महालक्ष्मी अय्यर की आवाज़ों में झूम बराबर झूम फिल्म का नाम है। गीत है गुलजार का, संगीत शंकर एहसान लॉय का।

कार्यक्रम का अगला गीत लता मंगेशकर की आवाज़ में माया मेम साहब फिल्म का गीत है। गीत को शब्द दिए हैं गुलजार ने।

लाल दुपट्टा मलमल का। लीजिए सुनिए इस फिल्म के गीत को अनुराधा पौडवाल और पंकज उधास की आवाज़ों में। गीत को लिखा है मजरू सुल्तानपुरी ने और तर्ज बनाई है आनंद मिलन ने।

ये था क्योंकि फिल्म का गीत, जिसे गाया था उदित नारायण और अलका याग्निक ने। गीत को लिखा था समीर ने। और कार्यक्रम का अगला गीत जो हम आपको सुनवाएंगे वो है क्योंकि फिल्म से।

श्रोताओं, इस गीत से पहले आपने सुना था क्योंकि मैं झूठ नहीं बोलता, इस फिल्म का गीत और आवाज़ें उदित नारायण और अलका याग्निक की थी। गीत को लिखा था देव कोहली ने और संगीत आनंद राज आनंद का है। और अब जो गीत आप सुन रहे हैं वो है उदित नारायण और अलका याग्निक का स्वरबद्ध किया हुआ क्योंकि फिल्म का।

0: जब व्यापार के प्रचार की हो बात तो अपनाएं आकाशवाणी का साथ। हर दिल, हर घर और हर जन, हर वर्ग को जोड़ने का है साधन। विश्वसनीय, असरदार और हम सब का हम सफर आकाशवाणी रोहतक है सदा तत्पर। हमारी आवाज आपका प्रचार, हो जाए समृद्ध होने को तैयार। अपने ब्रांड को विज्ञापन के जरिए जन जन पहुंचाने के लिए आज ही संपर्क करें आकाशवाणी रोहतक।
1: दस लाख की लॉटरी मुझे, वाओ।
2: फर्जी ऑफर्स से सावधान,
3: आरबीआई कहता है।
4: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
5: अब सुनिए, हद कर दी आपने इस फिल्म का शीर्षक गीत, आवाज है उदित नारायण और कविता कृष्णमूर्ति की। आनंद बख्शी के हैं बोल संगीत, आनंद राज आनंद का।

अब जो गीत आप सुनेंगे उसमें आवाज़ें हैं मनहर और मोहम्मद अजीज़ की। नाम फिल्म का ये गीत है। आनंद बख्शी ने इसे लिखा है और तर्ज बनाई है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने।

कार्यक्रम के अंत में आपने सुना लता मंगेशकर का गाया हुआ ज्योति फिल्म का गीत, और इसी गीत के साथ हमारा आज का फिल्मी गीतों का कार्यक्रम मन भावन अब यहीं संपन्न होता है।

आकाशवाणी का ये रोहतक केंद्र है। अब से थोड़ी ही देर के बाद ठीक 10 बजे आप सुनेंगे समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। समाचार पहले हिंदी में होंगे, उसके बाद 10:05 पर अंग्रेजी में होंगे।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सरफिरोजी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी देशों से अंतर्राष्ट्रीय समुद्री मार्गों की सुरक्षा सुनिश्चित करने और नाविकों को संघर्ष से जुड़े खतरों से सुरक्षा देने की अपील की है। फ्रांस में G7 शिखर सम्मेलन के आउटरीच सत्र में समुद्री व्यापार के बढ़ते खतरों और पश्चिम एशिया में अस्थिरता से मानवीय नुकसान के बारे में प्रधानमंत्री ने कहा कि उन नाविकों की सुरक्षा सुनिश्चित करना हमारी जिम्मेदारी है जो वैश्विक समुद्री व्यापार के माध्यम से सभी देशों को जोड़ते हैं। बैठक के दौरान प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत ने हमेशा मानवता को प्राथमिकता दी है, जो भारत के नेतृत्व वाली पहलों में दिखाई देती है। उन्होंने कहा कि भारत की सोच सदियों से वसुधैव कुटुंबकम की रही है और इसलिए भारत दुनिया में प्राकृतिक आपदाओं के समय सबसे पहले मदद पहुंचाने वाला देश बना है। श्री मोदी ने श्रीलंका में चक्रवात, अफगानिस्तान में भूकंप, मोजाम्बिक में बाढ़ और जमैका में तूफान के समय भारत के सहयोग की चर्चा की। श्री मोदी ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय साझेदारी शांति और स्थिरता से आएगी, जिसके लिए बातचीत और कूटनीतिक प्रयास जरूरी हैं। G7 शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ बैठक करेंगे। आज की मुलाकात में दोनों पक्षों के बीच कई क्षेत्रों में आपसी सहयोग को मजबूत करने तथा आपसी हित के क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर भी व्यापक चर्चा की संभावना है। और ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: यह बैठक इसलिए भी काफी महत्वपूर्ण है क्योंकि भारत एक बड़ी वैश्विक महाशक्ति के रूप में उभरा है। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय जटिल वैश्विक चुनौतियों के समाधान के लिए लगातार नई दिल्ली की ओर देख रहा है। वैश्विक मुद्दों पर चर्चाओं को नया आकार देने में भारत की बढ़ती भूमिका, उसके विस्तार लेते राजनयिक प्रभाव और विभिन्न मंचों पर विश्व नेताओं के साथ सक्रिय जुड़ाव को दर्शाती है। कल शिखर सम्मेलन के एक आउटरीच सत्र के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बात पर विशेष जोर दिया कि आज की आपस में जुड़ी हुई दुनिया में अंतर्राष्ट्रीय साझेदारी बनाने के लिए आपसी विश्वास कितना जरूरी है। उन्होंने इस बात को भी रेखांकित किया कि भारत ने हमेशा मानवता को सर्वोपरि रखने के दृष्टिकोण का पालन किया है। अंकित कुमार, आकाशवाणी समाचार, एवियों, फ्रांस।
0: प्रधानमंत्री यूरोपीय संघ परिषद के अध्यक्ष एंटोनियो कोस्टा और यूरोपियन कमीशन के अध्यक्ष फॉन डेर लेन के साथ त्रिपक्षीय बैठक करेंगे। वे जर्मन चांसलर फेडरिक मर्स के साथ भी बैठक करेंगे। इससे पहले कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फ्रांस में G7 शिखर सम्मेलन के दौरान कनाडा, ब्रिटेन और

0: संयुक्त अरब अमीरात के नेताओं के साथ द्विपक्षीय बैठकें की। यमुना नदी को स्वच्छ बनाने के लिए किशाऊ बांध परियोजना पर 6 राज्यों में सहमति बन गई है। इनमें हिमाचल प्रदेश, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हरियाणा और राजस्थान शामिल हैं। ये सहमति कल गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में नई दिल्ली में आयोजित बैठक में बनी। सहमति के अनुसार परियोजना की 90% राशि केंद्र सरकार देगी, शेष 10% राशि 6 राज्य मिलकर वहन करेंगे। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने आगामी नीट परीक्षा को देखते हुए विद्यार्थियों और अभिभावकों से घोटालेबाजों से सावधान रहने का अनुरोध किया है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राज्य के 59 जिलों में 21 जून को होने वाली नीट परीक्षा के उम्मीदवारों के लिए विशेष व्यवस्था करने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि उम्मीदवारों को प्रवेश पत्र दिखाने पर राज्य सड़क परिवहन निगम की बसों के किराए में 50% की छूट दी जाएगी। अमेरिका और ईरान के बीच हुए शांति समझौते के बाद हॉर्मुज जल डमरू मध्य इस सप्ताहांत तक खुल जाएगा। इससे ब्रेंट क्रूड की कीमत 5.4% गिरकर $78.66 हो गई है। 28 फरवरी को ईरान पर अमेरिका और इसराइल की सैन्य कार्रवाई के बाद दुनिया भर में कच्चे तेल की कीमतों में भारी उछाल आया था। मौसम विभाग ने आज पश्चिम बंगाल में हिमालय से लगे क्षेत्रों और सिक्किम के कुछ हिस्सों में तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। असम, मेघालय, बिहार, केरलम, माहे, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कारैकाल के कुछ हिस्सों में दिन में तेज बारिश की संभावना है। ICC महिला T20 विश्व कप क्रिकेट में आज भारत का सामना नीदरलैंड से होगा। ये मैच ब्रिटेन में लीड्स में भारतीय समय के अनुसार शाम 7 बजे से होगा। भारत ने अपने पहले मैच में पाकिस्तान को 64 रन से हराया था। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashwani. The news read by Tanvi Khurana. The French city of Avignon remains the epicenter of global diplomacy today as the G7 summit enters its crucial phase. With India participating as a partner country, all eyes are firmly set on a highly anticipated bilateral meeting between Prime Minister Narendra Modi and US President Donald Trump, scheduled for later today on the sidelines of the summit. During today's engagement, they are expected to hold wide-ranging discussions to deepen bilateral cooperation across multiple sectors, while also deliberating on pressing regional and global issues of mutual interest. Prime Minister Modi is also scheduled today to participate in the G7 working session on reviving balanced, inclusive and sustainable economic growth for the benefit of all, and the working lunch on ensuring the safe, rapid and effective deployment of artificial intelligence. The Prime Minister will also hold trilateral meeting with EU Council President Antonio Costa, European Commission President Ursula von der Leyen, and a bilateral engagement with German Chancellor Friedrich Merz. Prime Minister Narendra Modi has called on all the nations to ensure security of global maritime routes and protect seafarers from conflict-related threats. Addressing an outreach session of G7 summit in Avignon, France, Mr. Modi said that conflicts in West Asia have disrupted global trade and caused loss of life, highlighting the growing risks to maritime trade and the human cost of instability in West Asia. Prime Minister said it is our responsibility to ensure the safety of the seafarers who connect all nations through global maritime trade. Prime Minister Narendra Modi has said that affectionate respect and acceptance instill a sense of pride and contentment in a person. Sharing a Sanskrit quote, Mr. Modi noted that this not only boosts self-confidence but also infuses a new sense of energy and enthusiasm. Defense Minister Rajnath Singh has highlighted that India's annual defense production has surged to an all-time high of 1.78 lakh crore rupees in the financial year 2025-26. In a social media post, Mr. Singh said that this milestone represents an impressive 15.6% growth over the previous fiscal year's output of 1.54 lakh crore rupees and a staggering 110% increase since financial year 2020-21, when the figure stood at over 84,000 crore rupees. He added that indigenous defence production has increased nearly fourfold from 4,746 crore rupees in the financial year 2013-14. National Testing Agency, NTA, has urged parents and candidates to beware of the scammers ahead of NEET examinations. In a social media post, NTA said that scammers on Telegram are running channels demanding money ranging from 14,000 to 25,000 rupees with the claims of sharing the re-exam paper. Union Home Minister Amit Shah has paid tributes to the third Sarsang Chalak of the Rashtriya Swayam Sevak Sangh, Balasaheb Dioras, on his death anniversary today. In a social media post, Mr. Shah said that Balasaheb Dioras dedicated his life to the national service, social harmony and the character building of the youth and considered untouchability to be the greatest curse. World Day to Combat Desertification and Drought is being observed today globally. The theme for this year is Ranged Lands, Recognize, Respect, Restore, which calls for greater recognition of the economic, ecological and cultural value of range lands, respect for their traditional stewards and stronger investment in restoring degraded range lands. Domestic equity benchmarks traded flat in morning session today after a three-day rally driven by lower crude oil prices and optimism over a US-Iran peace deal. Sensex was trading at 76,817.58, up 8.58 points or 0.01%, while Nifty was at 23,988, down 1 point in early trade. And that is the end of this news bulletin.
2: मीडियम वेव 262.47 मीटर यानी 1143 किलोहर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये रोहतक केंद्र है। स्टूडियो की घड़ी के अनुसार प्रातः के 10:10 और 16 सेकंड हुए हैं। अब हमारी आज की पहली प्रसारण सभा यहीं संपन्न होती है। एफएम बैंड 103.5 मेगाहर्ट्ज पर आप सुनते रहेंगे विविध भारती मुंबई के कार्यक्रमों का रिले। हमारी दूसरी सभा में दिन के 12:30 पर मीडियम वेव 262.47 मीटर यानी 1143 किलोहर्ट्ज़ पर आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए अनुमति दीजिए।

मीडियम वेव 262.47 मीटर यानी 1143 किलोहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी का ये रोहतक केंद्र है। दिन के 12:30 और 38 सेकंड हुए हैं। अब हमारी दूसरी प्रसारण सभा के कार्यक्रम आरंभ होते हैं। सभा की शुरुआत में लीजिए सुनिए प्रायोजित कार्यक्रम।

0: उमंग सीआईईटी प्रस्तुत करता है
1: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: सभी श्रोताओं को विमलेश का नमस्कार
0: और अजीत का भी नमस्कार कीजिए स्वीकार। करते हैं शुरू एक सुंदर विचार से जिसे हमें भेजा है छत्तीसगढ़ पथरिया भरेवा से चंदूलाल सिंगरौल, नारायणी सिंगरौल, नोमेश सिंगरौल, नेहा और वान्या सिंगरौल जी ने।
2: लिखते हैं, सकारात्मक सोच हर समस्या में समाधान खोज लेती है।
0: वाह, बहुत सुंदर विचार। आपके इस विचार से सच में हम सबको प्रेरणा मिलती है। और आइए अब सुनते हैं संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम। तो पहला संदेश हमें मिला है हिंगोली महाराष्ट्र से शाहजी बोडखे, नंदा बोडखे, हनुमान बोडखे और उत्तम जामदाड़े जी का।
2: रानी गांव नगरी छत्तीसगढ़ से अखिलेश कुमार साहू, चित्ररेखा साहू, शुभम और सेजल साहू।
0: और केंद्रपाड़ा ओडिशा से देशदीप दास।
2: छत्तीसगढ़ पलारी से प्रकाश वर्मा, प्रिंस वर्मा, निखिल वर्मा और यशस्वी वर्मा।
0: एक बार फिर से आप सभी श्रोताओं का बहुत बहुत स्वागत है श्रृंखला ये भी जानिए कि अगली कड़ी में। तो जैसा कि हमने कहा था, इस सप्ताह हम बात करेंगे कुछ अनूठी झीलों के बारे में। तो श्रोताओं, आइए जानते हैं आज हम किस झील की चर्चा करने जा रहे हैं। लेकिन इससे पहले आपको बता दें कि आज का विषय बहुत रोचक होने जा रहा है। आज हम एक ऐसी झील के बारे में बात करेंगे जिसे बहुत ही रहस्यमय और पवित्र माना जाता है। श्रोताओं, जरा अंदाजा लगाइए मैं किस झील की बात कर रहा हूँ। आपको संकेत तो मिल ही गया होगा कि वो झील रहस्यमय भी मानी जाती है और पवित्र भी। जी हाँ श्रोताओं, यदि आपके मन में मानसरोवर झील का नाम है तो आपने बिल्कुल सही सोचा है। तो श्रोताओं, आपको बता दें कि ये दुनिया की सबसे ऊंची मीठे पानी की झीलों में से एक है। इसकी ऊंचाई समुद्र तल से 4,590 मीटर है और इसका क्षेत्रफल करीब 320 वर्ग किलोमीटर है। आइए अब जानते हैं कि ये झील है कहाँ। तो श्रोताओं, आपको बता दें कि ये झील तिब्बत और चीन के पर्वतीय क्षेत्र में पड़ती है। इसका सबसे निकटतम पर्वत है कैलाश पर्वत। आपको ये भी बता दें कि भारत की ओर से कैलाश मानसरोवर की यात्रा उत्तराखंड के लिपुलेख दर्रे या सिक्किम के नाथुला पास से की जाती है। यदि भौगोलिक दृष्टि से देखें तो इसके निर्माण का कारण है भारतीय और यूरेशियन प्लेट की टक्कर। इस टक्कर के कारण भूमि ऊपर उठी, पर्वतों में दरारें और बड़े बड़े गड्ढे बने जिससे हिमनदों का पानी जमा हो गया। इसीलिए मानसरोवर झील को टेक्टोनिक झील भी कहते हैं। अब एक बहुत ही रोचक तथ्य आपके साथ मैं साझा करना चाहता हूँ। अभी आपने सुना कि ये मीठे पानी की झील है, लेकिन श्रोताओ, इसी झील के बिल्कुल पास एक और झील है जिसका पानी खारा है। इसे राक्षस ताल कहते हैं। ये एक बंद झील है

0: जल के निकास और वाष्पीकरण की भिन्न प्रक्रियाओं के कारण यहाँ का पानी खारा है, क्योंकि यहाँ का पानी वाष्पित होता रहता है, जिसके कारण लवण और अन्य खनिज इसी में रह जाते हैं। दोनों सरोवरों को कैलाश पर्वत, हिमनदों और वर्षा से ही जल मिलता है। एक छोटी नदी इन दोनों सरोवरों को आपस में जोड़ती है, जिसे गंगा चू नदी कहते हैं। तिब्बती भाषा में नदी या जलधारा को चू कहते हैं। जी हाँ, सचमुच ये बड़ी अनूठी बात है श्रोताओ। आइए अब सुनते हैं एक और बड़ी रोचक बात इस झील के बारे में। वहाँ गए यात्रियों के अनुसार मानसरोवर झील रंग बदलने वाली झील है। सूर्योदय के समय ये नीले और हरे रंग की दिखाई देती है, लेकिन सूर्यास्त के समय इस झील का रंग सुनहरी आभा में बदलता हुआ दिखाई देता है। आपको एक और बात बता दें कि मानसरोवर झील सर्दियों में पूरी तरह से जम जाती है। जहाँ तक धर्मों की बात है, ये झील हिंदू, जैन और बौद्ध धर्म में विशेष स्थान रखती है। श्रोताओं, एक और बड़ी खास बात, मानसरोवर झील को कैलाश पर्वत का दर्पण भी कहा जाता है। आइए जानते हैं ऐसा क्यों। जी, इसका उत्तर है, मानसरोवर झील में पास के कैलाश पर्वत का प्रतिबिंब साफ साफ दिखाई देता है, खासकर साफ और शांत मौसम में। मानसरोवर और कैलाश पर्वत क्षेत्र से सिंधु, सतलुज और ब्रह्मपुत्र नदियां निकलती हैं। बौद्ध धर्म में मानसरोवर झील को मापाम युमत्सो कहते हैं, जबकि जैन मान्यता में इस झील को ऋषभ देव से जोड़ा जाता है, जो जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर हैं। आइए बात करते हैं इस झील में पाए जाने वाले जलीय जीवों की। तो श्रोताओ, यहाँ ठंडी जलवायु और दुर्गम परिस्थितियों के कारण जैव विविधता सीमित है, फिर भी कुछ अनुकूलित जीव जंतु यहाँ पाए जाते हैं। इस झील में मछलियों की बड़ी अच्छी मात्रा है। पानी इतना साफ है कि अंदर तैरती हुई मछलियां भी 14 मीटर की गहराई तक करीब करीब साफ साफ दिखाई पड़ती हैं। यद्यपि मान्यताओं के कारण यहाँ मछली पकड़ना या मारना निषिद्ध है। यह झील पर्वतीय पक्षियों और पशुओं के लिए एक आदर्श ठिकाना है। दुर्लभ प्रजाति के हंस, ब्राह्मणी बतख और पहाड़ी कौवे यहाँ मिलते हैं। जहाँ तक पशुओं की बात है, छोटे तिब्बती गधे और दुर्लभ प्रजाति के याक भी यहाँ मिलते हैं। तो श्रोताओ, अब करते हैं आज की चर्चा को समाप्त, लेकिन जाते जाते एक और रोचक तथ्य आपके साथ साझा करता हूँ। मानसरोवर झील जीवन से भरपूर है। यहाँ पशु पक्षी और दुर्लभ वनस्पतियाँ प्रचुरता से मिलती हैं, लेकिन पास के राक्षस ताल में खारे पानी के कारण लगभग कोई मछली या जलीय वनस्पति नहीं होती। इसीलिए लोक मान्यता में मानसरोवर झील को अच्छाई और राक्षस ताल को बुराई का प्रतीक माना जाता है। कुल मिलाकर मानसरोवर न केवल अध्यात्म और आस्था का केंद्र है, लेकिन ये ऊंचे दुर्गम स्थान की पारिस्थितिकी तंत्र का भी बेजोड़ उदाहरण है। तो श्रोताओ, ये थी जानकारी मानसरोवर झील की। अब सुनिए आज का प्रश्न आज की ही जानकारी से। तो प्रश्न है, मानसरोवर झील के बहुत पास की खारे पानी की झील का क्या नाम है? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए, मानसरोवर झील के बहुत पास की खारे पानी की झील का क्या नाम है? आप अपना उत्तर और संदेश हमारे ईमेल पर भेज सकते हैं। हमारे ईमेल का पता है audio@ciet.nic.in। तो श्रोताओ, ये थी रोचक जानकारी मानसरोवर झील की। अब सुनिए आज का प्रश्न आज की ही जानकारी से। हमारा प्रश्न है, मानसरोवर झील के पास की खारे पानी की झील का क्या नाम है? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए, मानसरोवर झील के पास की खारे पानी की झील का क्या नाम है? आप अपना उत्तर और संदेश हमारे ईमेल पर भेज सकते हैं। हमारे ईमेल का पता है audio@ciet.nic.in। हमारा IBRS नंबर भी नोट कर लें, 8800440559। और हाँ, आप हमें यानी CIET NCERT को इंस्टा, फेसबुक, एक्स और LinkedIn पर भी फॉलो कर सकते हैं। इससे आपको हमारी शैक्षिक गतिविधियों और कार्यक्रमों की रोजाना की उपयोगी जानकारी मिलती रहेगी। और अब बारी है आज के शैक्षिक कार्यक्रमों की। आइए सुनते हैं कार्यक्रम मंगल पांडे।
1: ये कार्यक्रम अमर शहीद मंगल पांडे के जीवन और भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में उनकी अहम भूमिका के बारे में एक नाटक के द्वारा सूचना देता है।
2: दादी जी।
3: अरे आशीष, दीपिका, आओ आओ। कहाँ से आ रहे हो भाई, बैठो।
2: दादी जी, मैं आपसे एक बात पूछना चाहता था।
3: हाँ पूछो।
2: ये 1857 क्या है? आजकल अखबारों में कई लेख देखे हैं।
3: ऐसा है आशीष बेटा, ये कहानी 1857 के स्वतंत्रता संग्राम की है। जब हिंदुस्तानियों ने अंग्रेजों के खिलाफ हिंदुस्तान में बहुत बड़ा विद्रोह किया था।
2: अच्छा।
3: सभी देशवासी देश को आजाद कराने के लिए कूद पड़े थे। अंग्रेजों के खिलाफ बहुत बड़ा विद्रोह हुआ क्योंकि सभी देशवासी ईस्ट इंडिया कंपनी से देश को मुक्त कराना चाहते थे।
2: अच्छा।
3: यानी आजादी आजादी आजादी। राजे महाराजे, नवाब, किसान, मजदूर, अमीर गरीब, छोटे बड़े सभी लोग और जांबाज सैनिक अंग्रेजों के खिलाफ उठ खड़े हुए।
2: ओह,
3: उस समय हिंदुस्तान के लोगों पर एक जुनून सवार था। देश की आजादी के लिए हर व्यक्ति मर मिटने के लिए तैयार था।
4: अच्छा।
3: ऐसा ही एक जांबाज सिपाही था, मंगल पांडे।
2: ओह, मंगल पांडे।
3: हाँ, मंगल पांडे 1857 के आरंभिक विद्रोहियों में से ये सबसे पहला विद्रोही था। उसने आजादी की लड़ाई में अपना बलिदान दिया।
4: अच्छा।
3: उस समय ये लड़ाई भारत के विभिन्न क्षेत्रों में लड़ी जा रही थी।

0: दादी जी, लड़ाई में कौन कौन थे?
1: दीपिका, इस लड़ाई में कई नायक और नायिका थे, जैसे अवध में बेगम हजरत महल, कानपुर में नाना साहब, बैरकपुर छावनी से मंगल पांडे, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, अजीमुल्ला खां, तात्या टोपे और राजा कुंवर सिंह जैसे वीर योद्धा थे जिन्होंने देश के लिए अपनी जान की बाजी लगा दी थी।
2: बड़े बहादुर थे ये।
1: स्वतंत्रता संग्राम के दौरान कई गीत भी लिखे गए।
0: दादी दादी, हमें मंगल पांडे की कहानी सुनाओ ना।
2: वो कहाँ के रहने वाले थे?
1: सुनाती हूँ सुनाती हूँ। देखो बच्चों, मंगल पांडे बलिया जिले के रहने वाले थे।
2: अच्छा।
1: बचपन में उनकी माँ उन्हें देश प्रेम की कहानियाँ सुनाती थी। मंगल पांडे फौज की नौकरी बहुत पसंद करते थे।
0: अच्छा।
1: वो कलकत्ता गए और बैरकपुर छावनी में सिपाही के रूप में भर्ती हो गए। और धीरे धीरे वो एक होनहार सिपाही बन गए।
2: दादी, उनकी ट्रेनिंग कहाँ हुई?
1: भाई, उनकी ट्रेनिंग हुई बैरकपुर छावनी में, और ट्रेनिंग के बाद वो सिपाही नियुक्त हो गए। फिर उन्होंने कई साल फौज की नौकरी की।
2: अच्छा दादी जी, लेकिन वो हीरो कैसे बने?
1: बेटा, उन्होंने बैरकपुर छावनी में बड़े बड़े कारनामे किए।
0: अच्छा, क्या क्या? जरा सुनाओ ना दादी।
1: सुनाती हूँ सुनाती हूँ। देखो बच्चों, 25 फरवरी 1857 का दिन था। बैरकपुर छावनी के सिपाही बहुत नाराज थे।
0: ऐसा क्यों?
1: अंग्रेज गाय और सुअर की चर्बी लगा कारतूस चलवाते थे। इसके कारण हिंदू और मुसलमान दोनों ही परेशान थे। देसी सिपाही एकजुट हो गए और ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ

0: बगावत पर उतारू हो गए।
1: अरे अब तक तो अंग्रेज हमारे देश को गुलाम बनाकर लूट रहे थे, अब वो हमारा धर्म भी भ्रष्ट करना चाहते हैं, इसीलिए कारतूसों में चर्बी लगाई गई है।
2: दादी फिर क्या हुआ?
0: फिर दूसरे दिन खाने के लिए मेस में सभी सैनिक इकट्ठे हुए और कारतूसों की चर्चा करने लगे। सैनिक गुस्से में चूर थे। उन्हीं में से एक सैनिक बोला,
1: हमें अपने धर्म की रक्षा खुद करनी होगी।
3: खुद करनी होगी। सही कहे।
4: फिर क्या हुआ दादी?
0: फिर धीरे धीरे ये खबर देश की अन्य छावनियों में भी फैल गई। सैनिकों की बैठक पर बैठक होने लगी।
2: फिर क्या हुआ दादी?
0: सैनिकों की नाराजगी देखकर अंग्रेज मंगल पांडे वाली 19वीं देसी रेजिमेंट को तोड़ना चाहते थे।
4: अच्छा।
0: सिपाहियों को अंग्रेजों की इस चाल की भनक पड़ गई। 26 मार्च रविवार का दिन था। सैनिकों में और असंतोष बढ़ गया।
5: हमें कुछ करना पड़ेगा, ऐसा चल नहीं सकता, नहीं
2: पड़ेगा। उसके बाद क्या हुआ?
0: बैठक के बाद बैठक हो रही थी। माहौल बहुत गर्म था। एक भरी बैठक में मंगल पांडे ने सिपाहियों को ललकारा और कहा,
6: ये गोरे भारत को गुलामी की बेड़ियों में जकड़े हुए हैं। अब ये हमारे दीन धर्म को भ्रष्ट करना चाहते हैं। हम उस मिट्टी में पैदा हुए हैं जिसमें महाराणा प्रताप, छत्रपति शिवाजी जैसे वीरों ने जन्म लिया। हम कदापि अपना धर्म भ्रष्ट न होने देंगे।
3: नहीं होने देंगे, बिल्कुल
6: नहीं। भले ही हमें फांसी के तख्त पर झूलना पड़े।
0: सैनिकों में गुस्सा और तनाव था, शायद कुछ होने वाला है। बच्चों, रोज की तरह परेड के मैदान में मंगल पांडे भी आया। उसका पारा बहुत गर्म था, गुस्से से चेहरा लाल था। मंगल पांडे ने अंग्रेज अफसरों की परवाह न करके परेड की लाइन से निकलकर सिपाहियों को ललकारा।
6: भाइयों उठो, किस चिंता में पड़े हो? मैं आप लोगों को धर्म की सौगंध दिलाता हूँ। आओ, भारत माँ की आजादी के लिए इन अधर्मी अत्याचारियों पर टूट पड़ो।
0: सैनिकों में और जोश भर गया। परेड के मैदान में अंग्रेज ऑफिसर मंगल पांडे का रौद्र रूप देखकर कांप उठा। कांपते स्वर में उसने सैनिकों से कहा,
7: हम पांडे को अरेस्ट मांगता है।
8: मंगल पांडे जिंदाबाद, मंगल पांडे
9: जिंदाबाद,
8: इंकलाब
9: जिंदाबाद,
8: इंकलाब
9: जिंदाबाद।
0: तुरंत ही मंगल पांडे ने अंग्रेज ऑफिसर पर गोली दाग दी। ऑफिसर तो वहीं गिर पड़ा। गोली की आवाज सुनकर लेफ्टिनेंट वॉम आया। मंगल पांडे ने उस पर भी गोली चलाई।
10: ए मंगल पांडे, वॉच आउट।
0: सारी छावनी में खलबली मच गई।
11: भारत माता की जय, भारत माता की जय।
4: उसके बाद क्या हुआ दादी?
0: उसके बाद तुरंत ही कर्नल व्हीलर आया और मंगल पांडे को अरेस्ट करने का हुक्म दिया।

0: के हाथ नहीं लगने देंगे,
1: नहीं लगने देंगे, नहीं लगने देंगे, कोई और कर लेगा।
2: दादी जी, फिर क्या हुआ?
3: कर्नल व्हीलर वहाँ से तुरंत लौट गया। तुरंत ही जनरल हियर्स एक फौजी टुकड़ी के साथ मंगल पांडे को गिरफ्तार करने के लिए आए। मंगल पांडे ने गोरों की टुकड़ी आते देखकर अपनी बंदूक से खुद को गोली दाग ली। और मंगल पांडे जमीन पर गिर पड़ा।

0: 哼，板着口，提克那忙着海，突然的，阿斯巴达拍照。
1: उसके बाद क्या हुआ?
2: उसके बाद ठीक होने पर सैनिक अदालत में उस पर मुकदमा चलाया गया। मुकदमे के समय मंगल पांडे ने छाती तानकर खुले शब्दों में कहा,
3: हाँ, मैंने अंग्रेज अफसर पर गोली दागी थी, पर मेरा उनसे किसी प्रकार का निजी द्वेष नहीं था। ये लड़ाई व्यक्ति की नहीं, राष्ट्र की है। मैं अपने देश को अंग्रेजों की गुलामी से मुक्त करना चाहता हूं।
1: क्या कोई कार्रवाई हुई?
2: हाँ, क्योंकि अंग्रेज हिंदुस्तानियों में खौफ का माहौल बनाना चाहते थे, इसलिए तुरंत ही सैनिक अदालत बैठी।
4: दादी जी, सैनिक अदालत का फैसला क्या था?
2: सैनिक अदालत ने मंगल पांडे को फांसी की सजा सुनाई। 18 अप्रैल सन 1857 को मंगल पांडे को फांसी दी गई। ये इस आंदोलन की पहली कुर्बानी थी। पूरे देश में फांसी की खबर फैल गई। भारत माता का वो सपूत था जो हंसते हंसते फांसी के फंदे पर चढ़ गया। इसके बाद आजादी की लड़ाई जंगल की आग की तरह चारों ओर फैल गई।
4: इसके बाद क्या हुआ दादी?
2: इस बलिदान के कारण आज सारा देश मंगल पांडे को याद करता है। उन पर फिल्में बनाई गई। लोक साहित्यकारों ने तो उन पर कई गीत भी लिखे। मंगल पांडे पर प्रसिद्ध नारायण सिंह की कविता जो भोजपुरी भाषा में लिखी है, ऐतिहासिक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है।
4: अच्छा।
2: इस कविता में क्रांतिवीर मंगल पांडे का गौरव गान किया गया है।
5: जब संतावनी के रारी भैली, वीरन के वीर पुकार भैल, बलिया का मंगल पांडे के बलबेदी से ललकार भैल, मंगल मस्ती में चूर चलल, पहला बागी मसहूर चलल, गुरनी का पलटनी का आगे बलिया के बांका सूर चलल, गोली के तुरंत निशान भैल, जननी के भेंट परान भैल, आजादी का बलबेदी पा मंगल पांडे बलिदान भैल, जब संतावनी के रारी भैली, वीरन के वीर पुकार भैली।
4: दादी, इस लोकगीत का अर्थ क्या है?
2: इस लोकगीत में उल्लेख है कि 57 के युद्ध में वीरों को क्रांति में शामिल होने का आह्वान किया गया।
4: अच्छा।
2: बलिया के मंगल पांडे मस्त होकर क्रांति के लिए गोरों की सेना के सामने छाती तानकर खड़े हो गए। इससे भारत की सोई हुई

0: वीरता जाग गई, जिसने बैरकपुर की बैरकों में अंग्रेजों की सेना में खलबली मचा दी।
1: अभी आपने सुना कार्यक्रम मंगल पांडे और अब प्रस्तुत है कार्यक्रम बहादुर कशी का।
2: ये कार्यक्रम भारत के बहादुर बच्चों पर निर्मित कार्यक्रमों की श्रृंखला से लिया गया है, जिसमें एक बहादुर बच्ची कशिका के जीवन और उसकी बहादुरी को विस्तार से बताया गया है और किस प्रकार इस बहादुर बच्ची ने अपने जीवन को दांव पर लगाकर दूसरों को एक बड़ी विपत्ति से बचाया।
3: काशु बेटी, तुम और देवेंद्र नाश्ता कर लो।
4: माँ, आज तो छुट्टी है, आज भी जल्दी।
3: देखो बेटी, तुम्हारे पापा भी नाश्ता करके दुकान पर चले गए हैं। तुम लोग भी नाश्ता कर लो, नहीं तो ठंडा हो जाएगा। मुझे बहुत सारा काम करना है और खाना भी तो बनाना है।
4: ठीक है माँ, हम नाश्ता कर लेंगे, पर देवेंद्र को तो आ जाने दो।
3: अच्छा ठीक है, देवेंद्र आ जाए तो तुम दोनों नाश्ता कर लेना, मैं पूजा करने जा रही हूँ।
4: अच्छा माँ।
5: माँ।
4: लो, देवेंद्र भी आ गया।
5: दीदी, मुझे बड़ी जोर से भूख लग रही है।
3: चलो तुम दोनों नाश्ता कर लो और अब मैं पूजा के लिए जा रही हूँ, मुझे परेशान मत करना, समझे?
4: ठीक है माँ।
5: नाश्ता नाश्ता यही ले आओ दीदी, ठीक है? मैं यही टीवी के पास बैठकर खाऊंगा।
4: ठीक है, मैं अभी लाती हूँ।
5: ये देखो दीदी, ये मारा।
4: देवेंद्र चुप रहो, मैं भी देख रही हूँ।
5: अरे ये मारा।
4: अच्छा, तुमने दरवाजा बंद किया था या नहीं?
5: बंद कर दिया होगा, ये तो देखो।
4: याद नहीं आ रहा तो जाओ देख कर आओ। मुझे लग रहा है कि दरवाजे पर कोई है। टीवी की आवाज कम करो।
5: कोई नहीं है दीदी, ये गिरा।
3: लगता है कोई आया है। काशु बेटी, देखो दरवाजे पर कौन है।
4: अच्छा माँ, कौन? आप लोग कौन? कहिए किससे मिलना है? अरे
6: हमें अंदर आने दो।
4: अरे क्यों?
7: ए लड़की, रास्ते से हट जा।
4: क्या काम है? ठहरो ठहरो, मैं माँ को बुलाती हूँ।
6: लड़की हट।
4: माँ,
6: ये चाकू देख रही है ना?
7: ज्यादा होशियारी मत दिखा,
4: अरे
7: वरना इस बंदूक की गोली तेरी खोपड़ी के पार कर दूंगा। हट रास्ते से।
4: क्या हुआ? देखो जल्दी।
3: ये क्या है? अरे अरे कौन हो तुम लोग? क्या चाहिए तुम लोगों को?
6: ए शोर मत मचा, जल्दी से चाबी निकालो। तुमने अभी तक चाबी नहीं निकाली।
4: हाँ, मेरी माँ को छोड़ दो।
6: ये चाकू देख रही है ना?
4: छोड़ दो, मुझे मत मारो। कुछ मत करो।
3: चाबी चाबी मुझे नहीं मालूम,
6: जल्दी,
3: याद नहीं कहाँ रखी है। छोड़ दो,
7: बहानेबाजी करती है, जल्दी से चाबी दे दे वरना गोली मार दूंगा।
3: अरे, अरे मेरे पास तो छोड़ो,
4: मेरी माँ को छोड़ो।
6: चुप चुप, आवाज निकाली तो यहीं ढेर कर दूंगा। चुप, आवाज नहीं।
7: सुनो, इसको उठा के दूसरे कमरे में ले चलते हैं। पकड़ो इसको, पकड़ो। अब इसकी आवाज बस यही सुन पाएगी। चाबी तो हम खुद ही ढूंढ लेंगे। चलो।
3: हे भगवान, अब मैं क्या करूं?
4: देवेंद्र।
5: हाँ दीदी।
4: चोर तो उस कमरे में गए, चलो इस कमरे से फोन करते हैं।
5: अच्छा, हाँ।
4: पापा को फोन करती हूँ। देवेंद्र, तुम खिड़की से देखते रहो, ठीक है?
5: अच्छा।
4: हेलो।
6: हाँ बेटा, बोलो।
4: पापा। पापा।
6: हाँ बोलो।
4: जल्दी से घर आ जाओ पापा, चोर घुसा है।
6: कौन घुसा है?
4: माँ को बहुत मार रहे हैं।
6: अच्छा तुम घबराओ नहीं। नहीं नहीं, तुम ऐसा करो, पड़ोसियों को बुलाओ, तब तक मैं आता हूँ, ठीक है?
4: अब देवेंद्र, मैं बाहर से शोर मचाती हूँ, तुम दरवाजा बंद करके यहीं बैठ जाओ।
5: अच्छा।

0: अंतर्राष्ट्रीय समुदाय जटिल वैश्विक चुनौतियों के समाधान के लिए लगातार नई दिल्ली की ओर देख रहा है। वैश्विक मुद्दों पर
1: चर्चाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने और नाविकों को संघर्ष से जुड़े खतरों से सुरक्षा देने की अपील की है। फ्रांस में G7 शिखर सम्मेलन के आउटरीच सत्र में समुद्री व्यापार के बढ़ते खतरों और पश्चिम एशिया में अस्थिरता से मानवीय नुकसान के बारे में प्रधानमंत्री ने कहा कि उन नाविकों की सुरक्षा सुनिश्चित करना हमारी जिम्मेदारी है जो वैश्विक समुद्री व्यापार के माध्यम से सभी देशों को जोड़ते हैं। बैठक के दौरान प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत ने हमेशा मानवता को प्राथमिकता दी है, जो भारत के नेतृत्व वाली पहलों में दिखाई देती है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि वित्त वर्ष 2025-26 में भारत का वार्षिक रक्षा उत्पादन अब तक के उच्चतम स्तर 1,78,000 करोड़ रुपए पर पहुंच गया है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री सिंह ने कहा कि यह उपलब्धि पिछले वित्त वर्ष के 1,54,000 करोड़ रुपए के उत्पादन की तुलना में 15% से अधिक की प्रभावशाली वृद्धि है। कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष अभिषेक देव ने बताया है कि भारत का कृषि संबंधी खाद्य उत्पादों से जुड़ा निर्यात बढ़कर 500 उत्पादों तक पहुंच गया है। भारत ने यह उपलब्धि अमेरिका, ब्राजील, चीन और यूरोपीय संघ जैसे प्रमुख वैश्विक निर्यातकों से प्रतिस्पर्धा के बावजूद हासिल की है। श्री देव ने कहा कि पिछले वर्ष कृषि निर्यात $53 अरब मूल्य का था। भारत विश्व के शीर्ष 10 कृषि निर्यातक देशों में शामिल है। यमुना नदी को स्वच्छ बनाने के लिए किशाऊ बांध परियोजना पर 6 राज्यों में सहमति बन गई है। इनमें हिमाचल प्रदेश, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हरियाणा और राजस्थान शामिल हैं। यह सहमति कल गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में नई दिल्ली में आयोजित बैठक में हुई। परियोजना की 90% राशि केंद्र सरकार देगी, शेष 10% राशि 6 राज्य मिलकर वहन करेंगे। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने आगामी नीट परीक्षा को देखते हुए विद्यार्थियों और अभिभावकों को घोटालेबाजों से सावधान रहने का अनुरोध किया है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राज्य के 59 जिलों में 21 जून को होने वाली नीट परीक्षा के उम्मीदवारों के लिए विशेष व्यवस्था करने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा है कि उम्मीदवारों को प्रवेश पत्र दिखाने पर राज्य सरकार परिवहन निगम की बसों के किराए में 50% की छूट दी जाएगी। पुदुचेरी मंत्रिमंडल में आज 3 नए मंत्रियों को शामिल किया गया। अखिल भारतीय NR कांग्रेस के विधायक P राजवेल्लू और VP शिव कोलुंधु तथा भाजपा विधायक GNS राजशेखरन को उपराज्यपाल K कैलाश नाथन ने पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। अमेरिका और ईरान के बीच हुए शांति समझौते के बाद होर्मुज जल डमरू मध्य इस सप्ताह तक खुल जाएगा। इनमें ब्रांड क्रूड की कीमत 5.4% गिरकर $78.66 हो गई है। लखनऊ में भारत और अफगानिस्तान के बीच 3 एकदिवसीय क्रिकेट मैचों की श्रृंखला का दूसरे मुकाबले में अफगानिस्तान ने टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला किया है। भारत श्रृंखला में 1-0 से आगे है। ICC महिला T20 विश्व कप क्रिकेट में आज भारत का सामना नीदरलैंड से होगा। मैच ब्रिटेन के लीड्स में शाम 7 बजे से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

नमस्कार, ये आकाशवाणी चंडीगढ़ है। अब आप अमन सैनी से प्रादेशिक समाचार सुनिए। यमुना नदी को स्वच्छ बनाने के लिए किशाऊ बांध परियोजना पर 6 राज्यों में सहमति बन गई है। इनमें हिमाचल प्रदेश, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हरियाणा और राजस्थान शामिल हैं। यह सहमति कल गृहमंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में नई दिल्ली में आयोजित बैठक में बनी। सहमति के अनुसार परियोजना की 90% राशि केंद्र सरकार देगी, शेष 10% राशि 6 राज्य मिलकर वहन करेंगे। गृह मंत्रालय के अनुसार यह फैसला यमुना को स्वच्छ करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने आगामी नीट परीक्षा को देखते हुए विद्यार्थियों और अभिभावकों को घोटालेबाजों से सावधान रहने का अनुरोध किया है। एजेंसी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा है कि घोटालेबाज लोग टेलीग्राम पर ऐसे चैनल चला रहे हैं जिनमें 21 तारीख को प्रस्तावित परीक्षा के प्रश्न पत्र साझा करने के लिए 14,000 से 25,000 रुपये तक की मांग की जा रही है। NTA के महानिदेशक अभिषेक सिंह ने कहा कि हम यह सुनिश्चित करेंगे कि परीक्षा बिना किसी गड़बड़ी

0: खिलाड़ी के संपन्न हो।
1: एनटीए इज कमिटेड,
2: एनटीए यह पक्का करने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है कि कोई भी गड़बड़ी ना हो। हर प्रश्न पत्र और उसमें शामिल हर सवाल को पूरी तरह सुरक्षित तरीके से तैयार किया गया है। हमने सामान्य सुरक्षा उपायों के अलावा अतिरिक्त सुरक्षा इंतजाम भी किए हैं। एनटीए ने कई एजेंसियों की मदद ली है और हम यह सुनिश्चित करेंगे कि परीक्षा बिना किसी गड़बड़ी के सम्पन्न हो।
1: एंड वी विल इंश्योर दैट एग्जामिनेशन इज कंडक्टेड इन अ फ्लॉलेस मैनर।
0: भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश अध्यक्ष डॉ. अर्चना गुप्ता ने जींद में मीडिया से बातचीत करते हुए महिला सशक्तिकरण पर बल दिया। उन्होंने कहा कि भाजपा में महिलाओं की सदस्यता बढ़ रही है।
3: संगठन में हमने 33% महिलाओं की भागीदारी हो, भारतीय जनता पार्टी का चाहे केंद्रीय टीम है चाहे प्रदेश की टीम है, उसमें हम ये सुनिश्चित करने वाले हैं और सरकार ने भी आने वाले समय में जिस तरीके से महिलाओं का सशक्तिकरण हो रहा है।
0: उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 12 साल के कार्यकाल को जन कल्याण का दौर बताया। अंबाला छावनी में 1857 में आजादी की पहली लड़ाई को समर्पित शहीद स्मारक बनकर तैयार है और बहुत जल्द इसका उद्घाटन होगा। हरियाणा के ऊर्जा, परिवहन एवं श्रम मंत्री अनिल विज ने कल देर शाम शहीद स्मारक के ओपन एयर थिएटर में लाइट एंड साउंड शो का अवलोकन करने के बाद यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि स्मारक लगभग 700 करोड़ रूपये की लागत से 22 एकड़ में बना है, जिसमें 22 गैलरियों में आजादी की पहली लड़ाई से जुड़े इतिहास को विभिन्न माध्यमों से और बेहद आकर्षक तरीकों से प्रदर्शित किया जाएगा। श्री अनिल विज ने बताया कि शहीद स्मारक के स्मारक टावर सहित 5 अलग-अलग स्क्रीन पर प्रदर्शित किए जाने वाले लाइट एंड साउंड शो को बेहद अलग अंदाज में प्रस्तुत किया जाएगा। कल दूरसंचार विभाग के हरियाणा परिमंडल के नियंत्रक संचार लेखा कार्यालय द्वारा अंबाला छावनी में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में कार्यालय के कर्मचारियों के साथ साथ डाक विभाग और बीएसएनएल के अधिकारियों एवं कर्मचारियों ने भी स्वेच्छा से रक्तदान किया। इस अवसर पर संचार लेखा नियंत्रक शिल्पी सिन्हा ने अधिक से अधिक लोगों से नियमित रूप से रक्तदान करने की अपील की। पानीपत में आयोजित राज्य स्तरीय योगासन प्रतियोगिता में फरीदाबाद जिले के उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले 12 प्रतिभाशाली योग खिलाड़ियों को योगासन खेल संघ द्वारा सम्मानित किया गया।
4: पानीपत जिले में आयोजित योगासन प्रतियोगिता में हमारे शहर के खिलाड़ियों ने भी भाग लिया एवं 3 खिलाड़ियों का चयन राष्ट्रीय स्तर प्रतियोगिता के लिए किया गया। अब यह सभी अपना प्रदर्शन राष्ट्रीय स्तर पर दिखाएंगे। आज एसोसिएशन के माध्यम से इन सभी खिलाड़ियों की वापसी पर इनका अभिनंदन किया गया। फरीदाबाद योगासन स्पोर्ट्स एसोसिएशन इन सभी खिलाड़ियों को आगामी प्रशिक्षण निःशुल्क देगा।
0: इस प्रतियोगिता में अंडर 18 बालिका वर्ग में अर्पिता ने स्वर्ण पदक, समृद्धि ने रजत पदक और 18 से 55 वर्ष पुरुष वर्ग में बलवीर ने कांस्य पदक हासिल किया। गुरु अर्जुन देव जी के शहीदी दिवस के अवसर पर कल पंचकुला में राज्य स्तरीय समारोह का आयोजन किया जाएगा। समारोह में हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत करेंगे और कार्यक्रम स्थल पर लगने वाली छबील का शुभारंभ भी करेंगे। मुख्यमंत्री के ओएसडी डॉ. प्रवलीन सिंह ने बताया कि कार्यक्रम में संत महापुरुषों की भी सहभागिता रहेगी। उन्होंने बताया कि यह राज्य स्तरीय कार्यक्रम सेमिनार के रूप में आयोजित किया जाएगा। इसी के साथ समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
5: मीडियम वेव 262.47 मीटर यानी 1143 किलोहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी का ये रोहतक केंद्र है। प्रस्तुत है आप सभी के फरमाइशी पत्रों पर आधारित कार्यक्रम आपके अनुरोध पर।

कार्यक्रम आपके अनुरोध पर सुनने वाले हमारे सभी श्रोताओं का स्वागत है आज के इस कार्यक्रम में। अपने नए सुनने वालों को बता देते हैं हमारे कार्यक्रम में पत्र भेजने का पता। हमारा पता है कार्यक्रम आपके अनुरोध पर द्वारा केंद्र निदेशक आकाशवाणी रोहतक। इस पते पर इंतज़ार रहेगा हमें आप सभी के पत्रों का, और आज के कार्यक्रम में हमारे यही प्रयास रहेगा कि आप सभी के पत्रों को हम ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में शामिल करें और साथ ही स्वीकार कीजिए आपकी रेडियो साथी सृष्टि का नमस्कार।

कार्यक्रम का पहला गीत आशा भोसले की आवाज़ में अभी आप सुन रहे थे, खूबसूरत फिल्म से। इसके गीतकार थे गुलजार और संगीतकार थे आरडी बर्मन। और पसंद करने वाले श्रोताओं के नाम हम आप सभी को बता देते हैं। आप हैं हनुमानगढ़ जंक्शन राजस्थान से, जगमाल सिंह डागला, हैप्पी डागला, जे एस नायक, शोभा नायक और समस्त डागला परिवार के सदस्य। मॉडल टाउन करनाल से आप हैं सुधीर नूतन, नरेंद्र तनेजा, संदीप गुगलानी, जग्गी दुआ, सुनीता शर्मा और किरण ठाकुर। छत्रपति संभाजी नगर से आप हैं राजेश साबले पाटिल, राजदीप राजेश, राशि और शीतल राजेश। कार्यक्रम का अगला गीत सुनना चाहते हैं आप सभी। भाटापारा दतरेंगी से द्वारिका प्रसाद वर्मा, किशोर कुमार, दीपक कुमार और झावेंद्र कुमार वर्मा हैं। आदर्श नगर मलौट से हैं राज शर्मा, मीना शर्मा, योगेश शर्मा, मैंडी, सौरभ, शाइना और निवान शर्मा। गोला बाजार बक्सर से श्रद्धानंद आर्य, अभयनंद, परमानंद, पंकज, प्रमोद, रोहित और मोहित हैं। अगला पत्र हमें मिला है उमरखेड़ महाराष्ट्र से आप सभी का। अभिजीत गवहानकर, सरिता, प्रिंस, एकांश, बहादुरा नागपुर से हैं, वैशाली, शैलेश गवहानकर, सुमित, ध्वनि परी, बदलापुर मुंबई से सिद्धांत गवहानकर और प्रणीता गवहानकर। आइए आप सभी श्रोताओं की पसंद पर आपको सुनवाते हैं लता मंगेशकर की आवाज़ में आरजू फिल्म का गीत। गीतकार हैं हसरत जयपुरी और संगीत है शंकर जयकिशन का।

लता मंगेशकर की आवाज़ में अभी आपने सुना आरजू फिल्म का गीत। गीत के बोल लिखे हसरत जयपुरी ने और संगीत था शंकर जयकिशन का। कार्यक्रम का अगला गीत आप सभी श्रोताओं की पसंद पर आपको सुनवाते हैं। आप हैं अंबेडकर चौक वाकोडी से उत्तम जमधाडे, स्वराज स्वरीत, श्री तेज संघर्षा संविधान, हिंगोली महाराष्ट्र से मास्टर शाहजी बोडखे, नंदा बोडखे, देवगांव से सदाशिव थ्योरथ हैं। अगला पत्र हमारे पास है आप सभी का धामनी मानोरा से तुलसीराम डेरे, मायावती याओल, संदेश, आदेश, किरण, प्रज्वल, दादुल्या और सभी डेरे परिवार के सदस्य। रमेश कुमार जाजौरिया, गीता रानी, गगनदीप, आरजू जाजौरिया, आपका पत्र हमें मलोट पंजाब से प्राप्त हुआ। करनाल से आप हैं गुरविंदर सिंह पांधा, इंद्रजीत कौर, मनमीत, मनविंदर सिंह पांधा। पुणे से पंकज वाडोदे, आर्या, प्रियंका। जरूर वरुड़ से आप हैं बाबा साहेब वाडोदे, मीनाक्षी चरपे, रजनी कानीरे। अगला पत्र हम शामिल कर रहे हैं आप सभी का हिप्पर सोगा तालुका से उस्मान शेख फौजी, सायरा बानो शेख, दस्तगीर शेख, फैजनबी शेख, शाकिर इस्लाम अबी, बाबा शेख, करिश्मा और सिमर शेख। सानिया शाकिल पठान से आप हैं बिस्लामबी शेख, गदर शेख। हिप्पर सोगा के ही कुछ और साथी आप सभी का नाम है चांदनी अयूब सैयद और राजे अमन सैयद और माहिरा सैयद। आइए आप सभी श्रोताओं की पसंद पर आपको सुनवाते हैं मोहम्मद रफ़ी और साथियों की आवाज़ों में हमराही फिल्म का गीत। गीतकार हैं हसरत जयपुरी और संगीतकार हैं शंकर जयकिशन।

0: अभी आप सुन रहे थे लता मंगेशकर की आवाज़ में झुक गया आसमान फिल्म का गीत। इस गीत के बोल लिखे शैलेंद्र ने और संगीत था शंकर जयकिशन का।
1: लाइफ फास्ट मोड पे चल रही है, घर बैठे बैंकिंग सुविधा के लिए स्विच टू SBI प्रीमियर बैंकिंग, जहां आपको मिलता है एक डेडिकेटेड वर्चुअल रिलेशनशिप एसोसिएट जो समझे आपकी हर जरूरत, दे स्मार्ट एडवाइजर्स और करे हर काम इन लाइटनिंग स्पीड, यानी सिर्फ सीमलेस बैंकिंग एंड मेनी अदर एक्साइटिंग बेनिफिट्स। आज ही विजिट करें अपनी नियरेस्ट SBI ब्रांच और प्रीमियर बैंकिंग एक्टिवेट करें। टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई।
0: आपके अनुरोध पर कार्यक्रम इस समय आप सुन रहे हैं और कार्यक्रम का अगला गीत आप सभी सुनने वालों की पसंद पर आपको सुनवाते हैं महेंद्र कपूर की आवाज़ में हमराज फिल्म से। गीत लिखा है साहिल लुधियानवी ने और संगीत तैयार किया है रवि ने। पसंद करने वाले श्रोता आप सभी हैं, मानोरा से हैं शब्बीर खान, संजीदा बानो, साहिमा और सभी खान परिवार के सदस्य। ज़िला वशीम से आप हैं विशाल, तुलसीराम कवाड़े, ललिता पायल और पीयूष कवाड़े। लक्कड़ बाज़ार खंडवा से मोहम्मद रफ़ीक पंवार, मोहम्मद हसनैन पंवार। ग्राम दीवाल से शंकरलाल गंगराड़े, वनीता गंगराड़े, छोटू, पूजा, रोशनी, अजय, वामिका गंगराड़े। ग्राम छेंगा वदेवी ज़िला खंडवा से अशोक कुमार वाघे, वंदना, भूपेंद्र झंवर, तनुश्री आरोही और काना वांगे। भटिंडा रोड डब्वाली से राजेंद्र नारंग, अंजू और मोहित नारंग, आप सभी का पत्र हमें मिला है। सनावत से मोहम्मद सादिक, मुश्ताक अहमद, मोहम्मद शाकिर, मोहम्मद अलकमा खत्री, मोहम्मद अल्तमश खत्री, रमेश गौड़ और मोहम्मद शादाब खत्री। रोपड़ पंजाब से हरदेव मीका, बलविंदर जैतेग, मीका विरक। बेरडी से हुकुम करमरकर, सुनीता हार्दिक, प्राची और तन्नु करमरकर। संबलपुर कांकेर से फागुराम यादव, ज्योति, ओजस्वी, ईशिका और तेजल यादव। डोंगरगांव रजनांदगांव छत्तीसगढ़ से आप हैं राष्ट्रपाल गजबीय, राधिका, अनिष्का और तन्मय गजबीय। अगला पत्र हमें मिला है मानोरा वशीम से ध्रुव कुमार गिरी, ज्योति गिरी, तेजस और प्रणीता गिरी। पुणे महाराष्ट्र से शैलेशपुरी, सोनमपुरी और धनुषपुरी। नयापारा भिरई से बसंत कुमार सूर्यवंशी, सरोज कुमार ईश्वरराज, चंद्रकांत सूर्यवंशी, प्राची और ट्यूशी सूर्यवंशी। और रोहतक से आप हैं महेंद्र शाह, हरेंद्र शाह, मानसी, उर्वशी और समस्त शाह परिवार के सदस्य। आइए आप सभी को सुनवाते हैं हमराज फिल्म का ये गीत। महेंद्र कपूर की आवाज़ है, गीतकार हैं साहिल लुधियानवी और संगीतकार हैं रवि।

0: अभी आपने सुना महेंद्र कपूर और साथियों की आवाज़ों में हमराज फिल्म का गीत। गीत के बोल लिखे साहिर लुधियानवी ने और संगीत था रवि का।
1: लाइफ फास्ट मोड पे चल रही है, घर बैठे बैंकिंग सुविधा के लिए स्विच टू SBI प्रीमियर बैंकिंग, जहां आपको मिलता है एक डेडिकेटेड वर्चुअल रिलेशनशिप एसोसिएट जो समझे आपकी हर जरूरत, दे स्मार्ट एडवाइजर्स और करे हर काम इन लाइटनिंग स्पीड, यानी सिर्फ सीमलेस बैंकिंग एंड मेनी अदर एक्साइटिंग बेनिफिट्स। आज ही विजिट करें अपनी नियरेस्ट SBI ब्रांच और प्रीमियर बैंकिंग एक्टिवेट करें। टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई।
0: फरमाइशी फिल्म संगीत का कार्यक्रम आप तक पहुंच रहा है आकाशवाणी के रोहतक केंद्र से। कार्यक्रम का अगला गीत आपको सुनवाते हैं लता मंगेशकर की आवाज़ में। फिल्म का नाम है वो कौन थी। गीत लिखा है राजा मेहंदी अली खान ने और संगीत है मदन मोहन का। पसंद करने वाले श्रोता हैं आप सभी अलीका डब्बाली से बसंत सिंह चन, राजकुमार, सुनीता, कुलदीप गांधी, रिंगनी छत्तीसगढ़ से दिनेश वर्मा, करुणा वर्मा, अनारकली बाजार जगराव से सुनील पाठक, कमल पाठक, दीपी

दीपिका मल्होत्रा, आशीष मल्होत्रा, गव्या और सुच्चा पाठक। मलोट पंजाब से राजकुमार इंदौरा, बिमला गैरी, विकास, प्रियंका, रमन इंदौरा और इन्हीं के कुछ और साथी हैं, रितु, भविष्य, मिसेल खन्ना, किंशुक और दीपांशी इंदौरा, लच्छनपुर छत्तीसगढ़ से हैं, विश्वनाथ साहू, पंकज साहू, तिरुपति साहू, धनक्ष और आरु साहू, यदि हमने ठीक पढ़ा है तो। सूर्यवाड़ी औरंगाबाद से आप हैं, प्रकाश बोरगांवकर, सुषमा प्रकाश, प्राजक्ता, प्रांजलि, सोहम बोरगांवकर। वाशी महाराष्ट्र के हमारे श्रोता हैं ऋचा वसमतकर, सोनाली पाठक, संगीता पांडे, अश्वनी कुलकर्णी, कल्पना पांडे, सुनीता पांडे, मालती कंझरकर, संगीता रेघाटे, उषा रेघाटे, छाया बोरकर, तृप्ति श्रृंगारे, विशाखा आमले, माधुरी जोशी, सोनू और जीतू। आइए आप सभी श्रोताओं की पसंद पर आपको सुनवाते हैं वो कौन थी फिल्म का गीत, आवाज़ लता मंगेशकर की।

लता मंगेशकर का गाया ये गीत अभी आप सुन रहे थे। वो कौन थी, फिल्म का नाम था राजा मेहंदी अली खान ने बोल लिखे थे और संगीत था मदन मोहन का। कार्यक्रम का अगला गीत आप सभी श्रोताओं की पसंद पर आपको सुनवाते हैं। आप हैं जिला नांदेड़ से प्रभाकर जोंधले, आरती जोंधले, छोटी बलिया करजत मुंबई से ये पत्र हमें मिला है। अहमद भाई फुलमाले, दुखना रानी सदफ आरजू, जूही इकबाल, आमना नशरीन और इमरान अहमद फुलमाले, गांव नथाना पंजाब से आप हैं। हरजिंदर छिंदा, जसवीर, रेखा, गगन, सोनी, सीता और गीता, गांव खैरखां सिरसा से ये पत्र है। इंद्रजीत, कमलजीत, मीनाक्षी, सागर, सरगुन, हनी लौट का, मसीता नवाली से आप हैं। दर्शन लौट, इंद्रजीत, कमलजीत, मीनाक्षी, सागर, हनी लौट और इनके साथी, मलोट कैंप पंजाब से ये पत्र हमें मिला है। सतीश मिगलानी, सीमा, अनमोल, धर्मपाल, वीर सिंह लाठी, विवान, लखविंद्र संधु, महावीर संधु, गुरचरण ग्रोवर और रमेश मिगलानी का, गांव गोविंदगढ़ माझीवाला राजस्थान से राजू टुटेजा, उर्मिला, गुड्डू, जीनू, मन्नू, आदित्य, भूमि, राखी, अमृत वडवाल, शिव सेठी, कर्णपुरी और स्माइल टुटेजा। आइए आप सभी को सुनवाते हैं आशा भोसले की आवाज़ में थोड़ी सी बेवफाई फिल्म का गीत। इस गीत के बोल लिखे हैं गुलजार ने और संगीत है खयाम का।

अभी आपने सुना ये गीत। फिल्म का नाम था थोड़ी सी बेवफाई और इसे गाया था आशा भोसले ने। गीत के बोल लिखे थे गुलजार ने और संगीत था खय्याम का। चलते चलते जल्दी से आपको सुनवा देते हैं किशोर कुमार की आवाज़ में ये गीत। इसे पसंद करने वाले श्रोता आप सभी हैं। पटियाला से आप हैं मुकेश बत्ता, नीलम बत्ता, नितिन पलक, करण, गीतू, निहारिका, हार्दिक और वंश बत्ता। ज़िला जालना से आप हैं नामदेव भुतेकर, अभिषेक, गणेश, कार्तिक, अश्वनी, वैष्णवी। औरंगाबाद से वैभव, सौरभ। भावसिंहपुरा से आप हैं मेघराज, युवराज, कोतले, रिधोरा देवी, रुद्र। और आप सभी श्रोताओं का ये पत्र हमें प्राप्त हुआ है बदनापुर से। और आइए अब आपको चलते चलते जल्दी से सुनवा देते हैं किशोर कुमार की आवाज़ में आत्माराम फिल्म का ये गीत।

आत्माराम का गीत अभी आप सुन रहे थे। आत्माराम फिल्म का नाम था। गीतकार थे प्रभा ठाकुर और संगीत था शंकर जयकिशन का। किशोर कुमार की आवाज़ थी। इसी गीत के साथ ही आज का आपके अनुरोध पर कार्यक्रम यहीं संपन्न होता है। अभी आपने सुना आपके अनुरोध पर कार्यक्रम। आकाशवाणी का ये रोहतक केंद्र है। कुछ ही पलों में

0: Defence Minister Rajnath Singh has said that from a policy of zero tolerance against terrorism to decisive actions such as surgical strikes, Balakot and Operation Sindoor, India has sent a clear message that its sovereignty is non-negotiable. In a social media post, Mr. Singh noted that India has witnessed a historic transformation in its national security architecture under the astute leadership of Prime Minister Narendra Modi. He added that the country's resolve for Atmanirbharta in defence has strengthened indigenous capabilities, modernised armed forces and enhanced preparedness across land, sea, air, cyber and space domains. The Defence Minister underlined that the journey of the last 12 years reflects a stronger, safer, self-reliant and more confident India, ready to safeguard its national interests and emerge as a leading global power. Defence Minister Rajnath Singh has highlighted that India's annual defence production has surged to an all-time high of 1.78 lakh crore rupees in the financial year 2025-26. In a social media post, Mr. Singh said that this milestone represents an impressive 15.6% growth over the previous fiscal year's output of 1.54 lakh crore rupees and a staggering 110% increase since financial year 2020-21, when the figure stood at over 84,000 crore rupees. He added that indigenous defence production has increased nearly fourfold from 4,746 crore rupees in financial year 2013-14. Prime Minister Modi has highlighted that India's defence capabilities have witnessed a significant transformation over the last decade, guided by the vision of self-reliance and powered by innovation, technology and indigenous manufacturing. Sharing a thread of MyGov on his social media account, Mr. Modi explained how the country has strengthened its defence capabilities across air, land and sea, advanced indigenous technologies and built a stronger foundation for self-reliance and national security. Home Minister Amit Shah has said that over the past 12 years, under the government led by Prime Minister Narendra Modi, India has been rebuilt as a bastion of security that shields the citizens and unleashes destruction upon its enemies. In a social media post, Mr. Shah underlined that whether it is responding to enemies across border with the firepower of surgical strike, airstrike and Operation Sindoor, abrogating Article 370, eradicating Naxalism or fortifying internal security with over 12 accords in the Northeast. Union Minister for Environment, Forest and Climate Change Bhupendra Yadav today said that India has already brought 21.76 million hectares of land under restoration efforts against its target of restoring 26 million hectares by 2030. He said this while addressing the event to commemorate World Day to Combat Desertification and Drought 2026 in New Delhi. Speaking on the theme of this year's observance, Rangelands Recognize, Respect, Restore, Mr. Yadav cited India's desertification and land degradation atlas and said that around 29% of the country's geographical area is affected by land degradation and desertification.
1: We fully reaffirm our ministry's commitment declared by the Honorable Prime Minister during the COP 2014 Delhi Declaration, where it was pledged that we would work toward the restoration of 26 million hectares of land by the year 2030. Under the Government of India's Green India Mission, we have already carried out work on approximately 1.7 lakh hectares of land. Furthermore, with the support of CAMPA, we have also successfully undertaken forestation effort across 3.2 lakh hectare of land over the past 5 years.
2: हम लोगों ने forestation करने का काम किया है.
0: This is Akashvani giving you the news. For quick news updates round the clock, follow us on our X handle at AIR News Alerts. And for details of stories and more, log on to our website www.newsonair.gov.in and download News on AIR app. Union Minister for Electronics and Information Technology Ashwini Vaishnav today said India has emerged as a major electronics manufacturing hub and is now the world's sixth largest exporter of electronics. He was speaking after inaugurating the new manufacturing facility of US-based company Jabil at Ranjangaon MIDC in Pune. Mr. Vaishnav said that under the leadership of PM Modi, India has transformed into a global electronics manufacturing destination and is exporting products to markets across the world. Three new ministers were inducted into the Puducherry cabinet today, completing the long-awaited expansion of the Council of Ministers. All India NR Congress MLAs P. Rajvelu and VP Shivkulandu and BJP MLA GNS Rajashekaran were sworn in as ministers at a ceremony held at Lok Nivas. Lieutenant Governor K. Kailash Nathan administered the oath of office and secrecy. National Testing Agency, NTA, has urged parents and candidates to beware of scammers ahead of NEET examinations. In a social media post, NTA said that scammers on Telegram are running channels demanding money ranging from 14,000 to 25,000 rupees with claims of sharing the re-exam paper. It clarified that there is no leaked paper for the re-exam. It said that fake proof videos showing chats from before the exam are also being circulated. NTA also shared a video of its Director General Abhishek Singh explaining the reason behind blocking the access to the app in the country.
3: See, NTA is committed 100% to ensure that no malpractice will happen. Every question paper has been made in a complete secure manner. We have added layers of security to what is normally done. We have taken every single precaution to ensure that nobody who is involved in setting up the question papers or translating them or printing them or moving them or storing them till the date of the examination is compromised in any manner.
0: In Manipur, security forces intensified counter-insurgency and law enforcement operations across the state, arresting three militants and destroying 26 illegal bunkers in separate operations, said the officials today. The militants were arrested from different locations in Imphal West District. Police said they were allegedly involved in multiple violent and criminal activities. U.S. President Donald Trump has criticized Israel's military campaign against Hezbollah in Lebanon, saying the conflict has continued for too long and has led to excessive civilian casualties. Speaking on the sidelines of the G7 summit in France, Mr. Trump said Israel was fighting Hezbollah too long and that too many people are being killed. India has delivered another 5 tons of essential medicines to Kabul. The External Affairs Ministry said that it reaffirms the country's enduring commitment to providing humanitarian assistance for the well-being of the people of Afghanistan. In cricket, India was 70 for 1 in 8.1 overs against Afghanistan on the second one-day international of the three-match series in Lucknow. Early, Afghanistan won the toss and elected to field first. Shubman Gill-led men in blue are currently leading the series 1-0 and will aim to clinch the series in today's clash. Benchmark domestic equity indices were trading around 0.3% up in the afternoon session today. The Sensex rose 225 points to 77,033, while the Nifty advanced 66 points to 24,056 when reports last came in. And now, before we end the bulletin, the headlines once again. G7 leaders adopt declarations on global stability, security cooperation and efforts to counter transnational organized crime. Prime Minister Narendra Modi to meet US President Donald Trump on the sidelines of G7 summit in Evian, France, to reach Paris this evening as part of his visit to France. Defence Minister Rajnath Singh says India's sovereignty non-negotiable, cites surgical strikes, Balakot and Operation Sindoor as decisive actions against terrorism. India's defence production soars to record 1.78 lakh crore rupees in financial year 2025-26. Surges 110% since 2020-21. Security forces intensify enforcement and counter-insurgency operations across Manipur. Three militants arrested, 26 illegal bunkers destroyed. And in men's cricket, second ODI of three-match series between India and Afghanistan underway in Lucknow. And with that, we end the midday news.
4: नमस्कार आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं लवलीन निगम G7 नेताओं ने वैश्विक स्थिरता सुरक्षा सहयोग और अंतर्राष्ट्रीय संगठित अपराध का मुकाबला करने के प्रयासों पर केंद्रित कई घोषणाओं को अपनाया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज फ्रांस के एविया में G7 शिखर सम्मेलन के दौरान अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात करेंगे श्री मोदी आज शाम पेरिस पहुंचेंगे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सर्जिकल स्ट्राइक बालाकोट और ऑपरेशन सिंदूर का उदाहरण देते हुए कहा भारत की संप्रभुता पर कोई समझौता नहीं किया जा सकता। वित्त वर्ष 2025-26 में भारत का रक्षा उत्पादन रिकॉर्ड 1,78,000 करोड़ रुपए पर पहुंचा, 2020-21 की तुलना में 110% की वृद्धि। सुरक्षा बलों ने मणिपुर में प्रवर्तन और आतंकवाद रोधी अभियान तेज किया, 3 आतंकवादी गिरफ्तार, 26 अवैध बंकर नष्ट। और भारत और अफगानिस्तान के बीच 3 एक दिवसीय क्रिकेट मैच की श्रृंखला का दूसरा मुकाबला लखनऊ में जारी। अब समाचार विस्तार से। G7 नेताओं ने वैश्विक स्थिरता, सुरक्षा सहयोग और अंतर्राष्ट्रीय संगठित अपराधों से निपटने के प्रयासों पर केंद्रित कई घोषणाओं को अपनाया है। अपने बयान में नेताओं ने अमेरिका और ईरान के बीच हुए शांति समझौते का स्वागत किया और इसे क्षेत्रीय तनाव कम करने तथा ईरान को परमाणु हथियार हासिल करने से रोकने का एक महत्वपूर्ण अवसर बताया। G7 नेताओं ने होर्मुज जल डमरू मध्य से सुरक्षित नौवहन गतिविधियों के महत्व का भी उल्लेख किया। एक अन्य घोषणा में नेताओं ने मादक पदार्थों की तस्करी के खिलाफ कार्रवाई तेज करने का संकल्प लिया और इसे राष्ट्रीय सुरक्षा, सार्वजनिक स्वास्थ्य और आर्थिक स्थिरता के लिए बढ़ता खतरा बताया। सहयोगी देशों ब्राजील और दक्षिण कोरिया ने भी इस पहल का समर्थन किया है। नेताओं ने ज्ञान कौशल को बढ़ाने और तस्करी को रोकने के लिए G7+ पोर्ट्स नेटवर्क का प्रस्ताव भी रखा। G7 देश के नेताओं ने विकासशील देशों पर बढ़ते कर्ज के बोझ से निपटने की कोशिशें तेज करने का संकल्प लिया है। इसमें वे कमजोर मध्यम आय वाले देश भी शामिल हैं, जो अभी कोरोना महामारी के दौरान G20 के कर्ज राहत ढांचे के लिए योग्य नहीं हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम फ्रांस के एविया में G7 शिखर सम्मेलन के दौरान अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात करेंगे। इससे पहले दोनों नेताओं ने फरवरी 2025 में अमेरिका के वॉशिंगटन में बैठक की थी। इस दौरान दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय सहयोग के विभिन्न क्षेत्रों सहित क्षेत्रीय और वैश्विक हित के मुद्दों पर चर्चा होने की संभावना है। हमारे संवाददाता अंकित कुमार एवियन से G7 सम्मेलन के घटनाक्रमों पर ताज़ा जानकारी के लिए जुड़ रहे हैं। जी अंकित, दोनों नेताओं के बीच किन क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर चर्चा होने की उम्मीद है?
5: जी लवली, देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की जो मुलाकात है ये कई मायनों में हम है। हालांकि दोनों नेता कल ग्रुप फोटो और वर्किंग सेशन के समय मिले थे, लेकिन अब सबकी निगाहें इस द्विपक्षीय मुलाकात पर टिकी हुई है। ऐसा माना जा रहा है कि दोनों नेताओं की मुलाकात के दौरान पश्चिम एशिया संकट को लेकर बात हो सकती है। देखिए भारत हमेशा से शांति और बातचीत का पैरोकार रहा है, ऐसे में उम्मीद जताई जा रही है कि इस मुद्दे पर व्यापक बातचीत हो सकती है। इसके अलावा दोनों देशों के बीच ट्रेड डील की प्रगति पर भी बात हो सकती है। भारत ऊर्जा सुरक्षा के मुद्दे पर भी बात कर सकता है, क्योंकि पश्चिम एशिया का संकट हो या अन्य कोई भी भू राजनीतिक तनाव हो, ऊर्जा क्षेत्र पर व्यापक असर पड़ने की आशंका बढ़ जाती है। ऐसे में इस मुद्दे पर प्रमुखता से बात हो सकती है। इन मुद्दों के अलावा श्री मोदी और श्री ट्रंप भारत अमेरिका के द्विपक्षीय व्यापार के सभी पहलुओं पर भी चर्चा कर सकते हैं। लवली,
4: धन्यवाद अंकित इस जानकारी के लिए। श्री मोदी सम्मेलन के दौरान सभी के लाभ के लिए संतुलित समावेशी और मजबूत आर्थिक विकास को बढ़ावा देने पर सत्र में भी हिस्सा लेंगे। श्री मोदी का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के सुरक्षित, तेज और प्रभावी इस्तेमाल को सुनिश्चित करने पर आयोजित एक विशेष सत्र में भी भाग लेने का कार्यक्रम है। इसके अलावा प्रधानमंत्री मोदी यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष उर्सुला फॉन डेर लेयन और जर्मनी के चांसलर फ्रेडरिक मर्ट्ज से भी मुलाकात करेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री आज शाम फ्रांस की राजधानी पेरिस पहुंचेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि भारतीय समुदाय के लोग प्रधानमंत्री मोदी के आगमन की उत्सुकता से प्रतीक्षा कर रहे हैं।
6: प्रधानमंत्री मोदी कल सुबह प्रमुख वैश्विक कंपनियों के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों यानी CEOs के साथ बैठक करेंगे। यह बैठक दोपहर तक चलने की संभावना है। इसके बाद प्रधानमंत्री यूरोप के प्रमुख प्रौद्योगिकी और नवाचार आयोजनों में से एक विवाटेक शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे और वहां उपस्थित प्रतिनिधियों को संबोधित करेंगे। पेरिस में विवाटेक शिखर सम्मेलन का उद्घाटन कुछ ही समय में होने जा रहा है। दुनिया भर के अग्रणी प्रौद्योगिकी कंपनियों, स्टार्टअप्स, निवेशकों और नवाचार क्षेत्र के विशेषज्ञों का इस प्रतिष्ठित आयोजन में जुटना शुरू हो चुका है। कल शाम को प्रधानमंत्री भारतीय समुदाय के विशेष कार्यक्रम में शामिल होंगे और प्रवासी भारतीयों से संवाद करेंगे। कार्यक्रम में भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को प्रदर्शित करने वाली सांस्कृतिक प्रस्तुतियां भी होंगी, जो भारत और फ्रांस के बीच जन से जन संबंधों को और मजबूत करेगी। महेश सोपड़े, आकाशवाणी समाचार, पेरिस, फ्रांस।
4: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newzoneair.gov.in और हमारे newzoneair ऐप पर भी उपलब्ध हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि आतंकवाद को कतई बर्दाश्त न करने की नीति से लेकर सर्जिकल स्ट्राइक, बालाकोट और ऑपरेशन सिंदूर जैसी निर्णायक कार्यवाहियों तक भारत ने स्पष्ट संदेश दिया है कि उसकी संप्रभुता पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कुशल नेतृत्व

0: क्षेत्रों में भारत ने अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा संरचना में ऐतिहासिक परिवर्तन देखा है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि वित्त वर्ष 2025-26 में भारत का वार्षिक रक्षा उत्पादन अब तक के उच्चतम स्तर 1,78,000 करोड़ रुपए पर पहुंच गया है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री सिंह ने कहा कि यह उपलब्धि पिछले वित्त वर्ष के 1,54,000 करोड़ रुपए के उत्पादन की तुलना में 15% से अधिक की प्रभावशाली वृद्धि है। वित्त वर्ष 2020-21 में इसमें 110% की वृद्धि हुई है, जब ये आंकड़ा 84,000 करोड़ रुपए से अधिक था। श्री सिंह ने कहा कि स्वदेशी रक्षा उत्पादन वित्त वर्ष 2013-14 के 4,746 करोड़ रुपए की तुलना में 4 गुना बढ़ा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि पिछले एक दशक में भारत की रक्षा क्षमताओं में आत्मनिर्भरता और नवाचार, तकनीक तथा स्वदेशी निर्माण की सहायता से महत्वपूर्ण परिवर्तन आया है। MyGov की एक पोस्ट को अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर साझा करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा, कैसे भारत ने जल, थल और आकाश में उन्नत स्वदेशी तकनीकों के बल पर अपनी रक्षा क्षमताओं को मजबूत किया है। उन्होंने कहा कि इससे पिछले 12 वर्षों में भारत के रक्षा क्षेत्र में हुए बदलाव की झलक स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ती है। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि भारत एक प्रमुख इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण केंद्र के रूप में उभरा है। अब भारत दुनिया का 6ठा सबसे बड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स निर्यातक देश है। पुणे में एक अमरीकी कंपनी के विनिर्माण इकाई के उद्घाटन समारोह में श्री वैष्णव ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भारत एक वैश्विक इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण केंद्र के रूप में विकसित हुआ है। कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष अभिषेक देव ने बताया है कि भारत का कृषि संबंधी खाद्य उत्पादों से जुड़ा निर्यात बढ़कर 500 उत्पादों तक पहुंच गया है। भारत ने ये उपलब्धि अमेरिका, ब्राजील, चीन और यूरोपीय संघ जैसे प्रमुख वैश्विक निर्यातकों से प्रतिस्पर्धा के बावजूद हासिल की है। श्री देव ने कहा कि पिछले वर्ष कृषि निर्यात $53 अरब मूल्य का था।
1: भारत आज विश्व के शीर्ष 10 कृषि निर्यातक देशों में लगातार अपनी जगह बनाए हुए है। ये उपलब्धि इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि भारत का मुकाबला कई बड़े और विकसित देशों से है। पिछले कुछ वर्षों में भारत की कृषि निर्यात में निरंतर वृद्धि देखने को मिली है। हाल ही में समाप्त हुए वित्तीय वर्ष में हमारा कृषि निर्यात $53 अरब तक पहुँच गया और इसकी वृद्धि दर भी काफी अच्छी रही है।
0: पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहा है कि बंजर भूमि को दोबारा उपजाऊ बनाने की सरकार की कोशिशें न सिर्फ प्रकृति की सेवा है बल्कि मानवता के भविष्य को सुरक्षित करने का संकल्प भी है। नई दिल्ली में मरुस्थलीकरण और सूखे से निपटने के लिए वैश्विक दिवस के अवसर पर आयोजित एक कार्यक्रम में श्री यादव ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2,60,00,000 हेक्टेयर भूमि को उपजाऊ बनाने का लक्ष्य रखा है।
2: हम पूरी तरीके से अपने मंत्रालय की प्रतिबद्धता, माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो कॉप 2014 की दिल्ली डिक्लेरेशन के समय में करी थी कि हम 26 मिलियन हेक्टर को 2030 तक एक तरीके से रेस्टोरेशन का काम करेंगे। भारत सरकार अपने ग्रीन इंडिया मिशन में लगभग 1.7 लाख हेक्टर जमीन का कार्य हमने किया है और कैंपा के समर्थन से भी पिछले 5 वर्षों में 3.2 लाख हेक्टर का हम लोगों ने फॉरेस्टेशन करने का काम किया है।
0: मणिपुर में सुरक्षा बलों ने राज्य भर में उग्रवाद विरोधी अभियान तेज कर दिए हैं। अधिकारियों के अनुसार अलग अलग अभियानों में 3 उग्रवादियों को गिरफ्तार किया गया और 26 अवैध बंकर नष्ट किए गए हैं। गिरफ्तार किए गए उग्रवादियों की पहचान प्रतिबंधित पीपल्स लिबरेशन आर्मी और उसके राजनीतिक विंग रेवोल्यूशनरी पीपल्स फ्रंट के सक्रिय सदस्यों के रूप में हुई है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने आगामी नीट परीक्षा को देखते हुए विद्यार्थियों और अभिभावकों को घोटालेबाजों से सावधान रहने का अनुरोध किया है। NTA के महानिदेशक अभिषेक सिंह ने कहा कि हम ये सुनिश्चित करेंगे कि परीक्षा बिना किसी गड़बड़ी के संपन्न हो।
3: NTA यह पक्का करने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है कि कोई भी गड़बड़ी ना हो। हर प्रश्न पत्र और उसमें शामिल हर सवाल को पूरी तरह सुरक्षित तरीके से तैयार किया गया है। हमने सामान्य सुरक्षा उपायों के अलावा अतिरिक्त सुरक्षा इंतजाम भी किए हैं। NTA ने कई एजेंसियों की मदद ली है और हम यह सुनिश्चित करेंगे कि परीक्षा बिना किसी गड़बड़ी के सम्पन्न हो।
0: इस बीच उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि उम्मीदवारों को प्रवेश पत्र दिखाने पर राज्य सड़क परिवहन निगम की बसों के किराए में 50% की छूट दी जाएगी। भारतीय जनता पार्टी ने आज लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी पर नीट पुनर्परीक्षा से पहले छात्रों के मन में तनाव पैदा करने और उनकी एकाग्रता भंग करने का आरोप लगाया। भाजपा प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि सरकार इस परीक्षा को पूरी संवेदनशीलता और सतर्कता के साथ व्यवस्थित तरीके से आयोजित करने जा रही है।
4: मात्र 3 दिन के बाद नीट की परीक्षा दोबारा संपन्न होने जा रही है। इस विषय को लेकर जहां एक तरफ सारे छात्र पूर्ण मनोयोग से परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, जहां एक तरफ सरकार संवेदनशीलता से काम करती हुई दिखाई पड़ रही है, वहीं कांग्रेस पार्टी और नेता प्रतिपक्ष श्री राहुल गांधी ऐसा प्रतीत हो रहा है कि संवेदनशीलता के स्थान पर कुटिलता का प्रयोग करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इजराइल की हिजबुल्ला और सैन्य कार्रवाइयों की निंदा की है। फ्रांस में जारी G7 सम्मेलन के दौरान ट्रंप ने कहा कि यह संघर्ष बहुत लंबे समय से जारी है और इसमें कई लोगों की जान गई है। उन्होंने इजराइल के प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू से सैन्य कार्रवाइयों के संचालन में अधिक जिम्मेदारी बरतने का आग्रह किया है। एक रिपोर्ट।
5: ईरान ने आरोप लगाया है कि अमेरिका ईरान समझौता ज्ञापन की घोषणा के बाद से इसराइल ने लेबनान में युद्ध विराम का कई बार उल्लंघन किया है। साथ ही चेतावनी भी दी है कि यदि हमले जारी रहे तो कड़ा जवाब दिया जा सकता है। ईरान के सैन्य अधिकारियों ने कहा है कि इसराइली बलों ने 48 घंटे में 84 बार युद्ध विराम का उल्लंघन किया है। उन्होंने कहा कि किसी भी प्रकार का उल्लंघन ईरान और अमेरिका के बीच जारी व्यापक कूटनीतिक प्रक्रिया के लिए खतरा बन सकता है। वहीं इस बीच हिजबुल्ला के अधिकारियों का कहना है कि समझौते के बाद से संगठन ने कोई सैनिक कार्रवाई नहीं की है। उन्होंने ये भी कहा है कि इसराइल को भी युद्ध विराम की शर्तों का पालन करना चाहिए। वहीं दूसरी ओर इसराइली नेतृत्व ने संकेत दिया है कि सुरक्षा खतरों को देखते हुए सैन्य अभियान जारी रहेंगे और उत्तरी सीमा पर सेना हाई अलर्ट पर बनी रहेगी। दुबई से विनोद कुमार की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से वैष्णवी।
0: इस बीच ब्रेंट क्रूड की कीमत 5.4% गिरकर $78.66 हो गई है। लखनऊ में भारत और अफगानिस्तान के बीच 3 एकदिवसीय क्रिकेट मैचों की श्रृंखला के दूसरे मुकाबले में अफगानिस्तान ने टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला किया है। ताजा समाचार मिलने तक भारत ने 13 ओवर में 1 विकेट पर 96 रन बना लिए हैं। भारत श्रृंखला में 1-0 से आगे है। ICC महिला T20 विश्व कप क्रिकेट में आज भारत का सामना नीदरलैंड्स से होगा। ये मैच ब्रिटेन में लीड्स में भारतीय समय अनुसार शाम 7 बजे से होगा। फीफा फुटबॉल विश्व कप में ऑस्ट्रिया ने जॉर्डन को 3-1 से हराया है। अर्जेंटीना ने भी आज सुबह अल्जीरिया को 3-0 से पराजित किया। मौसम विभाग ने कहा है कि अगले 4 से 5 दिन में दक्षिण पश्चिम मॉनसून के तेलंगाना, ओडिशा, झारखंड, बिहार और छत्तीसगढ़ के कुछ हिस्सों में आगे बढ़ने की संभावना है। विभाग ने आज उप हिमालय, पश्चिम बंगाल और सिक्किम के कुछ स्थानों पर तेज वर्षा का अनुमान जताया है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। G7 नेताओं ने वैश्विक स्थिरता, सुरक्षा सहयोग और अंतर्राष्ट्रीय संगठित अपराध का मुकाबला करने के प्रयासों पर केंद्रित कई घोषणाओं को अपनाया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज फ्रांस के एविया में G7 शिखर सम्मेलन के दौरान अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात करेंगे। श्री मोदी आज शाम पेरिस पहुंचेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सर्जिकल स्ट्राइक बालाकोट और ऑपरेशन सिंदूर का उदाहरण देते हुए कहा कि भारत की संप्रभुता से कोई समझौता नहीं किया जा सकता। वित्त वर्ष 2025-26 में भारत का रक्षा उत्पादन रिकॉर्ड 1,78,000 करोड़ रुपए पहुंचा। सुरक्षा बलों ने मणिपुर में प्रवर्तन और आतंकवाद रोधी अभियान तेज किया। 3 आतंकवादी गिरफ्तार, 26 अवैध बंकर नष्ट और भारत और अफगानिस्तान के बीच दूसरा एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच जारी। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

मीडियम वेव 262.47 मीटर यानी 1143 किलोहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी का ये रोहतक केंद्र है। प्रस्तुत है खेत खलिहान कार्यक्रम।

0: लाइफ फास्ट मोड पे चल रही है। घर बैठे बैंकिंग सुविधा के लिए स्विच टू SBI प्रीमियर बैंकिंग, जहां आपको मिलता है एक डेडिकेटेड वर्चुअल रिलेशनशिप एसोसिएट जो समझे आपकी हर जरूरत, दे स्मार्ट एडवाइजर्स और करे हर काम इन लाइटनिंग स्पीड, यानी सिर्फ सीमलेस बैंकिंग एंड मेनी अदर एक्साइटिंग बेनिफिट्स। आज ही विजिट करें अपनी नियरेस्ट SBI ब्रांच और प्रीमियर बैंकिंग एक्टिवेट करें। टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई।
1: खेत खलिहान कार्यक्रम सुनने वाले सारे भण भैया ने आनंद भाई की राम राम। और आज भाइयों बुधवार का दिन है और ये देखे हैं कि जो भी हम कृषि संबंधित क्रियाएं कर रहे हैं, अपने दिनचर्या के काम हैं, ये जेठ का महीना चल रहा है भाई, जड़े भी बात कर रहे हैं खेती बाड़ी में भाई, क्योंकि अपना जो इलाका है लगभग हरियाणा प्रदेश में कह लें या भारतवर्ष में कह लें, काफ़ी न्यू देखा हाँ कि हर एक जगह का मौसम और कई जगह भाई कोई बरानी इलाका कितने बरिया जमीन तो ये चालदार हुआ है। जड़े भी खास तौर पे बरानी इलाका की अगर बात करी जाए तो भाई जेठ का महीना था, किसान भाई की तो बरसात की बात भी देख रहे थे भाई कि तो ये देखे हैं कि आगे चाल की और मानसून की बरसात होगी भाई, जड़े कितने भैया ने चाहे वो हरे चारे के रूप में कितने बाजर है या फिर कितने भाई बाजरा लेना है तो उड़े भी जाई भाई आस्ताई अरे चारे की शुरू हो जाएगी। और वैसे भी भाई अपना जो बाजरा फसल है उसकी भी बिजाई शुरू हो जाएगी, क्योंकि बाजरे ने बीजन का समय भाई सही आ गया है। उन्नत किस्मा की अगर बात करी जा भाई HHB 50 है, 60 है, 67 है, ये संशोधित किस्म है। HHB 94, 117 और HHB 146, 197, 216, 223, 226, 234, 272, 299, 311, ये सभी मिश्रित HC 10 और 20 के जो भी मान्यता है बीज ने अपने भाई संसाधना हिसाब से प्रबंधन कर लिए हुए, क्योंकि शंकर बाजरे का जो बीज है और एक साल नया लेकर हमने बोना है, क्योंकि इसमें वो गुणवत्ता नहीं रहती है, अगर हम नया लेके ही बोएंगे तो इसमें पैदावार ठीक हो पाओगी। और वैसे देखा जाए तो भाई एक तो लेके 15 जुलाई तक का अपना जो समय है बाजरे की बिजाई का बढ़िया माना जाए, परंतु बरानी इलाके में मानसून की जो पहली वर्षा हो जाए तो हम बिजाई शुरू कर सका। हाँ, खेत ने दो या तीन बार भाई बढ़िया अपने साफ सुथरा जोत की, संवार की, सुहागा लगा की, आल दाब की, उसमें अच्छी तरह से तैयार कर की ताकि उसमें कोई घास फूस ना रहे, नमी बरकरार बनी रहे। बरानी क्षेत्र में वर्षा तो पहले खेत के चारों तरफ खूब मजबूत डोले हम बना दें ताकि खेत का जो पानी है वो भीतरे जमा हो जाए, आगामी फसल का काम आ जाए। और एक एकड़ के लिए भाई लगभग 1.5 किलो की 2 किलोग्राम बीज जो है बाजरे में काफ़ी रवे है। खेत में सही उगाव के लिए भाई बिजाई ने खूडा में और इस तरह से करें कि बीज ने ऊपर तो लेके 2-1 सेंटीमीटर तो अधिक मिट्टी ना आ पाओ इसमें, क्योंकि जब ये देखें हैं जब बाजरे का बिल्कुल नाजुक हो जाए भाई, जब ज़्यादा लागू चले आ जाए हर ऊपर तक इसे कारण वो भाई को आंधी रड़वा आ जाए कि तो थोड़ी मोड़ी रामबड़ की बूंद हो जाए तो बाजरा फसल जो है तौड़ी मार में चली जाए। बस इसाए रखें कि भाई अपना 1.5-2 कांगल इतना लागू कर लिया हम 1.5-2 सेंटीमीटर जल्दी इसका जमा हो जाए। कई भाई के करे हैं कि पहले अपने बहुत से अपने बुजुर्ग का तजुर्बा यो होता कि भाई अपना छीटा दे दें जेल बका कर दें और जब बूंदा बांदी होती तो बाजरा ठीक जाम आता। और आजकल तो ये भी देखा हाँ कि भाई वो चाहे बाजरे की बात हम करें, हाँ बारू मासा जो है अपने ईख की बात हम करा हाँ, क्योंकि बरसात होने के ऊपर बहुत से किसान भाई इसका पौधरोपण कर दी है। इसी तरीके से जो है बाजरा फसल की भी पौध लगाई जा सके है, जड़े भाई ज़्यादातर हम कह दिए हैं कि बिल्कुल ही गहरा जाम रहा है श्यांगना जिसना हम कह दिया अर दे तो वहाँ तो उखाड़ के बाजरा दूसरी जगह जड़े भी कम जमाव है खाली जगह पड़ी उड़ रोपित कराया जा सके है। तो यो तरीका भी बरसात में हम जरूर अपनाओ, लेकिन ये भाई यो कारगर जब होगा जब अपने ऊपर मानसून की बरसात चल रही हो, बरसात का टाइम आ रहा हो, अन्यथा क्यों है कि हम पानी दोबारा नहीं डालेंगे तो फिर ये पौध ठीक तरह से अपना जो है जड़ का रोपण नहीं ले पाऊंगी। इसी तरह से ईख की बात हम करें, हाँ जड़े भी भाई गहरा है उड़ता हम उखाड़ के इसने बिल्कुल जड़ समेत और खाली जगह पर इसमें रोपित हम कर सके हैं, तो ये थोड़ी ध्यान रखने की बात है भाई। बरसात का टाइम में भी हम पौधरोपण बाजरे की है फिर ईंख की है कई जगह कर सके हैं, फिर क्या होगा कि आने वाला जो टाइम है वो मानसून का भी आओगा भाई, जेठ का भी ना चल रहा है। तो बात आज कुछ जो अपने बाग हैं, क्योंकि बागाम भी काफ़ी ज़रूरत रही जहाँ भाई जो अपने पेड़ पौधे हैं चाहे वो कृषि वानिकी के तहत हम लगाओ हैं ਜਾਂ ਫਿਰ ਵੈਸ਼ਿਆਮ ਨੂੰ ਦੇਖਾਂ ਹਾਂ ਕਿ ਬਈ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਬਾਗ ਕੀ ਨਵੇਂ ਬਾਗਾਂ ਕੀ ਰੂਪ ਰੇਖਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਤੋ ਸਾਰੇ ਕਾਮ ਜੋ ਹੈ ਬਰਸਾਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਮਨੇ ਇੱਕ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਜੋ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਅਪਣਾਉਣੇ ਹੋਂਗੇ। ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬਾਤ ਜਬ

0: हाँ, जब जो नए बागा की रूपरेखा अगर किसान भैया ने तैयार करवानी है तो इन मैं यो देखा हाँ कि जब भी अपना टाइम वो है भैया अपना खेत खाली हो है उसने न्यू देख लें कि हमारे पास एक तो वाटर लेवल जिस नाम चोवा कह दे हैं वो हमारे पास कितना ऊंचाई पर है, कितना डूंगाई पर है, कै फुट पर हमारा पानी है। फिर मिट्टी पानी की जाँच हमने करवानी ज़रूरी है क्योंकि पानी हमारे पास जो हम बाग की योजना बना रहे हैं किस तरह का हमारे पास पानी है, और फिर जिस तरह का हमारे पास पानी है तो भैया कौन सा बाग हम लगा रहे हैं, नींबू का है, किन्नू का है, माल्टा का है और जो भी अन्य प्रकार का हम बाग लगा रहे हैं कोई, तो इस हिसाब से हमने जो है योजना बना के चलनी पड़ेगी। और जड़ती मिट्टी की बात आओ है, मिट्टी ने भी यो देखा हाँ कि भाई मिट्टी हमारे पास कितनी है, कितनी गहराई पर है, कोई झांझड़ा या कोई डला की मिट्टी तो नहीं है, कोई रेतीली मिट्टी है या फिर कितने नीचे करड़ी ज़मीन है, कितने चोवा ऊपर तो नहीं है, बहुत सी बातें इसमें आ जाएँ तो ये हमने ध्यान जरूर करना पड़ेगा। रूपरेखा हम पहले तैयार करवाओ भाई कौन सी साइड से हमारा बाग लगाना शुरू होगा, कौन सा बाग हमने लगाना है, बागवानी विभाग तक हम संपर्क जरूर करें ताकि कोई सरकारी अनुदान है, सरकारी सहायता है किसान भैया ने वो ज़रूर मिल पावे। तो आज भाई कार्यक्रम का समय थोड़ा है, भैया ने रागनी सुनवाऊंगे बाली शर्मा और साथियों की गाई हुई।
1: कम समय में ज्यादा मुनाफा, बस एक क्लिक में, कमाल है।
2: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए, आरबीआई कहता है
3: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
4: लाइफ फास्ट मोड पे चल रही है, घर बैठे बैंकिंग सुविधा के लिए स्विच टू SBI प्रीमियर बैंकिंग, जहां आपको मिलता है एक डेडिकेटेड वर्चुअल रिलेशनशिप एसोसिएट जो समझे आपकी हर जरूरत, दे स्मार्ट एडवाइजर्स और करे हर काम इन लाइटनिंग स्पीड, यानी सिर्फ सीमलेस बैंकिंग एंड मेनी अदर एक्साइटिंग बेनिफिट्स। आज ही विजिट करें अपनी नियरेस्ट SBI ब्रांच और प्रीमियर बैंकिंग एक्टिवेट करें, टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई।
5: तेरे अपनी अकली पास में कोन्या, तू कित का छतरी

तेरिया ने भरमाए दो दो ब्याह करवा करवा के पाछे के सुख पाए चित्र क्या तू

मामा सुरियारी पारा सरचे मुनि उदल के न्यारे जमदगनी के परसराम हरी ठगलिए बन के प्यारे श्री कृष्णी कुब जान मोहे जो योगी।

तो ये सुनी भैया ने बाली शर्मा और साथियों की गाई हुई रागनी। और भाई आज दिन बुधवार का था और कार्यक्रम का समय आज 15 मिनट का था। तो भाई देखेंगे घड़ी का, इसी के साथ कार्यक्रम का समय हो रहा है समाप्त। चलेंगे सारे बण भैया ने, राम राम।

प्यारे श्रोताओं नमस्कार। कार्यक्रम हमारी बेड़िया में मैं प्रियंका आप सबका स्वागत करती हूँ। आशा है कि आप सब अपने परिवार के साथ खुश और आनंदित होंगे। दोस्तों, इससे पहले हम अपने प्रोग्राम को आगे बढ़ाएं, आप हमारा नंबर लिख लीजिए। हमारा नंबर है

0: 8527449955। जी हाँ श्रोता, नंबर एक बार दोबारा नोट कर लीजिए, 8527449955।
1: इससे बड़ा प्रेम और कुछ नहीं कि कोई दोस्त अपने दोस्त के लिए, उसकी दोस्ती के लिए अपना प्राण दे दे। जैसे तेल और खुशबू से, वैसे ही एक दोस्त के दिल की अच्छी दोस्ती और साथ से दोस्त का मन आनंदित हो जाता है। तो दोस्तों, आज हम एक बहुत ही प्यारे विषय में प्रोग्राम लेके आए हैं। जी हाँ, एक बहुत ही सुंदर रिश्ता दोस्ती का, दोस्ती जो जीवन को महका देती है, या यूं कहें कि जीवन को आसान कर देती है। दोस्ती, दोस्ती नाम है शरारत का, मुस्कुराहट का, उम्र भर की चाहत का। दोस्ती एक एहसास है, न भूल सको वो ख्वाब है, कभी यादों में कभी ख्वाबों में, वो हर कहीं मिल जाता है। कोई आए ना आए, दोस्त हर मुसीबत में दौड़ा चला आता है। दोस्ती सुकून है जो हमें हर तकलीफ से निजात दिलाता है। दुख की तपन में दोस्त शीतल बयार बनकर आता है। कभी छेड़छाड़ कभी इकरार, हर दिन की तकरार, मगर दिलों में है प्यार, दोस्ती इसी का नाम है सरकार। जी हाँ दोस्तों, दोस्ती बहुत ही खास और गहरा रिश्ता है, और हम सबके जीवन में ये रिश्ता होता ही है, या हम सब इस रिश्ते को अपनी जिंदगी में चाहते हैं। पर दोस्तों, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि सच्चे मित्र हीरे की तरह कीमती और दुर्लभ होते हैं, जो आसानी से नहीं मिलते, और अगर मिल जाते हैं तो हमको इसको बहुत संभाल कर सहेज कर रखना चाहिए। हमको इस रिश्ते की कदर करनी चाहिए। कुछ भी हो, हमको बस अपने दोस्त के लिए वफादार रहना चाहिए। कई बार ऐसा वक्त आता है कि हमारी जिंदगी में, हम जिंदगी में उलझ रहे होते हैं और जिंदगी में हार रहे होते हैं, और आसपास कोई ऐसा नहीं दिखता जिसको हम अपने दिल की बात बता सकें। और ऐसे वक्त पर अगर कोई होता है जहां हम सहज महसूस करें, तो वो होता है दोस्त का साथ। और आज ऐसे ही एक प्यार भरे रिश्ते की कहानी लेकर मैं आई हूँ। ऐसी दोस्ती जो अद्भुत थी, जहाँ प्यार, विश्वास सब कुछ था, जहाँ सिर्फ एक दूसरे का होना ही सब कुछ था। जी हाँ दोस्तों, बड़े ध्यान से सुनिएगा।

बार की बात है, एक राजा था जिसका नाम सुमा था। काफी बड़ा राज्य था उसका। उसके बड़े बेटे का नाम जीवा था। बहुत सुंदर, योग्य, हर बात में उत्तम था। राजा का बड़ा बेटा था तो आगे चलकर आने वाला राजा उसी को होना था। और उसी राज्य में एक लड़का था जिसका नाम देव था। वह एक चरवाहा था और वीणा बजाता था। एक बार की बात है, इस राज्य में एक दिन संकट आ गया। एक दुश्मन ने इस राज्य में हमला कर दिया और वह दुश्मन इतना खतरनाक था कि कोई भी उससे युद्ध करने को नहीं जा पा रहा था। राजा की हिम्मत भी नहीं थी कि वह उससे युद्ध करे, और ना ही प्रजा के किसी इंसान में हिम्मत थी कि कोई जाकर उससे युद्ध करे। सब डरे हुए थे। तब देव को पता चला, वो चरवाहा था और अपने घर में सबसे छोटा था। उसके बड़े भाई भी राजा की सेना में ही थे, पर पूरे राज्य में किसी के अंदर युद्ध करने का साहस नहीं था। तब ये बात देव तक पहुंची और देव ने राजा से कहा कि वह युद्ध करने को जाएगा। राजा ने और सब ने उसको बहुत मना किया और कहा कि वह अभी छोटा है और ना ही उसे युद्ध की समझ है, और जिससे युद्ध करना है वो तो बहुत बड़ा योद्धा है। तब देव ने कहा कि वह रोज जंगल में अपनी भेड़ बकरियों को चराने जाता है और वहां पर कई बार वो जंगली जानवरों से अपनी भेड़ बकरियों की रक्षा करता है। तब समय आया कि राजा ने देव की बात मान ली और देव ने उस दुश्मन को मार गिराया। और हुआ यूं कि वह देव देखते देखते सबका चहेता हो गया और राजा का बड़ा बेटा जीवा देव को अच्छा मानने लगा और धीरे धीरे उन दोनों में दोस्ती हो गई और जीवा देव को बेहद प्यार करने लगा। वो राजा का बेटा था और देव चरवाहा था, पर दोनों के बीच बेहद प्यार था। तब ऐसा हुआ कि प्रजा के बीच देव काफी ज्यादा प्रसिद्ध हो गया था और यह देखकर राजा को अच्छा नहीं लगा और राजा को देव से जलन होने लगी। दूसरी तरफ जीवा और देव की दोस्ती बहुत ही गहरी होती जा रही थी। कुछ समय बीतता गया और राजा के अंदर की जलन बढ़ती गई, क्योंकि राज्य के लोगों के लिए देव एक नायक के समान हो गया था। तो राजा की ईर्ष्या और क्रोध देव के लिए इतना ज्यादा हो गया कि राजा ने देव को मार डालने का निश्चय किया। और राजा देव को मारने का बार बार प्रयत्न करने लगा और हर बार देव बच जाता था। राजा का बेटा जीवा देव को सब कुछ बता देता था। जो भी उसका पिता योजनाएं बनाता था देव को मारने के लिए, जीवा सब कुछ देव को बता देता था। जीवा ने अपनी तलवार, अपने राजकीय वस्त्र, अपना धनुष, सब कुछ देव को दे दिया और दोनों ने वादा किया कि चाहे कुछ भी हो जाए वो दोनों हमेशा दोस्त रहेंगे। कुछ भी हो जाए, हालात कुछ भी क्यों ना हो, उनकी ये दोस्ती कभी नहीं टूटेगी। एक दिन राजा ने अपने बेटे जीवा को बुलाकर कहा कि वे देव को मार डाले, पर जीवा ने ऐसा नहीं किया और उल्टा राजा से वचन ले लिया कि वह देव को कुछ नहीं करेंगे। पर एक दिन राजा ने सेना भेज दी देव को मारने के लिए और देव वहां से भाग गया। तब देव ने और जीवा ने गुप्त में एक बैठक की और उस गुप्त बैठक में दोनों ने मिलकर एक दूसरे से वादा किया कि कुछ भी हो पर वो दोनों एक दूसरे के लिए हमेशा वफादार रहेंगे, एक दूसरे के परिवार पर दया करेंगे और एक दूसरे के परिवार की हिफाजत करेंगे। तब देव के पास राजा के घर से दावत का निमंत्रण आया, क्योंकि देव राजा के सेना में था। देव को राजा के उस भोज में शामिल होना था। तब देव ने और जीवा ने तय किया कि जीवा अपने घर जाकर पता लगाएगा कि कहीं भोज में देव की जान को खतरा तो नहीं है, और अगर हुआ तो देव को जीवा सब कुछ बता देगा। तब भोज का समय निकट आया और देव भोज में नहीं गया। तब राजा ने पूछा कि देव क्यों नहीं आया। तब जीवा ने राजा को कुछ बहाना बता दिया। तभी राजा क्रोधित हुआ और राजा का सारा क्रोध जीवा पर निकला। राजा ने अपने बेटे से कहा कि तुम क्यों नहीं समझते हो कि जब तक देव जिंदा है तुम राजा नहीं बन सकते,
प्रजा के अंदर देव के लिए प्यार है, और देव के होते हुए तुम कभी राजा नहीं बन पाओगे। इसलिए जाओ और देव को लेकर आओ ताकि मैं उसको मार दूं। तब जीवा ने कहा, आप क्यों देव को मारना चाहते हैं? तब क्रोध में राजा ने अपने बेटे के ऊपर ही भाला फेंक दिया, पर जीवा बच गया। तब जीवा को समझ आ गया कि देव की जान को खतरा है, और जीवा वहां से चला गया और उसने जाकर देव को सब कुछ बता दिया और देव से कहा कि उसकी जान को खतरा है और वो वहां से भाग जाए। दोस्तों, तब दोनों ने एक दूसरे को गले लगाया और वे बहुत रोए। तब जीवा ने देव से कहा कि तुम यहां से भाग जाओ, पर हमारी दोस्ती ऐसी ही रहेगी। ईश्वर तुम्हारे और मेरे वंश के बीच में हमेशा रहेगा। तब दोनों ने एक बार और एक दूसरे को गले लगाया और वो दोनों लिपट लिपट कर रोने लगे। और फिर देव वहां से दूर सुरक्षित जगह पर चला गया और जीवा अपने घर वापस आ गया। तब कुछ वक्त के बाद अचानक फिर उस राज्य पर आक्रमण हुआ और युद्ध होने लगा। देव वहां नहीं था। तब उस युद्ध में राजा और उसके पुत्र मारे गए और जीवा भी उस युद्ध में मारा गया। तब देव तक ये समाचार गया। देव टूट गया, उसने अपने एक अच्छे सच्चे भाई जैसे दोस्त को खो दिया। तब देव ने उस इंसान को मार डाला जिसने राजा और उसके पुत्रों को मारा था।

तब उस देश का नया राजा देव को बनाया गया। और फिर देव ने सबसे पहले जीवा के परिवार से उसके बेटे को बुलाया और जितना कुछ राजा का था और जीवा का था सब कुछ उसको लौटा दिया और उसको अपने साथ अपने महल में रखा। और इस तरीके से देव ने अपने दोस्त से किया हुआ वादा पूरा किया। जी हाँ दोस्तों, कहते हैं ना, एक अनुभव कहता है कि एक वफादार दोस्त 1000 रिश्तेदारों से बेहतर होता है। जी हाँ, एक वफादार दोस्त 1000 रिश्तेदारों से बेहतर होता है। देखा दोस्तों, सिर्फ दोस्त कह देने से दोस्ती नहीं हो जाती। दोस्ती निभाने के लिए सच्चाई, वफादारी और अटूट प्यार का होना बहुत जरूरी है, विश्वास का होना बहुत जरूरी है, जैसा देव और जीवा के बीच में था। जीवा दोस्ती के कारण अपने पिता के खिलाफ चला गया क्योंकि उसको पता था कि देव सही है। जीवा को भी पता था कि देव के होते हुए जीवा कभी राजा नहीं बन सकता, पर फिर भी उसके लिए राजगद्दी जरूरी नहीं थी, अपना दोस्त जरूरी था। और बदले में देव ने अपना वचन पूरा किया और जीवा के परिवार की देखभाल की।

0: हाँ दोस्तों, आज हमको भी जरूरत है कि अगर हम दोस्ती करते हैं तो ऐसी पवित्रता होनी चाहिए हमारी दोस्ती में, विश्वास होना चाहिए हमारी दोस्ती में। किसी ने इस प्रकार कहा है कि दोस्ती करो तो ऐसी करो कि भगवान भी आपको दोस्त बनाना चाहे। तो दोस्तों, आशा है कि आपको हमारा ये प्रोग्राम पसंद आया होगा। आप सब भी आपके विचार, परामर्श, सुझाव या आपके सवाल हमको लिख सकते हैं। तो हमारा पता नोट करें। हमारा पता है कार्यक्रम हमारी बेड़ियां, पोस्ट बॉक्स नंबर 6, नई दिल्ली 1। और हमारा फोन नंबर है
1: 8527449955। जी हाँ श्रोताओ, नंबर एक बार दोबारा नोट कर लीजिए, 8527449955।
0: तो दोस्तों, ऐसे ही दोस्ती निभाते रहिए और अपने परिवार के साथ खुश रहिए। अब आपसे अगले प्रोग्राम में मुलाकात होगी, तब तक अपनी दोस्त प्रियंका को दीजिए आज्ञा, नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे प्रायोजित कार्यक्रम। मीडियम वेव 262.47 मीटर यानी 1143 किलोहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी का ये रोहतक केंद्र है। 3 बज चुके हैं। अब हमारी दूसरी प्रसारण सभा के कार्यक्रम यहीं संपन्न होते हैं। FM बैंड 103.5 MHz पर आप सुनते रहेंगे विविध भारती मुंबई के कार्यक्रमों का अनुप्रसारण। तीसरी सभा में शाम 5:30 पर मीडियम वेव 262.47 मीटर पर आपकी सेवा में फिर उपस्थित होंगे।

मिडन वेव 262.47 मीटर यानी 1143 किलो हर्ट्ज़ पर आकाशवाणी का ये रोहतक केंद्र है। स्टूडियो की घड़ी में शाम के 5:30 और 12 सेकेंड हुए हैं। अब हमारी आज की तीसरी सभा आरंभ होती है। सभा के आरंभ में आइए सुनते हैं कार्यक्रम युवा संसार।

0: युवा संसार सुन रहे सभी साथियों का आज के इस कार्यक्रम में स्वागत है। कार्यक्रम लेकर मैं हूं आज आपकी अपनी रेडियो दोस्त नंदिनी, और आप सभी को मेरा नमस्कार।
1: और आप सभी साथियों को आपके साथी दीपांशु का नमस्कार। साथियों, आज है 17 जून का दिन और आज के दिन मनाया जा रहा है मरुस्थलीकरण एवं अकाल से लड़ाई हेतु विश्व दिवस। साथियों, मरुस्थलीकरण और अकाल आज विश्व की बड़ी पर्यावरणीय समस्याओं में से एक है। बढ़ते तापमान, वनों की कटाई, जल की कमी और वहीं भूमि के गलत उपयोग के कारण उपजाऊ भूमि धीरे धीरे बंजर होती जा रही है। तो साथियों, इन समस्याओं के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए हर साल 17 जून के दिन मरुस्थलीकरण एवं अकाल से लड़ाई हेतु विश्व दिवस मनाया जाता है। अगर साथियों बात करें मरुस्थलीकरण होता क्या है, इसका क्या अर्थ है, तो आपको बता दें, उपजाऊ भूमि का धीरे धीरे खराब होकर रेगिस्तान जैसी स्थिति में बदल जाना ही मरुस्थलीकरण कहलाता है। इससे खेती प्रभावित होती है, जैव विविधता को नुकसान पहुंचता है और लोगों के जीवन पर भी संकट आता है। सूखे की स्थिति इस समस्या को और भी गंभीर बना देती है, और साथ में इस समस्या को हल करने के लिए हमें अधिक से अधिक पेड़ लगाने चाहिए, जल संरक्षण करना चाहिए और भूमि का सही उपयोग करना चाहिए। वर्षा जल संचयन, टिकाऊ खेती और इसके साथ पर्यावरण संरक्षण के प्रयासों से मरुस्थलीकरण और अकाल जैसी समस्याओं को कम किया जा सकता है।
0: जी बिल्कुल दीपांशु, आपने बिल्कुल सही कहा। वर्ल्ड डे टू कॉम्बैट डीसर्टिफिकेशन एंड ड्रॉट, ये दिन की शुरुआत संयुक्त राष्ट्र द्वारा वर्ष 1994 में की गई थी। इसका मुख्य उद्देश्य मरुस्थलीकरण, भूमि क्षरण और सूखे जैसी गंभीर पर्यावरणीय समस्याओं के प्रति जागरूकता फैलाना है। बढ़ती जनसंख्या, वनों की कटाई, जलवायु परिवर्तन और प्राकृतिक संसाधनों के अत्यधिक दोहन के कारण उपजाऊ भूमि बंजर होती जा रही है, जिससे खाद्य उत्पादन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है और अकाल जैसी स्थितियां उत्पन्न हो सकती हैं। इस दिवस पर वृक्षारोपण, जल संरक्षण, भूमि सुधार और सतत कृषि पद्धतियों को अपनाने का संदेश दिया जाता है। साथ ही साथियों, ये दिन हमें याद दिलाता है कि पृथ्वी के प्राकृतिक संसाधनों की रक्षा करना हम सभी की जिम्मेदारी है। यदि हम आज भूमि और जल का संरक्षण करेंगे तो आने वाली पीढ़ियों को एक सुरक्षित और समृद्ध पर्यावरण प्रदान कर सकेंगे। और एक बार फिर से हम कह सकते हैं दीपांशु, कि धरती हमारी विरासत नहीं बल्कि आने वाली पीढ़ियों से लिया गया उधार है।
1: बिल्कुल नंदिनी, और आइए साथियों बढ़ाते हैं कार्यक्रम को आगे। और आज है बुधवार का दिन और आज के दिन हम आपके लिए लेकर आए हैं कार्यक्रम करियर काउंसलिंग। और कार्यक्रम करियर काउंसलिंग के अंतर्गत आज हम आपको जानकारी देंगे अर्थशास्त्र के क्षेत्र में आप रोजगार कैसे प्राप्त कर सकते हैं।
0: जी बिल्कुल दीपांशु, और सबसे पहले हम अपने साथियों को बता दें कि इकोनॉमिस्ट होता क्या है। तो आपको बता दें कि अर्थशास्त्री वो व्यक्ति होता है जो अर्थव्यवस्था, धन, व्यापार, उत्पादन, उपभोग तथा संसाधनों के वितरण का अध्ययन करता है। वो आर्थिक समस्याओं का विश्लेषण करके उनके समाधान सुझाता है और देश की आर्थिक नीतियों के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जी हाँ साथियों, अर्थशास्त्री महंगाई, बेरोजगारी, गरीबी, आर्थिक विकास और बाजार की गतिविधियों का अध्ययन करते हैं। उनके सुझावों से सरकारों और संस्थाओं को बेहतर आर्थिक निर्णय लेने में सहायता मिलती है। और एक बार हम फिर से आपको बता दें कि इकोनॉमिस्ट वो विशेषज्ञ होता है जो अर्थव्यवस्था के विभिन्न पहलुओं का अध्ययन कर समाज और देश के अधिक विकास के लिए मार्गदर्शन प्रदान करता है।
1: और साथ ही अर्थशास्त्र वस्तुओं के निर्माण, परिवहन और उपयोग का अध्ययन है। यह इस बात की पड़ताल करता है साथियों कि राष्ट्र, व्यवसाय, व्यक्ति और सरकारें अपने संसाधनों का उपयोग कैसे करती हैं। महत्वपूर्ण कारकों, हितधारकों और विकल्पों का सटीक मॉडल बनाकर अर्थशास्त्री किसी भी निर्णय की संरचना में सहायता करते हैं। अर्थशास्त्री साथियों वित्तीय बाजारों, संसाधन और नीति निर्माण पर गहन जानकारी प्रदान करने के लिए जो है डेटा और इकोनॉमिकल ट्रेंड्स का विश्लेषण करते हैं, यानी उनको एनालाइज करते हैं। और इस प्रतिष्ठित पेशे के लिए व्यापक उच्च शिक्षा, मजबूत एनालिटिकल स्किल्स और इसके साथ ही आर्थिक विकास जैसे क्षेत्रों में विशेषज्ञता होनी आवश्यक हो जाती है। इस करियर मार्ग पर विचार कर रहे छात्रों के लिए शैक्षिक आवश्यकताओं और कौशल विकास प्रक्रियाओं को समझना निर्णय लेने के लिए आवश्यक है। इसलिए आज हम इस क्षेत्र में सफलता के लिए आवश्यक शैक्षणिक योग्यता, कौशल और अनुभव के माध्यम से अर्थशास्त्री आप कैसे बन सकते हैं, इसी बारे में आपको जानकारी देंगे। और आइए साथियों, अब सुनते हैं तेरे नाम फिल्म से गीत, गाया है उदित नारायण और अलका याग्निक ने। गीतकार हैं समीर और संगीत दिया है हिमेश रेशमिया ने।

0: साथ में अभी आपने सुना तेरे नाम फिल्म से गीत गाया था उदित नारायण और अलका याग्निक ने, गीतकार थे समीर और संगीत दिया था हिमेश रेशमिया ने।
1: और दीपांशु, आज के इस कार्यक्रम में हम अपने साथियों से बात कर रहे हैं कि इकोनॉमिस्ट क्या होता है, और इससे पहले हमने अपने साथियों को इसी बारे में ही जानकारी दी थी, तो क्यों ना अब हम उनको बता दें कि इकोनॉमिस्ट कैसे बने। तो आपको बता दें कि अर्थशास्त्री बनने के लिए सबसे पहले 12वीं कक्षा उत्तीर्ण करनी होती है। विद्यार्थी आर्ट्स या कॉमर्स किसी भी संकाय से पढ़ाई कर सकते हैं, लेकिन इकोनॉमिक्स और मैथमेटिक्स विषय लेने से आगे की प्रक्रिया आसान हो जाती है। 12th के बाद विद्यार्थी बीए इकोनॉमिक्स या बीएससी इकोनॉमिक्स में प्रवेश ले सकते हैं, जो पाठ्यक्रम सामान्यतः 3 से 4 वर्ष की अवधि के होते हैं। इसमें साथियों आपको माइक्रो इकोनॉमिक्स, मैक्रो इकोनॉमिक्स, भारतीय अर्थव्यवस्था, स्टैटिस्टिक्स, इकोनोमेट्रिक्स, पब्लिक फाइनेंस तथा अंतर्राष्ट्रीय अर्थशास्त्र जैसे विषय पढ़ाए जाते हैं। स्नातक के बाद आप एमए या एमएससी इकोनॉमिक्स तथा शोध कार्य करके विद्यार्थी एक सफल अर्थशास्त्री बन सकते हैं। और अर्थशास्त्री देश की आर्थिक नीतियों, विकास योजनाओं, रोजगार, महंगाई तथा वित्तीय समस्याओं का अध्ययन कर उनके समाधान सुझाने का कार्य करते हैं।
0: बिल्कुल नंदिनी, आपने बताया कि शैक्षणिक योग्यता एक जो है क्या क्या चाहिए एक अर्थशास्त्री के रूप में अगर हम रोजगार प्राप्त करना चाहते हैं, और इसी के आगे हम बता देते हैं अपने साथियों की किसी भी क्षेत्र में अगर हम रोज़गार प्राप्त करना चाहते हैं तो उससे संबंधित जो कौशल हैं, जो स्किल्स हैं, वे हमारे पास होने चाहिए। तो इसी प्रकार जो है साथियों, अर्थशास्त्री के रूप में भी अगर आप रोज़गार प्राप्त करना चाहते हैं तो इसके लिए भी आपके पास कुछ जो कौशल होना आवश्यक है और कुछ स्किल्स आपको आनी चाहिए। तो इसी में अगर हम बात करें तो डेटा के साथ काम करने की और उन्हें समझने की क्षमता आपके पास होनी चाहिए। देश दुनिया की नई घटनाओं यानी करंट अफेयर्स में आपकी रुचि होनी चाहिए, उनके बारे में पता आपको होना चाहिए और उनके क्या प्रभाव हैं, उनके प्रभाव को समझने की क्षमता आपके पास होनी चाहिए। सही तरीके से सोचने और समस्याओं का समाधान निकालने की क्षमता आपके पास होनी चाहिए अगर आप एक सफल अर्थशास्त्र में रोज़गार प्राप्त करना चाहते हैं। और इसी के साथ गणित की अच्छी समझ होनी चाहिए, आपको एनालिसिस करने की क्षमता आपके पास होनी चाहिए, और इसके अलावा उद्योग से जुड़ी सोच और भविष्य की संभावनाओं को स्पष्ट रूप से समझाने की भी क्षमता आपके पास होनी चाहिए, क्योंकि आपको एक जो है टीम के साथ काम करना पड़ सकता है एक अर्थशास्त्री के रूप में।
1: जी बिल्कुल दीपांशु, आपने बिल्कुल सही कहा, और कौशल वो शक्ति है जो सपनों को हकीकत में बदल देती है, और ज्ञान आपको दिशा देता है लेकिन कौशल आपको मंजिल तक पहुंचाता है। और कार्यक्रम में अब आपको सुनवाते हैं साथियों कार्यक्रम का अगला गीत, जो है फिल्म अपनापन से। आवाज़ें हैं लता मंगेशकर और मोहम्मद रफ़ी की, गीत के बोल लिखे हैं आनंद बख्शी ने और संगीत दिया है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने।

0: साथियों, अभी आपने सुना ये प्यारा सा गीत जो था फिल्म अपनापन से। आवाज़ें थी लता मंगेशकर और मोहम्मद रफ़ी की। गीत के बोल लिखे थे आनंद बख्शी ने और संगीत दिया था लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। और कार्यक्रम में आगे बात कर लेते हैं कि आखिर अर्थशास्त्री के प्रोज एंड कॉन्स क्या हो सकते हैं। तो आपको बता दें कि अर्थशास्त्री का कार्य समाज और देश की आर्थिक प्रगति में महत्वपूर्ण योगदान देना होता है। इस क्षेत्र में सम्मानजनक करियर और अच्छे वेतन की संभावनाएं होती हैं। अर्थशास्त्री सरकारी विभागों, बैंकों, विश्वविद्यालयों तथा अंतर्राष्ट्रीय संगठनों में कार्य कर सकते हैं। उन्हें देश की आर्थिक नीतियों और विकास योजनाओं में योगदान देने का अवसर मिलता है। ये पेशा बौद्धिक रूप से चुनौतीपूर्ण और ज्ञानवर्धक हो सकता है, जिससे व्यक्ति की विश्लेषणात्मक क्षमता विकसित होती है। वहीं दूसरी तरफ बात करें तो अर्थशास्त्री बनने के लिए लंबे समय तक अध्ययन और शोध करना पड़ता है। इस क्षेत्र में गणित, सांख्यिकी और डेटा विश्लेषण की अच्छी समझ आवश्यक होती है, जो कुछ विद्यार्थियों के लिए चुनौतीपूर्ण हो सकती हैं। अधिक परिस्थितियों में लगातार बदलाव होने के कारण अर्थशास्त्रियों को निरंतर नई जानकारियां सीखनी पड़ती हैं। कई बार जटिल आर्थिक समस्याओं का समाधान ढूंढना तनावपूर्ण भी हो सकता है।
1: और आइए साथियों, अब आपको बता दें कि आप अगर एक अर्थशास्त्री के रूप में कार्य करते हैं, अगर रोज़गार प्राप्त करते हैं, तो आपको क्या क्या जो है कार्य करने होंगे और क्या क्या आपके पास जिम्मेदारियाँ होंगी। तो इकोनॉमिस्ट आर्थिक समस्याओं पर शोध करते हैं साथियों, और उन्हें समझने के लिए रिपोर्ट तैयार करते हैं। और इसके अलावा वे वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन, वितरण और पैसों से जुड़ी नीतियों का अध्ययन करते हैं। और साथियों, डेटा को कलेक्ट और एनालाइज करना और बाज़ार के भविष्य के रुझानों का अनुमान लगाना, ये भी एक कार्य होता है जो आपको करना होगा इकोनॉमिस्ट के रूप में। और गणितीय मॉडल और सांख्यिकी की मदद से आर्थिक स्थिति का अध्ययन करते हैं। उत्पादन और उपभोग में होने वाली परिवर्तनों के आधार पर भविष्य की संभावनाओं का अनुमान जो है इकोनॉमिस्ट को लगाना होता है। इसके अलावा अगर हम बात करें साथियों, तो आर्थिक समस्याओं को हल करने के लिए योजनाएं, पॉलिसीज़ और सुझाव तैयार करते हैं। आर्थिक विषयों पर शोध करके उसके निष्कर्ष रिपोर्ट या लेखों के रूप में प्रकाशित करते हैं। और इनके अलावा अर्थशास्त्रों के सिद्धांतों और तरीकों को छात्रों को पढ़ाते हैं, अगर वे एक प्रोफेसर के रूप में जो है कार्य करते हैं। और साथियों, कंपनियों, सरकार और अन्य संसाधनों को आर्थिक मामलों में सलाह देते हैं इकोनॉमिस्ट। और इसके अलावा आर्थिक नियम और दिशा निर्देश बनाने में मदद करते हैं। ये कुछ ऐसी जिम्मेदारियाँ हैं, कुछ ऐसे कार्य हैं जो अर्थशास्त्र के रूप में अगर आप रोज़गार प्राप्त करते हैं तो आपको करने होंगे।
0: जी बिल्कुल दीपांशु, और रोज़गार की बात अगर हम कर ही रहे हैं तो अब अपने साथियों को जानकारी दे देते हैं कि इस विषय में उनके लिए करियर अपॉर्चुनिटीज़ क्या हो सकती हैं। तो आपको बता दें कि अर्थशास्त्र की पढ़ाई पूरी करने के बाद विद्यार्थियों के लिए अनेक करियर अवसर उपलब्ध होते हैं। वो सरकारी विभागों, बैंक्स, वित्त मंत्रालय तथा अन्य सरकारी संस्थानों में इकोनॉमिस्ट के रूप में कार्य कर सकते हैं। निजी क्षेत्र में वो डेटा एनालिस्ट, फाइनेंशियल एनालिस्ट, मार्केट रिसर्च एनालिस्ट, पॉलिसी एडवाइज़र और इकोनॉमिक कंसल्टेंट के रूप में कार्य कर सकते हैं। उच्च शिक्षा और शोध में रुचि रखने वाले विद्यार्थी प्रोफेसर या रिसर्चर भी बन सकते हैं। अर्थशास्त्र का क्षेत्र व्यापक है और इसमें देश की आर्थिक नीतियों तथा विकास में योगदान देने के साथ साथ उत्कृष्ट करियर और उन्नति के अवसर भी आपको प्राप्त हो सकते हैं।
1: बिल्कुल नंदिनी, और अगर इन बातों पर हम ध्यान देते हैं तो हमें परिणाम मिलता है कि आज के समय में इकोनॉमिस्ट का करियर जो है तेजी से बढ़ रहा है। और साथ ही देश और दुनिया की अर्थव्यवस्था को समझने, नीतियाँ बनाने और भविष्य की आर्थिक स्थिति का अनुमान लगाने के लिए इकोनॉमिस्ट की ज़रूरत होती है। सरकार, बैंक, कंपनियाँ, रिसर्च संस्थान और अंतर्राष्ट्रीय संगठन अच्छे इकोनॉमिस्ट की मांग करते हैं। इस क्षेत्र में डाटा एनालिसिस, स्टेटिस्टिक्स, रिसर्च और इकोनॉमिक ट्रेंड्स को समझने की क्षमता रखने वाले लोगों के लिए कई अवसर हैं। बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था, व्यापार और वित्तीय क्षेत्र के विस्तार के कारण इकोनॉमिस्ट के लिए रोज़गार के अवसर खुल रहे हैं। इस प्रकार अच्छी शिक्षा, गणितीय ज्ञान और एनालिटिकल स्किल्स के साथ इस क्षेत्र में आप जो है एक सफल और सम्मानजनक करियर बना सकते हैं।
0: जी बिल्कुल दीपांशु, और करियर का चुनाव व्यक्ति के जीवन का एक अत्यंत महत्वपूर्ण निर्णय होता है, क्योंकि यही उसे उसके भविष्य, आर्थिक स्थिति, सामाजिक पहचान तथा व्यक्तिगत संतुष्टि को निर्धारित करता है।
1: बिल्कुल निंदनीय। और अगर हम बात करते हैं कि अगर हम रोज़गार प्राप्त करते हैं, अपना करियर बनाना चाहते हैं इकोनॉमिस्ट के क्षेत्र में, तो साथियों आपको बता दें कि अर्थशास्त्री बनना मेहनत और लगन का काम है। सही दिशा में तैयारी करने से यह कठिन नहीं रहता। इसके लिए इकोनॉमिक्स, गणित, स्टेटिस्टिक्स और वर्तमान आर्थिक घटनाओं की अच्छी तरह समझ होना जरूरी है। एक अच्छे अर्थशास्त्री को डेटा का विश्लेषण करना, समस्याओं को समझना और उनके समाधान के लिए सुझाव देना आना चाहिए। और वहीं अभी हमने आपको बताया भी कि उच्च शिक्षा, लगातार सीखने की आदत और विश्लेषण करने की क्षमता से इस क्षेत्र में आप सफलता प्राप्त कर सकते हैं। इस प्रकार अर्थशास्त्री बनना चुनौतीपूर्ण तो है, लेकिन रुचि और मेहनत के साथ यह एक बेहतर करियर विकल्प बन सकता है।
0: जी बिल्कुल दीपांशु, आपने बिल्कुल सही कहा, क्योंकि सही करियर का चुनाव व्यक्ति को अपने कार्य में आनंद, आत्मविश्वास और सफलता प्रदान करता है, जबकि बिना सोच समझ कर लिया गया निर्णय असंतोष और कठिनाइयों का कारण बन सकता है। वर्तमान समय में विज्ञान, वाणिज्य, कला, प्रौद्योगिकी, चिकित्सा, शिक्षा, कानून, पत्रकारिता और डिजिटल क्षेत्र जैसे अनेक करियर विकल्प उपलब्ध हैं। इसलिए विद्यार्थियों को अपने लक्ष्य स्पष्ट करने चाहिए, विशेषज्ञों से मार्गदर्शन लेना चाहिए तथा विभिन्न क्षेत्रों की जानकारी प्राप्त करनी चाहिए। करियर का चुनाव केवल अधिक आय प्राप्त करने के उद्देश्य से नहीं, बल्कि अपनी प्रतिभा और रुचि के अनुरूप होना चाहिए। एक सफल करियर व्यक्ति को आत्मनिर्भर बनाता है और राष्ट्र के विकास में भी योगदान देने का अवसर प्रदान करता है। इसलिए करियर का चयन सोच समझकर, आत्मविश्लेषण और उचित जानकारी के आधार पर करना चाहिए, क्योंकि ऐसा अब्राहम लिंकन ने भी कहा है दीपांशु, कि अपने भविष्य की भविष्यवाणी करने का सबसे अच्छा तरीका है उसे स्वयं बनाना। और साथियों अब आपको बता दें कि करियर का सही चुनाव जीवन की सफलता की पहली सीढ़ी है, क्योंकि अपनी रुचि, योग्यता और लक्ष्य के अनुसार चुना गया करियर व्यक्ति को ना केवल सफलता दिलाता है, बल्कि उसे एक संतुष्ट और सार्थक जीवन जीने की प्रेरणा भी देता है।
1: बिल्कुल नंदिनी, करियर का चुनाव जीवन के सबसे महत्वपूर्ण निर्णयों में से एक हो जाता है, क्योंकि यह केवल आज की जरूरतों को ही नहीं बल्कि हमारे पूरे भविष्य को प्रभावित करता है। सही करियर हमें न केवल आर्थिक स्थिरता प्रदान करता है, बल्कि हमारे व्यक्तित्व के विकास, आत्मसंतोष और जीवन की खुशियों का आधार बनता है। इसलिए यह निर्णय सोच समझकर, अपनी रुचियों के अनुसार, अपनी क्षमताओं के अनुसार और परिस्थितियों को ध्यान में रखकर लेना चाहिए। और साथियों समय हो गया है कार्यक्रम समाप्त करने का। मिलेंगे किसी अन्य कार्यक्रम में, होती रहेगी मुलाकात। सुनते रहिएगा कार्यक्रम युवा संसार। नमस्कार, नमस्कार।

0: अभी आपने सुना कार्यक्रम युवा संसार। मीडियम वेव 262.47 मीटर यानी 1143 किलो हर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये रोहतक केंद्र है। स्टूडियो की घड़ी में शाम के 6 बजने को हैं। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे हिंदी में समाचार। हिंदी में समाचार प्रसारित किए जाएंगे दिल्ली केंद्र से।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फ्रांस के एवियों में G7 शिखर सम्मेलन में एक महत्वपूर्ण कार्य सत्र में आज कहा कि अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थाओं को ऐसे तंत्र विकसित करने चाहिए जो विकासशील देशों को आर्थिक मजबूती प्रदान करें। सत्र का विषय था सभी के लिए संतुलित, समावेशी और सतत आर्थिक वृद्धि को बढ़ावा देना। श्री मोदी ने अफ्रीका, लैटिन अमरीका और प्रशांत द्वीप देशों को जोड़ने वाली संपर्क परियोजनाओं का भी प्रस्ताव रखा। उन्होंने संपर्क और व्यापार में तेजी लाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय आवागमन भागीदारी तैयार करने का भी सुझाव दिया। इसके अंतर्गत G7 देशों की पूंजी, भारतीय प्रतिभाओं और ग्लोबल साउथ के देशों को एक साथ लाया जा सकता है। श्री मोदी ने कहा कि ठोस वृद्धि से समावेशन और लोगों के कल्याण को मजबूती मिलती है। उन्होंने सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के मूल मंत्र के साथ भारत की विकास गाथा के बारे में भी बताया। इसके अलावा श्री मोदी सुरक्षित, त्वरित और प्रभावी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर केंद्रित एक कार्यसत्र में भी शामिल हुए। इसमें G7 सदस्य देशों, सहभागी देशों और प्रमुख आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कंपनियों के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों ने डिजिटल नवाचार के भविष्य के बारे में चर्चा की। सम्मेलन से अलग प्रधानमंत्री मोदी ने यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला फॉन डेर लेयन तथा जर्मनी के चांसलर फ्रेडरिक मर्ट्ज के साथ द्विपक्षीय बैठकें की। प्रधानमंत्री मोदी ने जर्मनी के चांसलर फ्रेडरिक मेर्ट्ज के साथ भी द्विपक्षीय बैठक की। श्री मोदी ने कहा कि बातचीत बहुत लाभकारी रही। दोनों नेताओं ने व्यापार, निवेश, अर्थव्यवस्था, रक्षा, सूचना प्रौद्योगिकी और अन्य क्षेत्रों में सहयोग के माध्यम से द्विपक्षीय सहयोग को और मजबूत करने पर चर्चा की। श्री मोदी ने दोनों देशों के बीच सांस्कृतिक संबंधों को प्रगाढ़ करने के पर भी बातचीत की। इस बीच प्रधानमंत्री मोदी और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच आज शाम होने वाली द्विपक्षीय बैठक पर सभी की नजरें लगी हैं। हमारे संवाददाता ने बताया है कि बैठक के दौरान विभिन्न क्षेत्रों में परस्पर सहयोग मजबूत करने तथा आपसी हित के क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर विचार विमर्श हो सकता है।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की यह द्विपक्षीय बैठक काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही है। उम्मीद है कि इस बैठक में पश्चिम एशिया संकट पर प्रमुखता से बात होगी। यह बातचीत ऐसे समय में हो रही है जब अमेरिका और ईरान ने युद्ध खत्म करने और हॉर्मुज जलडब्रू मध्य को फिर से खोलने के लिए एक समझौता तय किया है। अब तक हुए काम को लेकर भी चर्चा होने की उम्मीद है। भारत इस दौरान ऊर्जा सुरक्षा के अहम मुद्दे पर भी बात कर सकता है। इन महत्वपूर्ण मुद्दों के साथ साथ दोनों नेताओं के बीच व्यापार से जुड़े सभी पहलुओं पर भी विस्तार से चर्चा होने की उम्मीद है। अंकित कुमार, आकाशवाणी समाचार, एवियो, फ्रांस।
1: प्रधानमंत्री

मैच का आंखों देखा हाल आप सुनेंगे शाम 6:30 बजे से मैच की समाप्ति तक, जिसे दिल्ली केंद्र से रिले किया जाएगा। सरकार के 12 वर्ष विषय पर समाज सेवा प्रभाग द्वारा प्रसारित एक विशेष श्रृंखला आप सुनेंगे रात 11 बजे। वार्ताकार होंगे आंतरिक सुरक्षा विशेषज्ञ CRPF के पूर्व वरिष्ठ अधिकारी। यह कार्यक्रम भी दिल्ली केंद्र से रिले किया जाएगा। शाम 6:20 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम कृषि जगत। ये थे हमारे आज के शीर्ष कार्यक्रम और अब कल के कुछ प्रमुख आकर्षण। सरकार के 12 वर्ष पूरे होने से संबंधित विभिन्न विषयों पर एक विशेष श्रृंखला विरासत आप सुनेंगे कल शाम 7:10 पर। वार्ताकार होंगे गजेंद्र सिंह शेखावत, संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री। कंट्री वाइड सुनेंगे रात 9:30 बजे और इनसाइट्स और 9:45 पर। ये सभी कार्यक्रम दिल्ली केंद्र से रिले किए जाएंगे। साप्ताहिक समीक्षा प्रसारित की जाएगी शाम 6:30 बजे, जिसे चंडीगढ़ केंद्र से रिले किया जाएगा। कल सुबह 6:50 पर कृषि की बातों में जानकारी दी जाएगी मूली की काश्त विषय पर। कल प्रातः 7:15 पर आप सुनेंगे हिंदी वार्ता, विषय रहेगा योग के शारीरिक व मानसिक लाभ। वार्ताकार होंगे श्री परविंदर सिंह। सुबह सवेरे यह कार्यक्रम आप सुन सकते हैं प्रातः 7:25 पर। प्रायोजित कार्यक्रम प्रसारित किया जाएगा कल दोपहर 12:30 बजे। शाम 6:20 पर कृषि जगत कार्यक्रम में डॉक्टर महक से बातचीत का विषय रहेगा गवार की सब्जी और दाने के लिए काश्त। इसके अलावा शाम 7:00 बजे ग्रामीण संसार कार्यक्रम में आप सुनेंगे डॉक्टर देवेंद्र खुराना से बातचीत, विषय रहेगा योग की क्रियाओं का स्वास्थ्य पर प्रभाव। कल दोपहर 2:30 पर खेत खलिहान कार्यक्रम में चर्चा का विषय रहेगा सब्जी फसलों में कीट नियंत्रण। लोक संगीत में कल सुबह 8:30 पर कलाकार होंगे रतन लाल। हेलो रोहतक फोन इन कार्यक्रम पर आधारित ये कार्यक्रम आप सुनेंगे कल सुबह 9:00 बजे। चित्रपट संगीत सुनेगा दोपहर 1:10 पर। फिल्म संगीत हम आपको सुनवाएंगे शाम 7:45 पर। एक फिल्म से कार्यक्रम प्रसारित किया जाएगा रात 9:15 पर और सुगम संगीत कार्यक्रम का समय रहेगा रात 8:25 का। अभी आप सुन रहे थे हमारे केंद्र से आज और कल प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की रूपरेखा। लीजिए सुनिए कुछ गुमशुदा व्यक्तियों के बारे में सूचना। कदम पुत्र सिठावली जो कि सोनीपत से लापता हैं, इनका हुलिया इस प्रकार है, रंग गेहूँ लंबूतरा चेहरा है, हरियाणी और हिंदी भाषा जानते हैं। अगर इनके बारे में कोई भी जानकारी हो तो आप थाना जिला सोनीपत को इनकी जानकारी दे सकते हैं। लीजिए सुनिए अन्य सूचना। पवन कुमार पुत्र मोहन सिंह जो कि सोनीपत से लापता है और इनका हुलिया इस प्रकार है, रंगी हुआ गोल चेहरा, हरियाणवी और हिंदी भाषा जानते हैं, उम्र 39 वर्ष है। अगर इनके बारे में कोई भी जानकारी हो तो आप थाना जिला सोनीपत को दे सकते हैं। अभी आप सुन रहे थे गुमशुदा व्यक्तियों के बारे में सूचनाएं। मिडिल वेव 262.47 मीटर यानी 1143 किलो हर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये रोहतक केंद्र है। स्टूडियो की घड़ी में शाम के 6:10 होने को हैं। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार। ये प्रादेशिक समाचार चंडीगढ़ केंद्र से रिले किए जाएंगे।

0: तनाव पैदा करने और उनकी एकाग्रता भंग करने का आरोप लगाया। केंद्रीय पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 2,60,00,000 हेक्टेयर भूमि को 2030 तक उपजाऊ बनाने के लक्ष्य को पूरा किया जाएगा। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने भिवानी के गुजरानी में 31 करोड़ रुपए की लागत से चौधरी बंसीलाल सिविल एरोड्रोम पर बने हैंगर, एयर ट्रैफिक कंट्रोल भवन, सुरक्षा चौकी व कैंटीन का उद्घाटन किया। मुख्यमंत्री ने बादली के गांव रैया में आधुनिक बागवानी अनुसंधान केंद्र तथा मुनीमपुर बादली में बीज उत्पादन प्रौद्योगिकी उत्कृष्टता केंद्र का शुभारंभ किया और हिसार में किसानों एवं पशुपालकों के लिए किसान यात्रा एवं पशुधन संवर्धन सम्मेलन में किसानों को अच्छी नस्ल के पशु पालने के लिए प्रोत्साहित किया गया। अब समाचार विस्तार से। भारतीय जनता पार्टी ने आज लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी पर नीट पुनर्परीक्षा से पहले छात्रों के मन में तनाव पैदा करने और उनकी एकाग्रता भंग करने का आरोप लगाया। भाजपा प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि सरकार इस परीक्षा को पूरी संवेदनशीलता और सतर्कता के साथ व्यवस्थित तरीके से आयोजित करने जा रही है।
1: मात्र 3 दिन के बाद नीट की परीक्षा दोबारा संपन्न होने जा रही। इस विषय को लेकर जहां एक तरफ सारे छात्र पूर्ण मनोयोग से परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, जहां एक तरफ सरकार संवेदनशीलता से काम करती हुई दिखाई पड़ रही है, वहीं कांग्रेस पार्टी और नेता प्रतिपक्ष श्री राहुल गांधी ऐसा प्रतीत हो रहा है कि संवेदनशीलता के स्थान पर कुटिलता का प्रयोग करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं।
0: पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहा है कि बंजर भूमि को दोबारा उपजाऊ बनाने की सरकार की कोशिशें न सिर्फ प्रकृति की सेवा हैं बल्कि मानवता के भविष्य को सुरक्षित करने का संकल्प भी हैं। नई दिल्ली में मरुस्थलीकरण और सूखे से निपटने के लिए वैश्विक दिवस के अवसर पर आयोजित एक कार्यक्रम में श्री यादव ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2,60,00,000 हेक्टेयर भूमि को उपजाऊ बनाने का लक्ष्य रखा है।
2: हम पूरी तरीके से अपने मंत्रालय की प्रतिबद्धता, माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो कॉप 2014 की दिल्ली डिक्लेरेशन के समय में करी थी कि हम 26 मिलियन हेक्टर को 2030 तक एक तरीके से रेस्टोरेशन का काम करेंगे। भारत सरकार अपने ग्रीन इंडिया मिशन में लगभग 1.7 लाख हेक्टर जमीन का कार्य हमने किया है और कैंपा के समर्थन से भी पिछले 5 वर्षों में 3.2 लाख हेक्टर का हम लोगों ने फॉरेस्टेशन करने का काम किया है।
0: हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने भिवानी के गुजरानी में 31 करोड़ रुपए की लागत से चौधरी बंसीलाल सिविल एरोड्रोम पर बने हैंगर, एयर ट्रैफिक कंट्रोल भवन, सुरक्षा चौकी व कैंटीन का उद्घाटन किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि हरियाणा हवाई संपर्क के क्षेत्र में तेजी से आगे बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि हवाई पट्टी पर बने इस हैंगर व एयर ट्रैफिक कंट्रोल भवन से जहाजों का सुरक्षित संचालन किया जा सकेगा और जहाजों के रखरखाव का कार्य भी आसान होगा।
3: हरियाणा सरकार ने 31 करोड़ रुपया खर्च करके हवाई अड्डे का विस्तार करने का काम किया है। यहाँ बना हैंगर, हवाई जहाज और हेलीकॉप्टरों के सुरक्षित संचालन, उनके नियमित रखरखाव तथा उड़ान प्रशिक्षण कार्यक्रमों को सुचारू रूप से चलाने में यह अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करेगा। साथ ही एक आधुनिक ATC टावर उड़ानों की सुरक्षा और उनके परिचालन के दक्षता को भी ये कई गुना बढ़ाने का काम करेगा। पायलट और सुरक्षा कर्मियों के लिए भी बनाई गई ये सुरक्षा चौकी तथा आधुनिक कैंटीन यहाँ आने वाले जो हमारे प्रशिक्षार्थी बच्चे हैं और कर्मचारी हैं, उनको सुगम और बेहतरीन वातावरण प्रदान करेगी।
0: उद्घाटन के उपरांत मुख्यमंत्री ने बताया कि भिवानी के चौधरी बंसीलाल एरोड्रोम पर 120 पायलट ने प्रशिक्षण पूरा किया है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हिसार हवाई अड्डे से चंडीगढ़, जयपुर व अयोध्या के लिए सीधी हवाई सेवा शुरू की थी, अब जम्मू, अहमदाबाद तथा दिल्ली के लिए विमान सेवा शुरू की जाएगी। उन्होंने कहा कि हिसार हवाई अड्डे के विकास के लिए यात्री टर्मिनल व कार्गो टर्मिनल का कार्य तेजी से किया जा रहा है। उसे 2027 पूरा कर इसे एक विकसित हवाई अड्डे का रूप दिया जाएगा। मुख्यमंत्री ने बताया कि विमानन क्षेत्र में अब विदेशों पर निर्भरता कम करने के लिए हिसार को मेंटेनेंस, रिपेयर एवं ओवरहॉल हब के रूप में विकसित किया जाएगा, जिससे इस क्षेत्र में रोजगार में वृद्धि होगी। वहीं इस मौके पर मुख्यमंत्री ने भारत में बनकर तैयार होने वाले शत्रुजीत हेलीकॉप्टर की सीट पर बैठकर उसका निरीक्षण भी

नमस्कार, ये आकाशवाणी चंडीगढ़ है। अब आप अमन सैनी से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। भारतीय जनता पार्टी ने विपक्ष के नेता राहुल गांधी पर नीट पुनर्परीक्षा से पहले छात्रों में

0: किया। प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी चंडीगढ़ से प्रसारित किए जा रहे हैं। हमारे बुलेटिनों और ताज़ा समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। यह समाचार हमारे यूट्यूब चैनल और एक्स हैंडल आकाशवाणी न्यूज चंडीगढ़ पर भी उपलब्ध हैं। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने आज झज्जर के बादली हलके के गांव रैया में 13,27,00,000 रुपए की लागत से स्थापित अत्याधुनिक बागवानी अनुसंधान केंद्र तथा मनीमपुर बादली में 8.5 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित बीज उत्पादन प्रौद्योगिकी उत्कृष्टता केंद्र का उद्घाटन किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि ये दोनों परियोजनाएं किसानों को आधुनिक तकनीक, उन्नत अनुसंधान और गुणवत्तापूर्ण पौध सामग्री उपलब्ध कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगी तथा प्रदेश में बागवानी क्षेत्र को नई गति प्रदान करेंगी।
1: झज्जर बागली में बागवानी अनुसंधान केंद्र का उद्घाटन करने का मौका मिला है। बहुत ही प्रेरणादायक, गौरवपूर्ण और ऐतिहासिक दिन है। एक और आज हम भारत माता के अमर सपूत, अदम्य साहस के, स्वाभिमानी, त्याग और राष्ट्रभक्ति के महान योद्धा आराम प्रताप जी की जयंती मना रहे हैं। वहीं दूसरी ओर उनके नाम पर महाराणा प्रताप उद्यान विश्वविद्यालय के बागवानी अनुसंधान के तहत 9 परियोजना के आज मुझे उद्घाटन करने का अवसर मिला है। ये परियोजनाएं इस बादली हल्के के इलाके में कृषि एवं बागवानी विकास के साथ साथ शिक्षा व जन सुविधाओं के एक नए अध्याय का शुभारंभ करेंगे।
0: मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर 53,60,00,000 रुपए की लागत से तैयार 7 अन्य विकास परियोजनाओं का भी उद्घाटन किया। इनमें झज्जर लघु सचिवालय एवं आवासीय परिसर, विभिन्न गांवों के राजकीय विद्यालयों के नए भवन तथा सौंधी और निमाना गांवों के लिए जलघर परियोजना शामिल है। मुख्यमंत्री ने कहा कि इन परियोजनाओं से शिक्षा, पेयजल, प्रशासनिक सेवाओं और जन सुविधाओं को मजबूती मिलेगी तथा क्षेत्र के समग्र विकास को नई दिशा प्राप्त होगी। कार्यक्रम में विशेष अतिथि इसराइल के राजदूत रूबेन अजार एवं उनकी धर्मपत्नी रेचल अजार ने भी शिरकत की। मुख्यमंत्री ने बादली विधानसभा क्षेत्र के समग्र विकास के लिए अनेक महत्वपूर्ण घोषणाएं भी की, जिनमें बादली गांव में 50 बेड के आधुनिक अस्पताल और गांव बुपनिया में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का निर्माण शामिल है। मुख्यमंत्री ने क्षेत्र के बुनियादी ढांचे, स्वास्थ्य, शिक्षा, खेल, सिंचाई एवं ग्रामीण विकास को नई गति देने का संकल्प भी दोहराया। लाला लाजपत राय पशु चिकित्सा एवं पशु विज्ञान विश्वविद्यालय द्वारा आज हिसार में किसानों एवं पशुपालकों के लिए किसान यात्रा एवं पशुधन संवर्धन सम्मेलन का आयोजन किया गया। सम्मेलन में मुख्य अतिथि लोक निर्माण मंत्री रणबीर गंगवा ने पशुपालकों को सम्मानित किया। इस अवसर पर कैबिनेट मंत्री ने कहा कि यह कार्यक्रम पशुओं की नस्ल सुधार को लेकर किसानी का ज्ञान वर्धन करने वाला है, क्योंकि पशुपालन का काम किसान से जुड़ा हुआ है।
2: पशुपालन का जो काम है वो कृषि के साथ जुड़ा हुआ है और हमारे जो किसान भाई है वो पशु रख करके उससे अच्छी इनकम का जरिया बना सकते हैं। और पशुओं का कैसे रख रखाव हो, किस तरीके से उनका चारा डालना है या क्या क्या उनको खिलाना चाहिए, और चाहे वो कृत्रिम गर्भाधान की बात हो, चाहे सीमन उपलब्ध कराने की बात हो, तमाम चीजें हमारी यूनिवर्सिटी यहाँ करती है।
0: उन्होंने कहा कि गाय व भैंस की उन्नत नस्लों के बारे में जानकारी हासिल कर पशुपालक अपनी आय बढ़ा सकते हैं। सरकार युवा पीढ़ी को भी पशुपालन से जुड़ने के लिए प्रोत्साहित कर रही है।
2: हमारे जो आने वाली पीढ़ी है, युवाओं को भी इस काम से जुड़ने के लिए अपनी नस्ल की जो गायें हैं और अगर रखता है तो 30,000 रुपए तक की सब्सिडी देने का काम करते हैं, ताकि ज्यादा से ज्यादा गायें पालन को बढ़ावा दिया जा सके। इसी तरीके से चाहे पशुपालन या कोई डेयरी करता है उसके लिए सरकार की तरफ से लोन उपलब्ध कराया जाता है, ताकि हमारे नस्ल का संरक्षण हो। वही हमारे जो एक मुख्य आय का साधन जो है वो भी इसमें बनता है।
0: अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारतीय जनता पार्टी ने विपक्ष के नेता राहुल गांधी पर नीट पुनर्परीक्षा से पहले छात्रों में तनाव पैदा करने और उनकी एकाग्रता भंग करने का आरोप लगाया। केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 2,60,00,000 हेक्टेयर भूमि को 2030 तक उपजाऊ बनाने के लक्ष्य को पूरा किया जाएगा। इसी के साथ समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: ऐसी लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी बताओ जिसमें कम प्रीमियम हो, बोनस भी अच्छा मिले और भरोसे वाला भी हो।
4: PLI है ना।
5: सरकारी कर्मचारी के साथ साथ सभी प्रोफेशनल, ग्रेजुएट और डिप्लोमा होल्डर्स ले सकते हैं PLI पॉलिसी का फायदा और साथ में पोस्टल डिपार्टमेंट का भरोसा भी। अपने नजदीकी पोस्ट ऑफिस से आज ही संपर्क करें या लॉग इन करें indiapost.gov.in पर।
6: मीडियम वेव 262.47 मीटर यानी 1143 किलो हर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये रोहतक केंद्र है। प्रस्तुत है कार्यक्रम कृषि जगत।
7: कृषि जगत कार्यक्रम सुनने वाले सारे भाण भैया ने आनंद भाई की राम राम। और भैया आज बुधवार का दिन है, ये देखे हैं कि आज क्रिकेट मैच के लाइव प्रसारण के कारण अपना कृषि जगत कार्यक्रम का समय 10 मिनट का रहेगा। और भाई खेतीबाड़ी की जब बात आ जाए तो भाई थोड़ा मौसम में मिजाज में काफ़ी फ़र्क आ लिया है कि तो आंधा रूढ़ी भाई नू देखें तेज हवा गरज चमक तो अपना मौसम ने देख दिया नहीं। जो भी किसान भाई ने भाई कितने बिजाई करनी है, कितने भाई मंडीकरण है सब्जी फसलों का, कितने छटनी है तो अपना थोड़ा भाई पानी पात का हिसाब किताब अपनी ज़मीन अगर सब्जी फसल मांग रही है तो हम दें, वरना भाई थोड़ा हम थमासे रख लें भाई कितने स्प्रे करनी है हमारा कितने अनचाही बरसात के कारण कितने नुकसान ना हो बैठे। तो किसान भाई ने लगभग पता हो है कि भाई हमने कौन सी फसल की बिजाई करनी है। और भाई आधुनिक युग है, फ़ोन का माध्यम तक कर ले हैं या कृषि पत्रिका के कारण कर ले हैं, अखबार के कारण लगा ले हैं, मौसम का मिजाज हम जरूर ध्यान में रखें। जो भी दिनचर्या की खेती बाड़ी के काम हो हम सूझबूझ के हम करें जब फ़ायदा हो पाओगा। और भाई आज समय थोड़ा है तो भैया आज हरियाणवी गीत सुनवावांगे पूर्णिमा कौर का गाया हुआ जो कि रहेगा गढ़वा बेंजू पे। तो सुने भाइयों गीत।
8: कर के घाल तड़पते

अभी आपने सुना कार्यक्रम कृषि जगत आकाशवाणी का ही रोहतक केंद्र है। अब आप सुनेंगे हेनरी गली बर्मिंघम स्टेडियम इंग्लैंड में भारत और नीदरलैंड के मध्य खेले जाने वाले ICC महिला T20 क्रिकेट मैच का आंखों देखा हाल, जिसे दिल्ली केंद्र से रिले किया जाएगा।